0: गाने को गाया है महमूद, अमिताभ भट्टाचार्य, राघव चैतन्य और रुआ के ने। म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म कॉकटेल 2 से सुनते रहिए माशुका, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: देखिए, ऐसे कई सी चीजें हैं जो कहना आसान होती है लेकिन करना बहुत मुश्किल। और उन सभी में से एक है, वो है एक्सपेक्टेशंस रखना। काफी आसान है ना कहना कि यार डोंट कीप एनी एक्सपेक्टेशंस, लेकिन ये करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। सच बताओ, हम इंसान है ना, रोबोट्स तो नहीं। एक्सपेक्टेशंस तो ऑटोमेटिकली लोगों के साथ आ ही जाती है। जब हम किसी के लिए वक्त निकालते हैं तो उम्मीद होती है कि वो भी निकालेगा। जब हम किसी को इम्पोर्टेंस देते हैं तो लगता है कि यार वो भी दे देगा। और जब ये सब नहीं होता है ना तो दिल दुखता है। सल्यूशन क्या है? शायद एक्सपेक्टेशंस को खत्म करना नहीं, उनकी जगह अप्रिसिएशन को लाना शायद एक सल्यूशन हो सकता है। मतलब अगर किसी ने आपके लिए कुछ किया, उसे बोनस समझिए, एंटाइटलमेंट नहीं। और दूसरी बात, अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में बिल्कुल भी ना दीजिए। जितनी ज्यादा हमारी इमोशनल डिपेंडेंसी दूसरों के एक्शंस पर होती है ना, हाँ उतनी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हमारे जिंदगी में आती है। एक सिंपल सा फॉर्मूला, एक्सपेक्ट लेस फ्रॉम पीपल, कम्युनिकेट मोर विद पीपल। मिर्ची पर आफरीन का साथ जुड़ गया है राइट हियर ऑन दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग। बने रहेगा हमारे साथ माइक से दिल तक ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbala. Burga, burga. La virtuala burga. Milci, burga.
1: Hello?
2: Hello, Sunil ji.
1: Haan ji.
2: Sunil ji, पेट्रोल पंप से बोल रहा हूँ सर. कंग्रेचुलेशन, आप लकी विनर हैं.
1: किस चीज के जी सर?
2: सर आपका 20 लीटर पेट्रोल निकला है बिल्कुल फ्री. मैं तो सोच रहा था बड़े खुश हो जाएंगे क्योंकि पेट्रोल के. तो सर ये आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको फिल कराना होगा, भरवाना होगा अपनी गाड़ी में.
1: ठीक है. अच्छा एक बात तो बताइए सर जी.
2: हाँ जी.
1: इसी का पैसे ऐसे देने पड़ेंगे कुछ?
2: नहीं सर, पैसे कोई नहीं, कोई पैसा नहीं.
1: कंडीशन वगैरह?
2: नहीं सर, कोई सर कोई कंडीशन नहीं है. पुराने ग्राहक हैं आप, ऐसे कैसे कंडीशन रख लेंगे?
1: तो ठीक है, ग्राहक पुराने ग्राहक को आदमी थोड़ा अपना समझ के कहते हैं ना, अपने कोई ज्यादा.
2: बस सर बिल्कुल फ्री है, पैसे आपको नहीं देने पड़ेंगे. एक छोटा सा काम करना पड़ेगा.
1: क्या?
2: पुराना लाइए, नया ले जाइए.
1: क्या भैया, पुराना क्या लाऊं भाई?
2: पुराना पेट्रोल लाओ, नया ले जाओ सर, बस यही है. और वो भी आप ही का निकला.
1: क्या बात हुई, पुराना कहाँ से लाऊं
2: सर? पुराना जो आपने
1: तो जल के वो खत्म कर दिया हो
2: तो सर, जो आपने पुराना यूज किया होगा वो तो लाना पड़ेगा ना आपको.
1: धुआं में कहाँ से इकट्ठा करूँ?
2: पहले तो आप बड़े दांत फाड़ रहे थे जब मैंने आपसे कहा 20 लीटर फ्री पेट्रोल है, वाह वाह जी वाह वाह थैंक यू. अब मैं आपसे कह रहा हूँ
1: पेट्रोल मिल गया तो मुझे बड़ी अच्छी बात है.
2: अरे
1: क्या हो रहा है?
2: अरे तो ये क्या
1: पुराना कहाँ से लाऊं?
2: पुराना आपको लाना पड़ेगा. ये भी मैं पुराना भी वैसे हर वक्त रोते रहते हैं पेट्रोल के पैसे बढ़ गए. हम फ्री दे रहे हैं तो ला के नहीं दे सकते पुराना. यार कमाल कर रहे हैं आप.
1: पेट्रोल फालतू का. अच्छा. पुराना
2: लाओ,
1: नया ले जाओ, ये ले जाओ.
2: अरे मेरी बात सर जी, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ. अगर आप पुराना ले भी आए तो भी आपको 20 लीटर पेट्रोल फ्री नहीं मिलेगा. हाँ मुर्गा खाने को जरूर मिल सकता है. सर मजा आ गया आपसे बात करके. मतलब आपके गुस्से से डर गया मैं.
0: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

पे दोस्तों, आप दुबई जाना कतर से उतना ही ज्यादा कॉमन हो गया है जितना फ्राइडे ब्रंच का प्लान बनाना। And that is possible only because of Qatar Airways. Very good morning and welcome back. आप सुन रहे हो Simply Afreen, co-writer on Milchi Mornings. और Qatar Airways ने एक और स्मार्ट मूव अनाउंस किया है। अब दोहा और दुबई के बीच फ्लाइट्स की फ्रीक्वेंसी ग्रेजुअली 2 से बढ़कर 5 डेली फ्लाइट्स होने वाली है। इनफैक्ट स्टार्ट हो चुकी है 5th ऑफ जून से ही। मतलब अगर आपका दुबई ट्रिप लास्ट मिनट प्लान हुआ है, बिजनेस मीटिंग सडनली आ गई है या फिर बस दुबई मॉल की क्रेविंग हो गई है, तो ऑप्शन अब काफी ज्यादा फ्लेक्सीबल हो गए हैं। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग एंगल ये दिखाई देता है मुझे, दैट ये सिर्फ फ्लाइट्स बढ़ने की खबर नहीं है, ये गल्फ रीजन की ग्रोइंग कनेक्टिविटी का सिग्नल है। जब एयरलाइन फ्रीक्वेंसी जब इंक्रीज करती है, यूजुअली उसका मतलब ऐसा होता है दैट स्ट्रॉन्ग पैसेंजर डिमांड है, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक एक्टिविटी है और ज्यादा सीमलेस मूवमेंट बिटवीन पीपल एंड बिजनेस। वेल, यहाँ पर एक और ट्रैवलर हैक नोट भी कर लीजिए। जब किसी रूट पर कैपेसिटी इंक्रीज होती है ना, तो कई बार आपको कॉम्पिटिटिव फेयर्स और बेटर टाइमिंग ऑप्शंस भी देखने को मिलते हैं। सो अगर आप इस समर में एक वीकेंड गेटअवे सोच रहे हो कि चले यार फ्राइडे सैटरडे है और संडे ज़रा छुट्टी लेकर वहाँ के हिसाब से थोड़ा सा लंबा वाला वीकेंड बनाकर आते हैं दुबई से, तो बस फ्लाइट के ऑप्शंस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। फिलहाल के लिए तो आफरीन जुड़ गई है आपके साथ में राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। इट्स हॉट।

0: अगर आपका भी सवाल कुछ ऐसा है अतिथि तुम कब जाओगे, तो अतिथि अब आपको जाना पड़ेगा, इसका जवाब कुछ ऐसा है। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफ्टरनून को राइट ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और कुछ महीनों से ना कतर में एक स्पेशल रिलैक्सेशन चल रही थी जहां एक्सपायर्ड या एक्सपायरी के करीब एंट्री वीजाज को एक्सटेंड करने की फैसिलिटी दी जा रही थी, लेकिन अब मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने अनाउंस किया है कि ये एक्सटेंशन फैसिलिटी 7 जून 2026 यानी आज से बिल्कुल होती है खत्म। इसका मतलब क्या है? अब सारे एंट्री वीजाज, चाहे फैमिली विजिट हो, टूरिस्ट हो या किसी और कैटेगरी के हो, अपने ओरिजिनल रूल्स, वैलिडिटी पीरियड्स और प्रिस्क्राइब फीस के मुताबिक ही प्रोसेस होंगे। मतलब आपने अगर याद किया रहे हो, याद करो, याद किया रहेगा कि मार्च या फेब के अराउंड कुछ वीजाज जो थे वो एक्सटेंड किए जा रहे थे लुकिंग एट द सिनेरियो, लेकिन अब जो है अब ये बंद हो गया है। देखिए, बहुत लोग वीजा एक्सपायरी डेट देखते हैं लेकिन ग्रेस पीरियड, ओवर स्टेज, पेनल्टीज और सिस्टम अपडेट्स को इग्नोर कर देते हैं और वही सबसे बड़ा ट्रैप बन जाता है। तो अभी अगर कोई आपके यहाँ पर रुका हुआ है, कोई विजिटर है, फटाफट से उनकी वीजा एक्सपायरी जो डेट है वो देख लो और इसके बाद अगर आप सोच रहे हो एक्सटेंड करने का तो फिर भाई एमओआई से चेक कर लो, क्योंकि कई सारे वीजाज अब जो बस ग्रेस से दिए जा रहे थे, एक्सटेंड करे जा रहे थे, वो आज से 7 जून से बंद हो रहे हैं। वेल विद दिस, मैं हूं आफरीन आपके साथ राइट हियर ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक 19 साल की लड़की कोमा से जागी और उसको लगा वो 3 बच्चों की माँ है और वो उनको ढूंढने लगी।
3: भाई इंसान कोमा में जाने के बाद अपनी मेमोरीज लूज करता है, ये तो नई मेमोरीज बना के आ गई। और ऊपर से एक और चीज, इसको अडल्टहुड से पहले पेरेंटहुड का स्वाद मिल गया।
4: मिर्ची, इट्स हॉट। वेदर चेक ब्रॉट टू यू बाय RSL ग्रुप ऑफ कंपनी। अब पाओ कतर में डिलीवरी राइडर्स और ड्राइवर की जॉब। फॉर ब्राइट फ्यूचर कॉल नाउ 3100813।
5: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
6: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
7: बहुत कुछ होगा।
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: देखिए वो नहीं देखते हम सोशल मीडिया पे, ट्रांजिशन रील्स, मेकओवर रील्स, ऐसे ही कुछ हुआ है हमारे कतर के नोट के साथ। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को। और आज की गर्मा गर्म खबर में क्या है देखते हैं।
1: खबर कतर,
0: देखिए खबर ऐसी है दैट कतर सेंट्रल बैंक ने फिफ्थ सीरीज के यानी 5, 10 और 50 रियाल नोट्स में कुछ डिजाइन अपडेट्स अनाउंस किए हैं। अब इन नोट्स पर आपको अपडेटेड स्टेट एम्बलम, अरबिक न्यूमरल्स और इशू डेट नजर आएगी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आपके पास पुराने वाले नोट्स है तो पैनिक बिल्कुल मत करिए भाई, वो पूरी तरह से वैलिड है और सर्कुलेशन में रहेंगे। मतलब ना बैंक भागने की जरूरत है, ना वॉलेट क्लीन अप कैंपेन शुरू करने की जरूरत है। और ये सोचकर आपको कहीं कुछ डेजा वो तो नहीं हो रहा है? नहीं, वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है कि आपको आपके नोट्स बदलने हैं, बिल्कुल भी नहीं। आपके जो 5, 10, 50 नोट्स बिल्कुल वैलिड रहेंगे। लेकिन जब नए नोट्स अब आपको मिलेंगे ना, तो थोड़ा सा जरूर देखना कि अरे अब ये वाला नया है, इसमें ये चेंजेस आए हैं, ऐसा कुछ। वेल, अगर आपने नोटिस किया होगा, कतर क्वाइटली बट कंसिस्टेंटली अपने सिस्टम्स को मॉडर्नाइज करता रहता है। अब वो चाहे डिजिटल सर्विसेज हो, ट्रांसपोर्ट हो या करेंसी की डिजाइन, दैट्स आवर कतर फॉर अस। फिलहाल के लिए तो आप श्री ने आपके साथ राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग। स्टे ट्यून्ड विद मी माइक सिद्धुल तक ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: जब भी ताल फिल्म देखती हूँ ऐश्वर्या राय बच्चन के पीछे एक क्यूट लड़का दिखता है और वो कौन है शाहिद कपूर. बट शाहिद इफ आई हैड टू आस्क यू अबाउट योर फिल्म जर्नी एंड योर फर्स्ट सॉन्ग कौन सा था वो.
3: मेरा पहला गाना था इट वॉज इन इश्क इश्क ऑब्वियसली. द फर्स्ट सॉन्ग वॉज दिस सॉन्ग वी डिड इन अ कैंटीन कॉल्ड लव लव लव करो वेयर ऑल द गाइज आर ट्राइंग टू इम्प्रेस द वुमेन.
2: शाहिद व्हाट अ लवली डाइव इन नॉस्टैल्जिया. आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोल्डा Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
4: Mirchi Mornings. Brought to you by Kim's Health Medical Center.

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: अरे यार, मैं तो आज मेरा आईडी कार्ड ही भूल गया हूँ, कॉलेज में कैसे जाऊँ?
1: अरे गोचू, आईडी कार्ड ही भूला है ना, अंदर जाने का रास्ता तो पता ही होगा ना, तो चला जाना।
2: खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़।

0: Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot. 89.6 Mirchi One. It's hot. Mirchi Mornings brought to you by Kim's Health Medical Center.
1: मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 7. सुनते रहिए 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट.
0: मिर्ची फ्रेश माल,
2: फुल ऑन मस्ती, मैडनेस और जंगल के एडवेंचर के वाइब्स के साथ सुनो वेलकम टू द जंगल टाइटल ट्रैक.

0: गाने को गाया है शान, प्रिया पाटीदार और विक्रम मोंट्रोज ने। म्यूजिक दिया है विक्रम मोंट्रोज और साजिद वाजिद ने, और लिरिक्स लिखे हैं मेघा बाली और शब्बीर अहमद ने। वेलकम टू द जंगल मूवी से सुनिए वेलकम टू द जंगल टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: आई एम श्योर बचपन में हम सबकी एक फेवरेट चीज हुआ करती थी और वो थी गुल्लक। हाँ जी, वही गुल्लक जिसमें हम सिक्के जमा करते हैं। जब मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी से हमें खुशी से सिक्के मिल जाते तो हम उसमें ना हमारी सेविंग्स करते थे। वेल, हर घर में एक गुल्लक होता ही था, पर कुछ गुल्लक पैसे नहीं यादें जमा करती है, और जब वो गुल्लक खुलती है ना तो सिर्फ सिक्के नहीं पूरी जिंदगी की खनक सुनाई देती है। वेरी गुड मॉर्निंग, आप सुन रहे हो सिंपली आफ्टरनून को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और अगर आप भी मेरी तरह ना एक्शन सस्पेंस लार्जर देन लाइफ ड्रामाज ओटीटी के सीरीज ये सब देखकर थक गए हैं ना, तो बस एक फ्रेश ब्रीज यानी ठंडी हवा का झोंका समीर की तरह ये गुल्लक आ गया है। अब गुल्लक जो हमेशा से लोग देखते आए ना, दे नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये जो है ना, ये सीजन 5 आ गया है, और ऐसा काफी कम नहीं, पहली बार ही ऐसा हुआ है ओटीटी हिंदी सीरीज में कि कोई सीजन जो सीरीज है वो अपने सीजन 5 तक चला गया है। मतलब आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा ये लोग इसे पसंद करते हैं। वेल, गुल्लक जो है, मिश्रा परिवार जो है, फिर से लौट आया है अपनी छोटी छोटी खुशियां, नोक झोंक और दिल को छू लेने वाले मोमेंट्स के साथ। सीजन 5 में भी वही वॉर्म्थ है जो इस शो की यूएसपी है, लेकिन इस बार अन्नु मिश्रा का कैरेक्टर यानी वो मम्मी पापा और दो लड़के, उनमें से एक लड़का जो है वो एक नया कैरेक्टर, वो नया एक एक्टर प्ले कर रहा है, जिसको सोशल मीडिया को लेकर ना बहुत ज्यादा मिक्स रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। अगर आप भी देख रहे हो तो मुझे जरूर बताइएगा कि अनु मिश्रा का ये नया वाला एक्टर पसंद आए या आप पहले वाले को ही मिस कर रहे हो। वेल, गुल्लक जो है ना, ये एक वेब सीरीज नहीं है, इट्स एन इमोशनल टाइम मशीन। वो 90s वाले मिडिल क्लास फैमिली, या फिर अभी भी अगर आप मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हो ना, तो वो छोटे छोटे लम्हे जिसे हम इतना ज्यादा तवज्जो नहीं देते, लेकिन आप जब गुल्लक देखोगे ना तो समझ जाओगे कि अरे यार, हमारे अभी भी तो ऐसे ही होता था, अरे ये मम्मी भी तो यही कहती थी। यू विल रियली एंजॉय दिस सीजन 5 गुल्लक, स्ट्रीमिंग ऑन सोनी लिव, शुड नॉट बी मिस्ड। मैं हूं आफरीन आपके साथ राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabara, escabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La virba, la burga. Mirchi, burga.
2: हेलो
3: हेलो नवनीत
2: या
3: नवनीत, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ।
2: हाय नवेद,
3: क्या हाल चाल है?
2: बढ़िया है।
3: आपने मैसेज किया था अपने फादर का मुर्गा बनवाने के लिए।
2: हाँ हाँ हाँ, बन गया क्या?
3: यार तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुमने किस आदमी का नंबर दिया यार मुझे?
2: हाँ?
3: सोच समझ के नंबर देते हो नहीं देते हो? मैंने उनको फोन किया, वो मुझ पे भड़क रहे हैं यार शुरू में ही।
2: या मैं तो अपने पापा का ही नंबर दिया।
3: पापा का नंबर, नाम क्या है यार पापा का?
2: मिस्टर दिलीप।
3: उनसे ही मेरी बात हुई है यार। मैंने माना, मजाक अपनी जगह है, मुर्गा बनाता हूँ, मैं भी हंसता हूँ, तुम्हें भी हंसाता हूँ, लेकिन यार ये थोड़ी है उसका नाजायज फायदा उठा लो तुम।
2: मैं क्या कुछ गलत
3: बोल दिया यार? मैं मतलब यहाँ पे इसलिए आता हूँ कि मैं गालियाँ सुनूँ यार?
2: अब ऐसी बात क्या
3: ऐसी ऐसी बात क्या हो गई? अपने फादर से पूछो यार जाके। नहीं, अपने फादर से क्यों नहीं पूछते तुम जाके?
2: अब मैं क्या
3: पूछूं यार, तुम्हें पहले कहना चाहिए था मुझसे कि उन्हें गुस्सा आता है, वो ज्यादा भड़क जाते हैं यार।
2: अब गुस्सा तो सभी को आता है, ठीक से बात कर ले।
3: तुम मुझे बताओगे कि मैं कैसे बात कर लेता यार? नवनीत कमॉन यार, ऐसे नहीं होता है। मैंने माना कि चलो एक शो है, मुर्गा बनाते हैं, उसमें ये थोड़ी यार क्या तुम उठा के किसी का भी नंबर दे दो, किसी का भी मुर्गा बनवा लो।
2: अब कुछ ज्यादा पापा ने बोल दिया।
3: अरे तो
2: तरफ से मैं माफी
3: मांगने से क्या होता है यार? ऐसी मैं माफी मांग रहा था उनसे, मैंने माफी मांगी है 50, वो नहीं मान रहे। तुमने यार पता नहीं उठा के क्या समझ रखा है मुझे।
2: अब मैंने क्या, आपने बोला कि मुर्गा बनाना है, SMS कर दो, मैंने कर दिया।
3: तुम मुझे क्या पता था यार तुम अपने ऐसे फादर का नंबर दे दोगे यार?
2: ऐसे फादर क्या, मेरे तो एक ही फादर है, मैं ढूंढ के लाऊंगा।
3: अरे तो यार अब तुम उल्टे मुझसे बात कर रहे हो। एक तो पहले बाप की सुनिए, अब मैं बेटे की सुन लो। यार तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया क्या?
2: मेरा खराब नहीं हो गया, मुझे लग रहा है आप ही का थोड़ा हो गया है।
3: इस वक्त तुम्हारा ही मुर्गा बन रहा है, मेरी तुम्हारी फादर से अभी तक बात भी नहीं। ऐसे अच्छे काम होते रहते हैं यहाँ पर। वैसे तुम्हारे फादर के वाकई में गुस्से वाले हैं?
2: नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है, कभी कभी तो गुस्सा कर ही देते हैं।
3: चलो एक बार प्यार से मेरे साथ उनकी तरफ से बोल दो।
2: कुकड़ुकू।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: IPay payments ka wah tarika. With IPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the IPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. IPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply. मिष्टी दोई, संगीत और मीठी बोली के शहर में अब खून की होली शुरू हो चुकी है।
1: यहाँ हर मुस्कुराहट के पीछे एक राज है और क्राइम का रंग अब ब्लैक हो चुका है।

0: चुका है। मैं आ रही हूँ इनके खेल खत्म करने।
1: संगीत की धुन अब चीखों में बदलेगी। Officer Brown is back to kill the devil. The dark side of Kolkata awaits. Brown, streaming from 12th June, only on Z5.
2: जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
3: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
4: बार बार
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6
6: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: क्या आप जानते हो ये गाने में 400 किलो सोना लग गया था। देखिए बॉलीवुड में गाने सिर्फ सुने हैं, देखे नहीं जाते हैं, कभी कभी उन पर इतना खर्च होता है कि पूरी लग्जरी बिल्डिंग खड़ी हो सकती है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफ्टरनून को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और यस, बात करते हैं बॉलीवुड के एक ऐसे गाने के बारे में जिसमें करोड़ों रुपए लग गए थे, इनफैक्ट 400 किलो सोना भी लगा था, एंड दैट वॉज पद्मावत का आइकॉनिक गाना घूमर, श्रेया घोषाल की आवाज और स्वरूप खान की आवाज में, एंड फीचरिंग वन एंड ओनली हमारी दीपिका पादुकोण। यस, कहते हैं इसकी प्रोडक्शन में लगभग 400 किलो सोना, ज्वेलरी, रॉयल प्रॉप्स और ग्रैंड सेट्स के लिए यूज हुआ था, और दीपिका पादुकोण का वो रॉयल लहंगा उसका वजन करीब 30 किलो था। यस, देखिए गाना हिट होना सिर्फ पैसों से नहीं होता है, अगर ऐसा होता तो एक्सपेंसिव गाना सुपर हिट ही होता। घूमर याद रह गया है क्योंकि उसमें क्राफ्ट्समैनशिप थी, ऑथेंटिसिटी थी, और संजय लीला भंसाली का वो सिग्नेचर ग्रैंडर था। वेल, बॉलीवुड में ऐसे कई सारे गाने बने हैं जिस पर बहुत सारा खर्च हुआ है, लेकिन जब बात संजय लीला भंसाली की आती है ना, तो ही डज नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड, एंड दैट इज घूमर विथ ऑल इट्स ग्रैंडर एंड रॉयल्टी। कमिंग अप नेक्स्ट राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: It's hot.
1: Love is the best, AJ.

0: Bollywood, Bollywood, Boulder. Only on Mirchi. It's hot.
1: विद्या बालन, आपने 40 से ज्यादा फिल्में कर ली, 2014 में पद्मश्री कमा लिया, इतने सारे इयर्स ऑफ अचीवमेंट के बाद, डू यू रिमेम्बर द फर्स्ट सॉन्ग यू फिल्म्ड फॉर?
2: ऑफ कोर्स, कस्तू मजा, परिणीता से, और शिलीगुड़ी में शूट हुई थी इस गाने की, और बहुत मजा आया था। इतने लोग थे और पीरियड फिल्म है, लोग स्कूटरों पे और मोटर बाइक्स पे गाड़ियों में आ रहे थे, एंड वी कुडंट हैव दैट इन द शॉट। सो हम लोग ट्रेन पे थे और हम लोग ट्रेन एक तरफ लेके जाते, फिर पता चलता कि जब मॉनिटर देखते तो पता चलता कि ये गाड़ियाँ आ गई है, लोग आ गए हैं गाने में, तो फिर से हम लोग रिवर्स में आ जाते, फिर शूट होता। एंड इट्स माय फर्स्ट सॉन्ग, इट्स आल्सो माय फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम परिणीता।
1: ओह, दैट्स अ टफ वन विद्या बालन। परिणीता का हर गाना इतना गोल्डन है, इट्स टफ टू चूज अ फेवरेट। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डर, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: देखिए वो वक्त आ गया है जब आपको अपना थोड़ा सा एक्स्ट्रा ख्याल रखना है। Very good morning and welcome back. आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट अराउंड मिर्ची मॉर्निंग्स। और देखिए ये मैं नहीं कह रही हूँ, इनफैक्ट ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर भी कहता है दैट अब जब हीट इतनी बढ़ गई है, हीट स्ट्रेस हो गया है, तो किस तरह से आप जब काम पर हो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। सो वेल दिस अप्लाइज मेजरली टू दोस जो बाहर आउटडोर में रहते हैं, तो उनके लिए है कि भाई ऑफकोर्स आपको पानी पीना चाहिए हर 15 मिनट में। ये हमेशा कोशिश करें कि आपकी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट ना हो। ऐसे वक्त पर जब आप दिन के वक्त पर हो, बाहर हो, तो कोशिश करें आप चाय, कॉफ़ी, एनर्जी ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स ये सब ना पिए। अपार्ट फ्रॉम दैट यू शुड शेड्यूल फ्रीक्वेंट ब्रेक्स ड्यूरिंग वर्क्स। और हाँ, सही खाइए, लाइट खाइए। ऑल्सो वेयर लाइट लूज क्लोदिंग एंड कीप योर हेड कवर्ड व्हेन आउटडोर्स। वेल ये सारी की सारी जो गाइडलाइंस है ये मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने जारी की है। तो बस जैसे गर्मी आई है, जो बाहर काम कर रहे हैं, जो अंदर है, सभी के लिए भाई अपना ख्याल रखिएगा। एंड यस, ऐसे वक्त में ना मैं जरूर कहती हूँ कि भाई सनस्क्रीन को अपना बेस्ट फ्रेंड जरूर बनाइएगा। इट्स एक्चुअली अंडररेटेड, थोड़ा सा उसे ओवर कर दीजिए। मैं हूँ आफरीन आपके साथ माइक से दिल तक राइट ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
2: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
3: यस ऑफ कोर्स मिर्ची हेल्पलाइन, बताइए।
2: सर आई डोंट नो व्हाट टू डू आफ्टर कॉलेज, आप बताओ ना मुझे क्या करना चाहिए।
3: अरे तो सिंपल है ना, फटाफट कर जा, मम्मी इंतजार कर रही होगी।

0: Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot. 89.6 Mirchi One. It's hot.
1: मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 8। सुनते रहिए 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।
2: अच्छा

0: अच्छा एक बात बताएं, आप कतर में कितने साल से हो? 5 साल, 10 साल, 20 साल या ज्यादा? लेकिन एक सवाल है आपसे कि कभी सोचा है कि रेंट देने के बजाय यहाँ अपने नाम की प्रॉपर्टी लेने के बारे में? क्योंकि अगली खबर उन लोगों के लिए है जो कतर को सिर्फ अपना वर्क प्लेस नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म बेस भी समझते हैं।
1: क्या क्या, क्या खबर कतर?
0: देखिए, कतर ने फॉरेन रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स के लिए एक और बड़ा दरवाजा खोल दिया है। अब समय समय रिसोर्ट और बीच प्रोजेक्ट को भी उन डेजिग्नेटेड एरियाज के लिस्ट में ऐड कर दिया गया है जहां नॉन कतरीज प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं। ये डिसीजन कैबिनेट रेजोल्यूशन नंबर 21 ऑफ 2026 के तहत आया है और ऑफिशियल गजट में पब्लिश होते ही इफेक्टिव हो जाएगा। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिर्फ एक बीच प्रोजेक्ट नहीं है, समय समय कतर का सबसे एम्बिशियस टूरिज्म और लाइफस्टाइल डेवलपमेंट्स में से एक माना जाता है। फ्यूचर में यहाँ लग्जरी रिजॉर्ट्स, मरीना, एंटरटेनमेंट जोन, ये सारा कुछ यहाँ पर होने वाला है। गोल्फ फैसिलिटीज और वर्ल्ड क्लास अट्रैक्शंस डेवलप होने वाले हैं। मतलब आज का इन्वेस्टमेंट कल के वाटर फ्रंट डेस्टिनेशन में कन्वर्ट हो सकता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि और कौन से एरियाज हैं जहां पर फॉरेनर्स प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं कतर में, तो लिस्ट में ऑलरेडी शामिल है द पर्ल, एज यू ऑल नो, लुसेल, वेस्ट बे, अलखोर, उनाइजा, अलखरेज, ये सारे हैं। और इसमें अब समय समय रिसोर्ट और बीच प्रोजेक्ट भी इंक्लूड किया गया है। सो वेल, कतर अब सिर्फ अर्निंग डेस्टिनेशन ही नहीं बल्कि ओनिंग डेस्टिनेशन भी बनते जा रहा है। माइक से दूर तक आप ट्रीन है आपके साथ, राइट ऑन मिट्री, इट्स हॉट।

0: Mirci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La virgua, la burga. Mirci, burga.
1: Hello.
2: से बोल रहे हैं?
1: हाँ जी।
2: मुझे कुछ ऑर्डर करना था, आप लिख लेंगे प्लीज?
1: या
2: और रात के खाने के लिए लिख लीजिए प्लीज।
1: बोलिए।
2: 2.5 किलो अरहर दाल, 3 किलो चना दाल, 3.5 किलो चना कबूली, 4 किलो चना डॉलर प्रीमियम, 1 बेसन। हाँ,
1: एक्चुअली में 2.5 किलो वगैरह हमारे यहाँ नहीं होता, 2-2 किलो में, 1-1 किलो में पैकिंग होती है, तो 2 केजी होती
2: है। अब आपको ये मैं क्या, वो 2.5 किलो ही खाते हैं, मैं क्या करूँ?
1: Oh my God.
2: मेरे हस्बैंड हैं, डाइट उनकी है, आपको क्या प्रॉब्लम है?
1: नहीं मैम प्रॉब्लम।
2: 4 किलो चना दाल, 4 किलो चना कबूली,
1: चना दाल, चना कबूली, एरोप्लेन भेजू?
2: एरोप्लेन भेजिए, हमें जाना ना हनीमून पे।
1: सॉरी मैम, मैं ये बोल रहा हूँ 5 kg एरोप्लेन राइट मैम, सॉरी।
2: एक सेकेंड, कभी फोन आ रहा है। स्वीट हार्ट आई लव यू, ऑर्डर दे रही हूँ। तुम आओ तो सही ना। No, I will be waiting for you, my sweetheart, my Janu.
1: Hello.
2: One second, मेरे हस्बैंड से बात चल रही है, one second. कब आओगे रात में? अच्छा सुनो, मेरे लिए रात में वो लेके आना ना, वही वही कुछ पूछे कुछ पूछे. Okay, sweetheart, bye. हाँ लिखिए, 3 प्लेट गोलगप्पे.
1: गोलगप्पे नहीं होते,
2: चकोर दे दीजिए. गोलगप्पे नहीं है, चकोर वाले दे दीजिए.
1: है नहीं मैम हमारे यहाँ,
2: लंबे वाले
1: नहीं है वो.
2: अच्छा लास्ट फाइनली, मैं और मेरे हस्बैंड जो बहुत शौक से खाते हैं.
1: क्या खाते मैम?
2: मुर्गा
1: मैम, वो भी नहीं है.
2: आपको ये नहीं मालूम दिल्ली में सबसे अच्छा मुर्गा कहाँ बनता है?
1: मैम ये हमें नहीं
2: पता. हमें मालूम है, मैं बताऊँ आपको?
1: हाँ जी मैम बताइए.
3: रेडियो मिर्ची. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं छोटा सा मजाक कर रहा था आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया भाई साहब हमने.
1: आपकी आवाज में काफी
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: देखो आप जरूर सोचोगे भाई आफरीन में क्या चीज है, ऑलरेडी वीकेंड की बातें कर रही है। देखो मुझे तो मजा आता है कि आगे की अच्छी वाली चीजों के बारे में बातें करने का। सो हियर इट इज, वीकेंड इज ऑन इट्स वे एंड उसी चलते मैं हमेशा आपको बताती हूँ ना कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। घर में बैठे हो तो भाई ओटीटी पे क्या करना है ये मैं जरूर आपको बताऊंगी।
2: अरे भाभी जी एकदम लेटेस्ट डिजाइन है,
3: फ्रेश है भैया, फ्रेश है,
4: एकदम नया आया है।
5: अरे मार्केट में नया क्या है,
1: वेल देखो नया तो ऐसा है कि भाई अक्षय कुमार की जो पिक्चर आई थी भूत बंगला, हाँ हाँ थिएटर्स में आई थी, आपने देखा नहीं देखा कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, क्योंकि ये आ गई है ओटीटी पर, यस नेटफ्लिक्स पर। दिस इज एक्सपेक्टेड टू रिलीज ऑन 12th of June। प्रिया दर्शन और अक्षय कुमार का ये रीयूनियन तकरीबन 14 साल बाद हुआ था। एंड देन मूवी कैसी रही ये तो भाई थिएटर से जितनी जल्दी निकल गई है और ओटीटी पर आ गई है इससे तो आपको पता चल ही गया होगा, लेकिन एक होता है ना अंदर से कि भाई नहीं देखना है भाई क्या क्या है ये, लेट्स हैव अ लुक। उसके अलावा देयर इज वन मोर, माँ है ना इज अ लाइट हार्टेड नॉन फिक्शन कॉमेडी कुकिंग शो। ये कुकिंग शो है विच इज होस्टेड बाय शिल्पा शेट्टी और ये Z5 पर स्ट्रीम होने वाला है। दिस इज ऑल्सो हैपनिंग फ्रॉम 12th of June और यहाँ पर काफी सारे कॉमेडियंस आपको नजर आने वाले हैं, अली असगर, गौरव कपूर, चंदन प्रभाकर एंड ऑल दीज थिंग्स। सो ये सारे कुकिंग शो पर आकर अपना कॉमेडी का तड़का भी देंगे और साथ ही साथ कुछ खान पकवान भी पेश करने वाले हैं। सो दिस इज द वन माँ है ना ऑन Z5। अपार्ट फ्रॉम दैट करिश्मा कपूर इज बैक विद सम मैजिक। ब्राउन नाम का इनका एक साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर सीरीज जो है ये Z5 पर चल रहा है एंड दिस इज एब्सोल्युटली अ वेरी बोल्ड एंड डी ग्लैम अवतार ऑफ करिश्मा कपूर और आई थिंक सो है जो क्राइम और ये सबसे बहुत एंटरटेन होते हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज है देखने के लिए। एंड देन वन माय फेवरेट यार गुल्लक Season 5 इज हियर, मतलब यार ओटीटी सीरीज में शायद ही कोई है जो Season 5 तक पहुंचा एंड गुल्लक इज वन ऑफ द फर्स्ट ऑफ देम। वेल सोनी लिव पर ये है एंड दिस इज समथिंग यू शुड नेवर मिस, स्पेशली तब जब फैमिली के साथ देखने के लिए कोई कॉन्टेंट आ गया है तो वाई नॉट राइट। माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: अच्छा मुझे बताइए, वो कौन सा यादगार लम्हा था आपके लिए? वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और फीफा का नया सफर शुरू होने वाला है मेक्सिको सिटी से, और एट दिस मोमेंट मुझे बस हमारे कतर 2022 का फीफा याद आता है। एंड मुझे क्या, आई एम श्योर सभी को। अब जब हमारा वाला फीफा याद करने की कोशिश करूँ ना, तो वो कौन सा लम्हा है जो आपके लिए खास है? देयर आर सो मेनी ब्यूटीफुल मोमेंट्स। मतलब ओपनिंग सेरेमनी जिसने पूरी दुनिया को एक लाया था विद सच अ ब्यूटीफुल मैसेज, या फिर वो आइकॉनिक मेट्रो गाय को हम याद करें मेट्रो दिस वे, या फिर हम वो फैंस को याद करें जिन्होंने सूक वाकिफ में इतना खूबसूरत सेलिब्रेशन किया था। भले ही वो अर्जेंटीना के फैंस, सऊदी अरेबिया के फैंस हो या फिर कतर के ही फैंस क्यों ना हो, हर मैच के जीत के बाद वो सूक वाकिफ का जश्न याद आता है। या फिर वो मोमेंट याद करें जब सऊदी अरेबिया ने अर्जेंटीना को हराया था और उसके बाद में उनके एक फैन ने वेयर इज मेसी जो वायरल मोमेंट हुआ था, या फिर वो टीम को याद करें जो डार्क हॉर्स निकली और सेमीफाइनल्स तक पहुंची थी। मैं बात कर रही हूँ मोरक्को की। और फिर वो मोरक्कन प्लेयर का जश्न मनाना अपने माओ के साथ में और डांस करना ऑन द ग्राउंड, व्हाट अ क्यूट एंड ब्यूटीफुल एंड इमोशनल मोमेंट दैट वाज। या फिर द आइकॉनिक मोमेंट ऑफ कतर 2022 वर्ल्ड कप, दैट वाज मेसी लिफ्टिंग द कप। या फिर वो याद करें जब उसके बाद लुसेल में इतना जबरदस्त परेड हुआ और इतना जबरदस्त जश्न हुआ, एक ही झटके में आपको वो पूरा महीना याद आ गया नहीं, लेकिन आई एम श्योर इसके अलावा भी कई सारे मोमेंट्स होंगे जो आपके लिए खास होंगे। तो मुझे बताइए ना 5000 1896 पर, दैट वो कौन सा लम्हा था जो आपके लिए बिल्कुल यादगार था ऑफ कतर 2022 वर्ल्ड कप। मैं हूँ आफरीन आपके साथ माइक से दिल तक, राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट
2: मिर्ची स्टोरीज।
3: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
4: यार तूने सुना, एक 19 साल की लड़की कोमा से जागी और उसको लगा वो 3 बच्चों की माँ है और वो उनको ढूंढने लगी।
5: भाई इंसान कोमा में जाने के बाद अपनी मेमोरीज लूज करता है, ये तो नई मेमोरीज बना के आ गई। और ऊपर से एक और चीज, इसको अडल्टहुड से पहले पेरेंटहुड का स्वाद मिल गया।
0: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: Hi, this is Akshay Kumar.
2: नमस्कार, मैं हूँ अमिताभ बच्चन।
3: Hi, everybody, मैं हूँ शाहरुख खान।
4: Hi, this is सलमान खान। खान, खान, खान, खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसैल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस समोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: बादशाह, आपने इतने गाने बनाए, इतने गाने कंपोज किए, सबसे पहला रैप आपने किस पे लिखा था?
2: जो मैथ्स के टीचर है उन पे रैप लिखा था। टीचर अच्छे नहीं थे, क्योंकि एक जैसे टीचर होते हैं वैसे वो थे नहीं, तो मैंने उन पे रैप लिखा जो काफी मशहूर हो गया। दैट वाज माय फर्स्ट। दिक्कत तब हुई जब वो रैप उन्होंने ही पढ़ लिया, उसके बाद मेरा एजुकेशन पे से विश्वास ही उठ गया।
1: 2+2=4, बादशाह गिव अस मोर, इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्ड, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
3: अर्ज किया है
4: इरशाद, इरशाद

0: iPay payments ka wah tarika. With iPay, send money starting from just QAR 5 and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply. कतर में हैं और ड्राइविंग लाइसेंस भी है, क्या आपको तलाश है एक अच्छी कंपनी की?
1: तो इंतजार खत्म, RSL ग्रुप ऑफ कंपनीज लेकर आया है एक सुनहरा मौका स्टेबल इनकम के साथ।
0: अभी कॉल करें 3100-0813।

देखो साल 2022 ने एक चीज का शौक जरूर चढ़ा दिया था हम पर, एंड आपको पता है मैं किस चीज की तरफ इशारा कर रही हूँ, बट ऑब्वियस फुटबॉल की तरफ। ये म्यूजिक सुनकर तो भाई पूरी तरह से मैं नॉस्टैल्जिक हो जाती हूँ और वो पूरा वाइब याद आता है कतर का, कि जिस तरह से वो दो महीना कोई अगर फुटबॉल नहीं भी देखने वाला होता है ना, कि उन्हें भी वो शौक चढ़ गया था, और वो शौक थोड़े टाइम के लिए नहीं था, इनफैक्ट उसके बाद भी हमने काफी सारे मैचेस में इंटरेस्ट लिया। नाउ दैट फीफा वर्ल्ड कप 2026 इज स्टार्टिंग, तो बस ये बता दूं भाई आप कतर में कहां देख सकते हो। वैसे बता दूं अलमाहा आइलैंड पर विजिट कतर का एक फैन जोन है बाकायदा, आप वहां पर जाकर लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हो मैचेस की। उसके अलावा मॉल ऑफ कतर में भी ओएस स्क्रीन पर मैचेस चलने वाली है, एंड इतना ही नहीं भाई पूरे कतर में कोई भी आप कैफेज लाउंजेस वगैरह पे जाएंगे तो वहां पर भी है। इनफैक्ट ऑर्नैंडो ड्यून प्लाजा वेस्ट बे यहां पर भी स्क्रीनिंग होने वाली है। सो ऑल इन ऑल कतर में छोटा ही सही फिर से ये माहौल हमारे फुटबॉल का वापस आएगा। एंड आई ऑल्सो लाइक वन प्लेस टू वॉच मैचेस एंड दैट इज वेस्ट वॉक। वेस्ट वॉक में कैफेज में बैठिए, वहां पर भी बड़ी बड़ी स्क्रीन पर ना मजेदार तरीके से स्क्रीनिंग होती है मैचेस की, एंड यू शुड रियली गेट दैट वाइब बैक एंड एंजॉय इट। मैं हूँ आफरीन आपके साथ, माइक से दिल तक ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: तो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: नहीं नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है।
0: सर वो क्या है ना, अगले हफ्ते मेरी शादी होने वाली है, तो मुझे आप बताओ ना कि वो सुहागरात में कौन सा परफ्यूम लगा के जाऊं।
1: अरे शादी के दिन तो ना के जा।

सलाम नमस्ते, क्या हाल चाल कतर वालो? वेलकम टू मिर्ची वीकेंड वाइब्स, जहाँ पे हम बातें करेंगे ढेरों सारी, चाहे वो शोज हो, इवेंट्स हो, एग्जीबिशंस हो, सब कुछ यही बताऊंगी आपको मेरे शो पे। और उसके अलावा बात करेंगे कुछ हिडन जेम्स के कतर की, और खूब सारी एंटरटेनमेंट की बातें भी होंगी, गाने भी सुनाए जाएंगे और एंजॉयमेंट भी होगा। बस उसके लिए करना क्या, मेरे साथ बने रहना, यानी कि मिर्ची ईशा के साथ ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।

0: Mirci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na vidba la burga. Mirci, burga. Burga.
1: Hello.
2: Is that Sanjeev?
1: Yeah, I'm speaking.
2: Hi Sanjeev, I am Atul calling from...
1: Okay.
2: संजीव आपने 3 राउंड्स क्लियर कर लिए हैं कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के लिए. ये आपका फाइनल राउंड है जिसमें हम कैंडिडेट के पेशेंस चेक करते हैं, उसमें कितने पेशेंस है, कितना इत्मीनान है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि इस तरह की जॉब है. तो आपको लगता है कि आप में पेशेंस हैं सारे?
1: पेशेंस तो है, मैंने जो अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया हुआ उसमें भी मेंशन है ये चीज.
2: ओके.
1: कई तरह के कस्टमर्स होते हैं, उनको सेटिस्फाइड करने हमारा काम है.
2: कितने साल जॉब करी है आपने इससे पहले?
1: मैंने 2 साल काम किया एज अ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव.
3: चुप कर. 2 साल काम किया एज अ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव.
1: सॉरी सर.
2: कैरी ऑन रखिए. आप बताइए मुझे अपने बारे में. ये मैं आपके पेशेंस चेक कर रहा हूँ. हाँ बताइए. भड़कता हुआ कस्टमर आता है, कॉल करता है, तो उसको किस तरह हैंडल करते थे?
1: कस्टमर्स आए जब मैंने आपको बताया ना, मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है. इस टाइप के कई कस्टमर्स आते थे जिनको हम बहुत ही कूलली, बहुत पेशेंट के साथ उनको सेटिस्फाइड
3: करते. बकवास बनकर, बकवास बनकर. कूलली तू करता था? कूलली दांत अंदर कर.
1: हम करते थे सेटिस्फाइड
3: कर. बकवास बनकर, बकवास बनकर.
1: जैसे आप बोल रहे हो ना, ऐसी ज्यादा गुस्सा दिखाते हैं वो लोग.
2: अच्छा, इससे ज्यादा दिखाते. अच्छा मुझे ये बताइए कि मान लीजिए कोई कस्टमर ऐसा है जो कि मान ही नहीं रहा आपकी बात और वो डांटे जा रहा है, तो आप क्या करेंगे उसके लिए?
1: सर, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पहले हमारी बात सुने.
3: शराब
1: बोलते हैं.
3: शराब
1: उन्हें.
3: अब टेस्ट तुम्हारा खत्म हो चुका. कोई पेशेंट चेक नहीं कर रहा. अब ये असलियत कह रहा हूँ, तुम्हें बोलने की तमीज है नहीं यार.
1: अभी तक
3: पेशेंट चेक कर रहे, लेकिन वाकई में तुझे तमीज ही नहीं है. मोबाइल के कस्टमर केयर में जॉब करने के लिए कह रहा है करूंगा. मोबाइल ने पकड़ा कभी हाथ में?
1: बोल
3: जॉब करूंगा, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बनूंगा. कस्टमर इंसान तो बन जा पहले यार. इंसान बना नहीं है.
1: खुद को देखा आपने कभी?
2: संजीव कोई इंटरव्यू की कॉल नहीं है. मुझे पता चला तुमने 3 राउंड दे चुके हो. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. तुम्हारा मुर्गा बना रहा था. लेकिन तुम पूरी तरह क्वालिफाई कर गए हो ये राउंड. तुम्हें जॉब मैं दूंगा. okay. तुम मेरे शो में आके बैठो. मुझ पे भी कभी कभी डांट पड़ती है.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर. Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do that.

एक ऐसा सीजन जिसका बहुत बेसब्री से इंतजार होता है. देखिए गर्मियों का इंतजार तो नहीं होता, लेकिन गर्मियों में आने वाले आम का इंतजार बहुत दिल से किया जाता है. बात कर रही हूँ इंडियन मैंगो एग्जीबिशन की 2026 में जो होने वाली है. जी हाँ, 18 जून से 26 जून तक ये एग्जीबिशन यहाँ पे होगा, यानी कि ईस्टर्न स्क्वायर सूक वाकिफ में होगा. एंड ये टोटली फ्री है. एंड इसका जो टाइमिंग है दैट इज 4 PM to 10 PM. भाई एक आम ही एक ऐसी चीज है जिसके बिना मैं खाना नहीं खा सकती. एग्जैक्टली, यू हर्ड दैट राइट. मुझे दाल चावल या कुछ भी है उसके साथ आम चाहिए ही चाहिए. एंड दैट आम पगलू. तो अगर आपके दोस्तों में भी कोई आम पगलू है या कोई आम इतना पसंद करता है कि वो बहुत सारी पेटियां खरीद के घर लेके जाता है, तो उसके साथ ये इंफॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिए और मुझे सुनते रहिए, यानी कि मिर्ची ईशा को, ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 101. इट्स ऑल.

इतिहास की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

वो कहते हैं ना कि एक आर्टिस्ट के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोच रखता है, वो आप कभी नहीं समझ पाएंगे। एक आर्टिस्ट को ही पता होता है किस तरीके से, नए तरीके से हम अपने आर्ट को बहुत खूबसूरती से बयां कर सकते हैं। तो ये सिर्फ एक आर्टिस्ट ही जान सकता है। वैसे ही अगर आप एक मास्टरपीस देखना चाहते हैं तो जा सकते हैं रौदत अल हमामा पार्क, जहाँ पे गार्डन ऑफ लेटर्स देखने को मिलेंगे, विच इज डन बाय पब्लिक वर्क्स अथॉरिटी ने लॉन्च किया है ये अशकल ने, एंड इट इज इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी एंड खरामा। इसमें आपको देखने को मिलेगा 540 स्क्वायर मीटर की दीवार पे बहुत खूबसूरत तरीके से अरेबिक कैलीग्राफी को लिखा गया है। इसमें दिखता है किस तरीके से लेटर्स को कलरफुल फॉर्म में लिखा गया है, एंड नेचर के साथ वो खूबसूरत से लेटर्स कुछ तो बयां कर रहे हैं। एंड एन आर्टिस्ट कैन ओनली अंडरस्टैंड द अदर आर्टिस्ट। तो भाई आर्टिस्ट लोग, अगर आपको पसंद है ऐसी चीजें तो आप जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं मुरल आर्ट आज ही एट रौदत अल हमामा पार्क। एंड फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक 19 साल की लड़की कोमा से जागी और उसको लगा वो 3 बच्चों की माँ है और वो उनको ढूंढने लगी।
3: भाई इंसान कोमा में जाने के बाद अपनी मेमोरीज लूज करता है, ये तो नई मेमोरीज बना के आ गई। और ऊपर से एक और चीज, इसको अडल्टहुड से पहले पेरेंटहुड का स्वाद मिल गया।
4: मिर्ची इट्स हॉट। मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर, पिज्जा पार्टनर, पापा जॉन्स स्पेशल ऑफर, बाय वन लार्ज पिज्जा एंड गेट वन स्मॉल पिज्जा फ्री, एक्सक्लूसिवली ऑन द पापा जॉन्स ऐप एंड वेबसाइट। ऑर्डर, अर्न एंड रिपीट विद पापा रिवॉर्ड्स। डाउनलोड द पापा जॉन्स ऐप टुडे एंड एंजॉय मोर रिवॉर्ड्स।
5: Eyewear partner Alfahad Optics. Clear vision, stylish fashion, all at perfect price. Free eye checkup at any branch. Direct partner with Al Goot Insurance. Visit Alfahad Optics all over Qatar. Call 555-6189.
6: रेस्टोरेंट पार्टनर चस्का रेस्टोरेंट। चाइनीज, मुंबई हो या नॉर्थ इंडियन का क्रेज, बजट में चाहिए टेस्टी डीज, तो चलिए चस्का रेस्टोरेंट जो है एस दानो एसिस में। स्वाद भी जबरदस्त और प्राइस भी मस्त।
5: मॉल पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, शॉपिंग, डाइनिंग एंड एवरीथिंग इन बिटवीन। अबू सिद्रा मॉल हैज इट ऑल। अबू सिद्रा मॉल फॉर एवरी डे एंड एवरी ओकेजन।
6: हाइजीन पार्टनर हाइजीन, फ्रॉम क्लीन स्किन टू हेल्दी लाइफ। एक्सपीरियंस टोटल प्रोटेक्शन विद हाइजीन सैनिटाइजर, वेट वाइप्स एंड बॉडी वॉश। हाइजीन प्योर प्रोटेक्शन।
7: Sugar free partner Tropicana Slim. Looking for a sweeter life without the sugar? Tropicana Slim is your perfect partner. Enjoy the same great taste with zero sugar. Tropicana Slim.
8: Jewelry partner Sky Jewelry. हर पल को बनाए खास स्काई ज्वेलरी के साथ, एलिगेंट डिजाइन्स, डैजलिंग कलेक्शंस और हर बजट के लिए परफेक्ट ज्वेलरी। शॉप नाउ एंड एंटर द मेगा ड्रॉ ऑन जून 23rd फॉर अ चांस टू विन अ ब्रांड न्यू लेक्सस कार। स्काई ज्वेलरी, डिजाइन फॉर जनरेशंस।
9: रिफ्रेशमेंट पार्टनर बलाडना मिल्क लबान योगर्ट। एक्सपीरियंस द फ्रेश क्रीमी टेस्ट दैट कतार लव्स, रिफ्रेशिंग एवरी मोमेंट विद एवरी सिप एंड स्पून।
10: Fragrance partner Faridi Perfumes Gallery. Make every moment unforgettable with premium Arabic and French fragrances crafted for every style. Visit our Al Sadd branch, Faridi Perfumes Gallery. Luxury you can wear. Visual media partner Rehab Media.
11: Dosti kai kuch sulay madam. No sorry, no thank you.
12: Bhai saab, sorry and thank you. हमें दोस्ती नहीं, एंटरटेनमेंट चाहिए।
2: तुम मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
13: खूब मिलेगा, मिलेगा।
14: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
15: 89.6 FM, मिर्ची वन। इट्स हॉट।

मेहरबान कदरदान, मैं आ गई हूँ मेरी चीशा आपके साथ एक नया फैक्ट शेयर करने। पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में एक ऐसा वर्ड है, सिर्फ एक ऐसा वर्ड है जहां पे डबल लेटर्स तीन बार यूज किए जा रहे हैं। मींस डबल लेटर का सेट है, तीन सेट हैं डबल लेटर्स के, और वो सिर्फ एक ही ऐसा वर्ड है जिसका नाम है, आपने सही सोचा, बुक कीपर। जी हाँ, बुक कीपर में डबल ओ भी आता है, डबल के भी आता है, डबल ई भी आता है। That's a strange one. और आप हैरान होंगे कि पूरी इंग्लिश में एक ही ऐसा वर्ड है जो ऐसा है। बाकी ऐसे फैक्ट्स के लिए सुनते रहिए मुझे, यानी कि मेरी शीशा को ओनली 89.6 मिर्ची 1 एट 7।

0: emergency helpline?
1: Yeah. Hi there. What's up? Tell me.
0: Sir, computer में virus घुस गया है. क्या करूँ?
1: Oh my God. आज ही डॉक्टर के पास लेके जा और वैक्सीन दिला.
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा.

0: with Mirchi. Fresh Maal.
1: High voltage beats और unstoppable groove के साथ सुनो माशुका.

0: गाने को गाया है महमूद, अमिताभ भट्टाचार्य, राघव चैतन्य और रुआ के ने। म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म कॉकटेल 2 से सुनते रहिए माशुका, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 rupee ट्रायल पैक नाउ।
1: बुक्स आर योर चाइल्ड्स बेस्ट फ्रेंड, इफ यू ऑल्सो थिंक दैट ना, तो आपके लिए ये एक मजेदार जगह लेके आई। इंडियन कल्चरल सेंटर यानी कि ICC ने एस्टैब्लिश की है एक ऐसी लाइब्रेरी जहाँ पे 6000 से ज्यादा बुक्स मिलेंगी डिफरेंट लैंग्वेजेस में, इंडियन डिफरेंट लैंग्वेजेस, चाहे आप पंजाबी हो, गुजराती हो, मराठी हो, हर लैंग्वेज में आपको वहाँ बुक्स मिलेंगी। तो देखिए बहुत आसान है पहुँचना ICC है, बच्चों को लेके जा सकते हैं, इस वीकेंड सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बस जाना है ICC और बुक का लुत्फ उठाना है किसी भी लैंग्वेज में, जो भी आपको अच्छी लगती है लीजिए और एंजॉय करिए, मजा ही आ जाएगा। Baki, stay tuned with me only on 89.6 Mirchi 1, it's hot.
2: Mirchi, fresh maal.
0: Full on masti, madness aur jungle ke adventure ke vibes ke saath suno. Welcome to the jungle, title track.

0: गाने को गाया है शान, प्रिया पाटीदार और विक्रम मॉन्ट्रोज ने। म्यूजिक दिया है विक्रम मॉन्ट्रोज और साजिद वाजिद ने, और लिरिक्स लिखे हैं मेघा बाली और शब्बीर अहमद ने। वेलकम टू द जंगल मूवी से सुनिए वेलकम टू द जंगल टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: हेलो
2: हेलो नवनीत। नवनीत, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ।
1: हाय नवेद,
2: क्या हाल चाल है?
1: बढ़िया है।
2: आपने मैसेज किया था अपने फादर का मुर्गा बनवाने के लिए।
1: हाँ हाँ हाँ, बन गया क्या?
2: यार तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुमने किस आदमी का नंबर दिया यार मुझे? सोच समझ के नंबर देते हो नहीं देते हो? मैंने उनको फोन किया, वो मुझ पे भड़क रहे हैं यार शुरू में ही।
1: या मैं तो अपने पापा का ही नंबर दिया।
2: पापा का नंबर, नाम क्या है यार पापा का?
1: मिस्टर दिलीप।
2: उनसे ही मेरी बात हुई है यार। मैंने माना, मजाक मजाक अपनी जगह है, मुर्गा बनाता हूँ, मैं भी हंसता हूँ, तुम्हें भी हंसाता हूँ, लेकिन यार ये थोड़ी है उसका नाजायज फायदा उठा लो तुम।
1: मैं क्या कुछ गलत
2: बोल दिया यार? मैं मतलब यहाँ पे इसलिए आता हूँ कि मैं गालियाँ सुनूँ यार?
1: अब ऐसी बात क्या,
2: ऐसी बात क्या हो गई? अपने फादर से पूछो यार जाके। नहीं, अपने फादर से क्यों नहीं पूछते तुम जाके?
1: मैं क्या
2: पूछूं यार, तुम्हें पहले कहना चाहिए था मुझसे कि उन्हें गुस्सा आता है, वो ज्यादा भड़क जाते हैं यार।
1: अब गुस्सा तो सभी को आता है, ठीक से बात कर ले।
2: तुम मुझे ये बताओगे कि मैं कैसे बात कर लेता यार? नवनीत कमॉन यार, ऐसे नहीं होता है। मैंने माना कि चलो एक शो है, मुर्गा बनाते हैं, उसमें ये थोड़ी यार क्या है तुम उठा के किसी का भी नंबर दे दो, किसी का भी मुर्गा बनवा लो।
1: अब कुछ ज्यादा पापा ने बोल दिया तो
2: अरे तो
1: तरफ से मैं माफी मांग,
2: माफी मांगने से क्या होता है यार? ऐसी मैं माफी मांग रहा था उनसे, मैंने माफी मांगी है 50, वो नहीं मान रहे। तुमने यार पता नहीं उठा के क्या समझ रखा है मुझे।
1: अब मैंने क्या, मैंने बोला कि मुर्गा बनाना है, SMS कर दो, मैंने कर दिया।
2: तुम मुझे क्या पता था यार तुम अपने ऐसे फादर का नंबर दे दोगे यार?
1: ऐसे फादर क्या, मेरे तो एक ही फादर है, मैं ढूंढ के लाऊंगा।
2: अरे तो यार अब तुम उल्टे मुझसे बात कर रहे हो। एक तो पहले बाप की सुनिए, अब मैं बेटे की सुन लो। यार तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया क्या?
1: मेरा खराब नहीं हो गया, मुझे लग रहा है आप ही का थोड़ा हो गया।
2: इस वक्त तुम्हारा ही मुर्गा बन रहा है, मेरी तुम्हारी फादर से अभी तक बात भी नहीं हुई। ऐसे अच्छे काम होते रहते हैं यहाँ पर। वैसे तुम्हारे फादर के वाकई में गुस्से वाले हैं।
1: नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है, कभी कभी तो गुस्सा कर ही देते।
2: चलो एक बार प्यार से मेरे साथ उनकी तरफ से बोल दो।
1: कुकड़ुकू
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।

0: 10 out of 10
1: क्यों नहीं चाहिए चल
0: ओके देन भरे कलब में रह जाएगी बिल्लो फिर कल ही तू कौन संभालेगा तुझको जब हो जाएगी टल

देखिए, रंगों से खेलना एक बहुत मज़ेदार चीज़ होती है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ एक ऐसा इवेंट जहाँ पे आपको इमर्सिव वे में कलर वर्स एक्सपीरियंस करवाया जाएगा, तो अगर आप भी इस कलर वर्स की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं तो भाई दिन दूर नहीं। जी हाँ, 15 जुलाई से शुरू होने वाला है कतारा कल्चरल विलेज में एक ऐसा खूबसूरत सा एक्सपीरियंस जिसको आप कभी भी भुला नहीं पाएंगे, एंड इट इज अप टू सितंबर 15 तक रहेगा। इस इवेंट में बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो टोटली नई होंगी आपके लिए, आपने कभी नहीं देखी होंगी, जिसमें हम बात करें वर्ल्ड ऑफ लाइट की, कलर की या डिस्कवरी की। ये सब एडवेंचरस चीजें आप वहीं देखोगे, बस आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा उसके लिए। ये इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस है ना, देखो कलर की जो बात होती है ना, तो आई लव कलर्स। जब आज भी मैंने बहुत कलरफुल कपड़े पहने हैं तो भाई उसी से पता लगता है कि हाउ कलरफुल आई एम। तो मैं तो ये इवेंट कभी नहीं छोड़ूंगी, बिकॉज दिस इज अ ब्यूटीफुल इवेंट व्हिच आई थिंक एवरीवन शुड गो। अपने बच्चों को भी साथ लेके जाइए, इंजॉय हो जाएगा। एक ऐसा कलरफुल इवेंट जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, एक ऐसा इमर्सिव एक्सपीरियंस। भाई बस एंजॉय करिए मेरे साथ, ऐसे ही खूबसूरत से इवेंट आपको बताती रहूंगी। स्टे ट्यून्ड विद मी 89.6 मिर्ची 1.8।

0: It's hot.
1: Mirchi stories. Stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी.
3: यार तूने सुना, एक 19 साल की लड़की कोमा से जागी और उसको लगा वो 3 बच्चों की माँ है और वो उनको ढूंढने लगी.
4: भाई इंसान कोमा में जाने के बाद अपनी मेमोरीज लूज करता है, ये तो नई मेमोरीज बना के आ गई. और ऊपर से एक और चीज, इसको अडल्टहुड से पहले पेरेंटहुड का स्वाद मिल गया.
0: मिर्ची, इट्स हॉट.
5: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे.
6: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी.
7: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी.
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
0: FM Mirchi 1. It's hot.
9: It's hot.

मैं वापस आऊंगा। जी नहीं, मैं बिल्कुल भी बॉर्डर की फिल्म की बात नहीं कर रही। मैं बात कर रही हूँ दिलजीत दोसांझ की आने वाली मूवी के बारे में, मैं वापस आऊंगा। जी हाँ, जहाँ पे स्टारर परवरी वाघ इनके साथ एक्टिंग कर रही हैं, एंड उसके अलावा नजरुद्दीन शाह देखने को मिलेंगी। एंड इसकी सबसे मस्त बात ये है ना कि ये डायरेक्टेड है भाई इम्तियाज अली, और एआर रहमान जी का म्यूजिक है भाई, क्या ही कहने, सोने पे सुहागा हो गया। ये मूवी हिट तो होगी होगी, जब ये कॉम्बिनेशन बन जाते हैं ना सारे, तो भाई हिट होने का 100% चांस होता है। बाकी ये रिलीज होगी 12 जून 2026 को। देखना ये होगा कि ये जो रोमांटिक ड्रामा होगा ये कितना मेलो होगा और कितना खूबसूरती से दिखाया होगा, ये देखना बहुत जरूरी है। तो वेट करना पड़ेगा उसके लिए। एंड फॉर मोर ऐसी चटपटी बातों के लिए सुनते रहिए मुझे, यानी कि मिर्ची ईशा को ऑन 89.6 मिर्ची 107।

अच्छा तो हम चलते हैं। और अगर आप पूछ रहे हैं कि फिर कब मिलोगे, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीकेंड। जी हाँ, फ्राइडे एंड सैटरडे मिलूंगी आपको इसी जगह इसी समय। और करना क्या है आपको, हमको फॉलो भी करना है इंस्टाग्राम हैंडल्स पे हमारे मिर्चीवान कतर को आप फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ढेरों सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, अपडेशन मिलती रहेगी हमारे इवेंट्स से रिलेटेड। कुछ भी हो रहा है कतर में, सब कुछ आपको पता लगेगा हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर। उसके अलावा आप मुझे मेरे पर्सनल अकाउंट पर भी फॉलो कर सकते हैं, यानी कि मिर्ची ईशा पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। और एंटरटेनमेंट का डोज लेने के लिए बस आप सुनते रहिए हमें, यानी कि मिर्चीवान कदर को। इट्स हॉट।

0: Bollywood Bordal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Bordal. Only on Mirchi. It's hot.
1: श्रेयस तलपड़े आपकी सबसे पहली हिंदी फिल्म इकबाल थी, लेकिन क्या आपको याद है सबसे पहला गाना आपने कौन सा शूट किया था?
2: एक्चुअली टेलीविजन सीरियल का हमने एक टाइटल सॉन्ग शूट किया था, तो आई थिंक दैट प्रोबब्ली वाज द वन व्हिच वाज माय फर्स्ट सॉन्ग एज सच. मराठी गाना था वो. टाइटल था सीरियल का बेधुंद मना चल लहरी. इट वाज लाइक बेधुंद मना ची लहर लहरी चा होती लाटा लाटा होता कहर किनारा शोधती हजार वाटा.
1: श्रेयस, यू आर नॉट ओनली अ गुड एक्टर, यू आर अ फाइन सिंगर. मुझे लगता है आपको ये वाला ऑप्शन अब एक्सप्लोर करना शुरू कर लेना चाहिए. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोल्डाल. बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल. ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

0: जो पाँव के ऊपर पाँव को रखे और बैठे,
1: वो चट्टान जिस पे वो बैठे।

Papus, papus, papus, papus.

0: Herkes çok eganay sana.
1: Hello, Mirchi Helpline.
2: बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन का नंबर है।
1: मेरे बॉस की सारी गलती की ओनरशिप हर बार मुझे ही लेनी पड़ती है, क्या करूं?
2: अरे तो बॉस को बोल दो कि ये कंपनी भी उनकी एक गलती है।
3: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का हंस।

0: यार देखो, हर दिन खास हो ये तो जरूरी नहीं, लेकिन हर दिन में कुछ खास हो ये जरूर है।
1: मिर्ची अंशु
0: Welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is Aaj Anshu with you. Well, एक बार फिर से आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए आ ही चुकी हूँ। यार पता है क्या, जिंदगी में ना हर दिन परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हर दिन में कुछ ना कुछ परफेक्ट हो ये जरूर होता है। यार हम ना अक्सर अपने दिन को जज करते हैं बड़े अचीवमेंट्स में, बड़े प्रमोशंस में, डील, रिजल्ट, इन सारी बातों के चलते। लेकिन जब वो नहीं मिलता तो लगता है यार आज का दिन बस यूं ही गुजर गया, बिल्कुल भी खास नहीं था। लेकिन यार सच कहूं, जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादें अक्सर छोटी छोटी बातों में छुपी होती हैं, जिन्हें कई बार हम नोटिस करना बस भूल जाते हैं। सुबह घर से निकलते वक्त किसी अपने की वो मुस्कान, किसी दोस्त का अचानक से मैसेज आ जाना, ट्रैफिक में किसी अनजान का हमें रास्ता दे जाना, या फिर बस एक कप चाय के साथ मिला वो सुकून। यार खुशियां जो है ना, हमेशा बड़े पैकेजिंग में नहीं आती, कई बार छोटे छोटे लम्हे खुशियां अपरंपार दे जाते हैं, बस उन्हें महसूस करने की देरी है। वो कहते हैं ना, हर रोज कोई नई कहानी नहीं होती, हर रोज कोई बड़ी मेहरबानी नहीं होती, मगर जो दिल से देख ले जिंदगी को उसके लिए कोई सुबह आम नहीं होती। स्टूडियो टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु, एंजॉय।

0: Mirchi.
1: Iscabana, puscabana, sacabana. Rambana. Burka, burka. La vida para la burka.
2: Mirchi, burka.
3: हेलो
4: हेलो सुनील जी।
3: हाँ जी
4: सुनील जी, पेट्रोल पंप से बोल रहा हूँ। सर कंग्रेचुलेशंस, आप लकी विनर हैं।
3: किस चीज के जी सर?
4: सर आपका 20 लीटर पेट्रोल निकला है बिल्कुल फ्री। मैं तो सोच रहा था बड़े खुश हो जाएंगे क्योंकि पेट्रोल के
3: यार, बहुत बड़ी है।
4: तो सर ये आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको फिल कराना होगा, भरवाना होगा अपनी गाड़ी में।
3: ठीक है। अच्छा एक बात तो बताइए सर जी।
4: हाँ जी।
3: इसके पैसे ऐसे देने पड़ेंगे कुछ?
4: नहीं सर, पैसे कोई नहीं, कोई पैसा नहीं।
3: कंडीशन वगैरह
4: नहीं सर, कोई सर कोई कंडीशन नहीं है। पुराने ग्राहक है आप, ऐसे कैसे कंडीशन रख लेंगे?
3: तो ठीक है, ग्राहक पुराने ग्राहक को आदमी थोड़ा अपने समझ के कहते हैं ना, अपने कोई ज्यादा।
4: बस सर बिल्कुल फ्री है, पैसे आपको नहीं देने पड़ेंगे। एक छोटा सा काम करना पड़ेगा।
3: क्या?
4: पुराना लाइए, नया ले जाइए।
3: क्या भैया, पुराना क्या लाऊं भाई?
4: पुराना पेट्रोल लाओ, नया ले जाओ सर, बस यही है। और वो भी आप ही का निकला।
3: क्या बात हुई, पुराना कहाँ से लाऊं?
4: सर पुराना जो आपने
3: पुराना हो तो जल के वो खत्म कर दिया हो
4: तो सर जो आपने पुराना यूज किया होगा वो तो लाना पड़ेगा ना आपको।
3: धुआं में कहाँ से इकट्ठा करूँ?
4: पहले तो आप बड़े दांत फाड़ रहे थे जब मैंने आपसे कहा 20 लीटर फ्री पेट्रोल है, वाह वाह जी वाह वाह थैंक यू। अब मैं आपसे कह रहा हूँ
3: पेट्रोल मिल गया तो बड़ी अच्छी बात है।
4: अरे
3: क्या हो रहा?
4: अरे तो ये क्या
3: पुराना कहाँ से लाऊं?
4: पुराना आपको लाना पड़ेगा, ये भी मैं पुराना भी वैसे हर वक्त रोते रहते हैं पेट्रोल के पैसे बढ़ गए। हम फ्री दे रहे हैं तो ला के नहीं दे सकते पुराना। यार कमाल कर रहे हैं आप,
3: हमें नहीं चाहिए पेट्रोल फालतू का। अच्छा। पुराना लाओ, नया ले जाओ, ये ले जाओ।
4: अरे मेरी बात सर जी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। अगर आप पुराना ले भी आए तो भी आपको 20 लीटर पेट्रोल फ्री नहीं मिलेगा। हाँ मुर्गा खाने को जरूर मिल सकता है। सर मजा आ गया आपसे बात करके, मतलब आपके गुस्से से डर गया मैं।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: यार मुझे एक बात बताओ, आपको क्या लगता है कि इंडिया में मैंगोस की कितनी वैरायटी आती होंगी?
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. अगर इंडिया में आम की वैरायटीज को हम सोचने की कोशिश करें तो जहन में ख्याल आएगा शायद 50, अरे 100 और क्या। भाई साहब इतना समझ जाइए कि इंडिया में अगर आम की वैरायटी को आप देखेंगे तो नई से नई 1000 वैरायटी से ज्यादा मैंगोज प्रोड्यूस होते हैं। ठीक सुना आपने, इसीलिए तो आम को फलों का राजा कहा जाता है, जैसे कि मैं आपके दिल की रानी। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा आम का प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर है, लेकिन जो मैंगोज उगाए जाते हैं उनमें से बहुत ही एक छोटा सा हिस्सा जो है ना एक्सपोर्ट होता है। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो इट इज जस्ट 1% मैंगोज दैट इंडिया एक्सपोर्ट्स, क्योंकि बाकी पूरा का पूरा जो है वो इंडिया में ही कंज्यूम हो जाता है। और हम इंडियंस बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि भैया आम जो है फलों का राजा नहीं है, इनफैक्ट हमारे दिल का राजा भी जो है ना, खासकर गर्मी के मौसम में ये जरूर है। चलिए जी, जितने भी इंडियन मैंगोज के लवर्स हैं, आपके लिए एक अच्छी वाली खबर मैं बताई दूं। थर्ड इंडियन मैंगो फेस्टिवल यानी कि हम्बा एग्जीबिशन जो है 18th ऑफ जून से लेकर 27th ऑफ जून तक सुख वाकिफ के ईस्टर्न स्क्वायर में कंडक्ट किया जाएगा। फुल्ली एयर कंडीशन एरिया है तो वहां पे पहुंचना जरूर। एंड दिस इज हैपनिंग इन कोलैबोरेशन विद द एम्बेसी ऑफ इंडिया। तो भैया जाइए, ढेर सारी शॉपिंग करके आइए, उसके बाद आप और हम मिलकर जो है आम के मजे लेंगे। क्या कहती पब्लिक। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु। एंजॉय।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक 19 साल की लड़की कोमा से जागी और उसको लगा वो 3 बच्चों की माँ है और वो उनको ढूंढने लगी।
3: भाई, इंसान कोमा में जाने के बाद अपनी मेमोरीज लूज करता है, ये तो नई मेमोरीज बना के आ गई। और ऊपर से एक और चीज, इसको अडल्टहुड से पहले पेरेंटहुड का स्वाद मिल गया।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
6: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल,
7: क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने। हिट गाने
8: कतर का नंबर 1 रेडियो स्टेशन
9: 89.6 FM मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: ताज़ा खबर, ताज़ा खबर।
1: मिर्ची अंशु।
0: देखिए बात इतनी है कि आज की ये खबर शायद हेडलाइंस में छोटी लगे, लेकिन कई फैमिलीज में इसका इम्पैक्ट काफी बड़ा है। वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। वाल, इस वक्त कतर की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड हाई एजुकेशन ने गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ने वाले कुछ नॉन कतरी स्टूडेंट्स के लिए टेक्स्ट बुक और स्कूल ट्रांसपोर्टेशन फी एग्जेम्पशंस को एक्सपैंड कर दिया है एंड दो कैटेगरीज को इस एग्जेम्पशन लिस्ट में ऑफिशियली ऐड किया गया है। नंबर वन, होल्डर्स ऑफ कतरी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स एंड नंबर टू, होल्डर्स ऑफ परमानेंट रेसिडेंसी कार्ड्स। यानी अगर कोई स्टूडेंट इन कैटेगरीज में आता है तो उसे अब गवर्नमेंट स्कूल्स में टेक्स्ट बुक्स और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस नहीं देना होगा। यार बात इतनी है ना कि कभी कभी एजुकेशन की एक्सेसिबिलिटी सिर्फ क्लासरूम्स बनाने से नहीं बढ़ती, कभी कभी एक छोटी सी या सिंपल सी पॉलिसी चेंज भी किसी फैमिली के फाइनेंशियल बर्डन को काफी हल्का कर देती है। एंड ये बात जो है कतर ने हमें जरूर बताई है, जिस तरह की हेल्थ केयर फैसिलिटीज, जिस तरह के एजुकेशन बेनिफिट्स हमें यहाँ मिलते हैं ना भाई साहब, ऐसा लगता है कि जो ख्वाहिशें थी, जो मुरादें थी, हमारे सपने थे, वो साकार होने में यहाँ की लीडरशिप और इस देश ने काफ़ी बड़ी हेल्प की। दिल से सलाम, बड़ा वाला थैंक यू। बच्चों को कहें अच्छे से पढ़ें एंड आप उन्हें पढ़ाते रहें, लेकिन इस वक्त अपनी ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट के खजाने को खोलने के लिए टिक्के बने रहें, सुनते रहें कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची। इट्स हॉट। बंदी का नाम अंशु। एंजॉय।

0: बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: जब भी ताल फिल्म देखती हूँ ऐश्वर्या राय बच्चन के पीछे एक क्यूट लड़का दिखता है और वो कौन है? शाहिद कपूर। बट शाहिद, इफ आई हैड टू आस्क यू अबाउट योर फिल्म जर्नी एंड योर फर्स्ट सॉन्ग, कौन सा था वो?
3: मेरा पहला गाना था, इट वॉज इन इश्क विश्क ऑब्वियसली। द फर्स्ट सॉन्ग वॉज दिस सॉन्ग वी डिड इन अ कैंटीन कॉल्ड लव लव लव करो, वेयर ऑल द गाइज आर ट्राइंग टू इम्प्रेस द वुमेन।
2: शाहिद, व्हाट अ लवली डाइव इन नॉस्टैल्जिया। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा
1: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: यार ये बात तो तय है कि अपनी जिंदगी में एक ना एक बार मुझे अपने दोस्तों के साथ वो स्पेन रोड ट्रिप में जरूर जाना है।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. This is Arjanshu with you. ये बात आप भी अग्री करेंगे कि पिक्चरों ने फिल्मों ने हमारी जिंदगी में क्या गजब कमाल का रोल निभाया है। कई फिल्मों ने हमें रुलाया, कईयों ने हमें हंसाया, कईयों ने मोहब्बत करना सिखाया, तो कईयों ने टूटे हुए दिल को फिर से कैसे जोड़ते हैं ये बात सिखाई, कईयों ने हमें मोटिवेशन इंस्पिरेशन से पूरी तरह से भर दिया, तो कईयों ने रिश्तों की इज्जत करना सिखाई। या लेकिन एक ऐसी फिल्म जिसने सही मायने में मुझे जिंदगी जीने का सलीका सिखाया तो वो है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। चलिए इस फिल्म की डिटेल्स तो आप में से कईयों को बताऊंगी, लेकिन इस फिल्म का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है इस वक्त मैं आपके बीच पेश करूं। आपको वो याद है स्पेन रोड ट्रिप, वो दोस्ती, वो लाइफ लेसन, स्काई डाइविंग, टोमैटिना, एवरीथिंग। आपको मालूम है इस फिल्म के रिलीज के बाद टूरिज्म जो है इंडिया से स्पेन के लिए कुछ इस तरह से बढ़ा कि स्पेन टूरिज्म बोर्ड ने एक्चुअली इस बात को एक्नॉलेज किया कि इस फिल्म के इम्पैक्ट की वजह से इंडियन सब ज्यादा से ज्यादा टूरिज्म के लिए स्पेन आने लगे। इमेजिन, अ बॉलीवुड फिल्म लिटरली चेंज ट्रैवल ट्रेंड्स। Now people suddenly wanted road trips, adventure sports, bachelor trips, solo traveling. तो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा ये एक फिल्म नहीं थी भाई, इसने एक entire generation का पूरा mindset बदल दिया। अब देखिए इसके पहले हमारे लिए सक्सेस का मतलब होता था जॉब एंड स्टेबिलिटी, लेकिन कहीं ना कहीं जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के बाद लोगों ने एक्सपीरियंसेस को वैल्यू करना शुरू किया। और वैसे यही एक्सपीरियंस हुआ था दिल चाहता है के बाद जब लोगों ने गोवा को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे देखना शुरू किया। आप मुझे बताएं कौन सी फिल्म ने आपको हाईली इन्फ्लुएंस किया। 5000 1896, लेट्स गेट कनेक्टेड देयर। मीनवाइल स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु, एंजॉय।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: यस ऑफ कोर्स, मिर्ची हेल्पलाइन, बताइए।
0: सर, आई डोंट नो व्हाट टू डू आफ्टर कॉलेज, आप बताओ ना मुझे क्या करना चाहिए।
1: अरे तो सिंपल है ना, फटाफट कर जा, मम्मी इंतजार कर रही होगी।

0: मिर्ची।
1: कुल्फी ले लो, बर्फ का गोला ले लो।
2: मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु।
1: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. कुछ याद आया? अरे कुल्फी, बर्फ का गोला। यार कभी कभी लगता है कि हमारे बचपन की खुशियां कितनी सिंपल हुआ करती थी ना। आज के दौर को देखने की कोशिश करें तो एक्साइटमेंट के लिए क्या कुछ नहीं है। ऑनलाइन ऑर्डर्स, नोटिफिकेशंस, फ्लैश सेल्स, वीकेंड प्लान्स, डील्स, व्हाट नॉट। लेकिन एक वक्त था जब गली के कोने से एक आवाज आती थी, कुल्फी ले लो, बर्फ का गोला ले लो। और हम सब छोड़कर भागते हुए बाहर निकल जाते थे। ना कोई ऑनलाइन ऑर्डरिंग ऐप, ना कोई फूड ऐप, बस एक ठेले वाले भैया होते थे, एक छोटी सी घंटी होती थी और दिल में बड़ी सी खुशी आ ही जाती थी। वो 50 पैसे की आइसक्रीम, 1 रुपए का बर्फ का गोला एंड ऊपर से वो लाल हरा पीला सिरप, मेरा फेवरेट वो काला खट्टा। उस वक्त लगता था कि दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी जो है ना, बस हमारे हाथ में है। और सबसे खास बात क्या है पता है, उस आइसक्रीम का टेस्ट इतना याद नहीं है ना मुझे, उससे ज़्यादा उसका इंतज़ार याद है। शाम को दोस्तों के साथ साइकिल चलाना, घर वालों की डांट खाकर भी थोड़ी देर और खेलना और फिर वो गोला खाते हुए घर लौटना और मम्मी की डांट सुनना कि आज फिर कपड़े गंदे कराए तुम। शायद जिंदगी इतनी आसान नहीं थी, लेकिन खुशियां जो है ना बड़ी आसानी से मिल जाती थी। यार मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी, अगर आपके पास एक टाइम मशीन हो एंड 10 मिनट के लिए सही अगर आपको वो बचपन के दौर को फिर से जीने का मौका मिले तो आप सीधा कौन सी याद में जाएंगे, जरूर बताना। 5000 1896। आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। इंस्टाग्राम मिर्ची 1 कतरिया मिर्ची अंशु। मीनवाइल स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु। एंजॉय
0: मिर्ची, फ्रेश माल।
3: हाई वोल्टेज बीट्स और अनस्टॉपेबल ग्रूव के साथ सुनो माशुका।

इस गाने को गाया है महमूद, अमिताभ भट्टाचार्य, राघव चैतन्य और रुआ के ने। म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म कॉकटेल 2 से सुनते रहिए माशुका, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, वन रिपीट।

0: Hello.
1: Is that Sanjeev?
0: Yeah, I'm speaking.
1: Hi Sanjeev, I am Atul calling from.
0: Okay.
1: संजीव आपने 3 राउंड्स क्लियर कर लिए हैं कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के लिए. ये आपका फाइनल राउंड है जिसमें हम कैंडिडेट के पेशेंस चेक करते हैं, उसमें कितने पेशेंस है, कितना इत्मीनान है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि इस तरह की जॉब है. तो आपको लगता है कि आप में पेशेंस हैं सारे?
0: पेशेंस तो है, मैंने जो अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया हुआ उसमें भी मेंशन है ये चीज.
1: ओके.
0: कई तरह के कस्टमर्स होते हैं, उनको सेटिस्फाइड करने ही हमारा काम है.
1: कितने साल जॉब करी है आपने इससे पहले?
0: मैंने 2 साल काम किया एज अ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव.
2: चुप कर. 2 साल काम किया एज अ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव.
0: सॉरी सर.
1: कैरी ऑन रखिए. आप बताइए मुझे अपने बारे में. ये मैं आपके पेशेंस चेक कर रहा हूँ. हाँ बताइए. भड़कता हुआ कस्टमर आता है, कॉल करता है, तो उसको किस तरह हैंडल करते थे?
0: कस्टमर्स आए हैं, जब मैंने आपको बताया ना, मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है. इस टाइप के कई कस्टमर्स आते थे जिनको हम बहुत ही कूलली, बहुत पेशेंट के साथ उनको सेटिस्फाइड.
2: बकवास बनकर कूलली तू करता था. कूलली दांत अंदर कर.
0: हम करते थे सेटिस्फाइड कर.
2: बकवास बनकर
0: जैसे आप बोल रहे हो ना, ऐसी ज्यादा गुस्सा दिखाते हैं वो लोग.
1: अच्छा, इससे ज्यादा दिखाते. अच्छा मुझे ये बताइए कि मान लीजिए कोई कस्टमर ऐसा है जो कि मान ही नहीं रहा आपकी बात और वो डांटे जा रहा है, तो आप क्या करेंगे उसके लिए?
0: सर, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पहले हमारी बात सुने.
2: शराब
0: उन्हें.
2: अब टेस्ट तुम्हारा खत्म हो चुका, कोई पेशेंट चेक नहीं कर रहा. अब ये असलियत कह रहा हूँ, तुम्हें बोलने की तमीज है नहीं यार.
0: अभी तक
2: पेशेंट चेक कर रहे, लेकिन वाकई में तुझे तमीज ही नहीं है. मोबाइल के कस्टमर केयर में जॉब करने के लिए कह रहा है करूंगा. मोबाइल ने पकड़ा कभी हाथ में?
0: बोल
2: जॉब करूंगा, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बनूंगा. कस्टमर इंसान तो बन जा पहले यार, इंसान बना नहीं है.
0: खुद को देखा आपने कभी?
1: संजीव कोई इंटरव्यू की कॉल नहीं है, मुझे पता चला तुमने 3 राउंड दे चुके हो. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा मुर्गा बना रहा था. लेकिन तुम पूरी तरह क्वालिफाई कर गए हो ये राउंड. तुम्हें जॉब मैं दूंगा. Okay. तुम मेरे शो में आके बैठो, मुझ पे भी कभी कभी डांट पड़ती है.
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची.

0: पावर्ड बाय iPay, बेस्ट रेट नो स्ट्रेस iPay वॉलेट का भरोसा डाउनलोड कीजिए आज ही iPay, द बेस्ट रेमिटेंस रेट इन कतर Pizza Partner, Papa John's special offer. Buy one large pizza and get one small pizza free. Exclusively on the Papa John's app and website. Order, earn and repeat with Papa Rewards. Download the Papa John's app today and enjoy more rewards.
1: Eyewear partner Al Fahad Optics. Clear vision, stylish fashion. All at perfect price. Free eye checkup at any branch. Direct partner with Al Ghoot Insurance. Visit Al Fahad Optics all over Qatar. Call 555-6189.
2: रेस्टोरेंट पार्टनर चस का रेस्टोरेंट चाइनीज मुंबई हो या नॉर्थ इंडियन का क्रेज बजट में चाहिए टेस्टी डीज तो चलिए चस का रेस्टोरेंट जो है एस दानो एसिस में स्वाद भी जबरदस्त और प्राइस भी मस्त
1: मॉल पार्टनर अबू सिद्रा मॉल शॉपिंग डाइनिंग एंड एवरीथिंग इन बिटवीन अबू सिद्रा मॉल हैज इट ऑल अबू सिद्रा मॉल फॉर एवरी डे एंड एवरी ओकेजन
2: Hygiene partner, hygiene. From clean skin to healthy life. Experience total protection with hygiene sanitizer, wet wipes and body wash. Hygiene, pure protection.
1: Sugar-free partner, Tropicana Slim. Looking for a sweeter life without the sugar? Tropicana Slim is your perfect partner. Enjoy the same great taste with zero sugar. Tropicana Slim.
3: Jewelry partner Sky Jewelry. हर पल को बनाए खास Sky Jewelry के साथ elegant designs, dazzling collections और हर budget के लिए perfect jewelry. Shop now and enter the mega draw on June 23rd for a chance to win a brand new Lexus car. Sky Jewelry, design for generations.
1: Refreshment partner Baladna Milk, Laban Yogurt. Experience the fresh, creamy taste that Qatar loves, refreshing every moment with every sip and spoon.
0: Fragrance partner Faridi Perfumes Gallery. Make every moment unforgettable with premium Arabic and French fragrances crafted for every style. Visit our Al Saad branch, Faridi Perfumes Gallery. Luxury you can wear. Visual media partner Rehab Media.

0: यार मैं तो सोच रही हूँ कि अपने नए घर में ना बस आपको दस्तक दे ही दूँ।
1: मिर्ची अंशु
0: इतना जान लीजिए वहाँ पे सी व्यू है, रिसॉर्ट लाइफस्टाइल है, साथ ही बीच का साथ है। वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। अगर आपका सपना बिल्कुल मेरे सपने से मिलता जुलता है तो बस अपना सपना आप साकार होने वाला है। बिकॉज इस वक्त अगर एक नए डिसीजन को देखें तो नॉन कतरीज की प्रॉपर्टी ओनरशिप में कतर में एक नया नाम जो है वो एड हो चुका है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट समाइस्मा रिसॉर्ट एंड बीच प्रोजेक्ट। क्या बात है यार, तो बस अब वो सी वाला व्यू हो गया या सारी लक्जरी लाइफस्टाइल हो गई आपकी जिंदगी में ऐड हो ही जाएगी। लेकिन इस वक्त अगर आप लिस्ट को देखने की कोशिश करेंगे तो नॉन कतरीज के लिए 10 डेजिग्नेटेड एरियाज हैं जहां पर हम बिल्कुल प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं। वेस्ट बे, द पर्ल कतार, अलखोल रिसोर्ट, दफना जोन 60 एंड 61, ओनाइजा, लुसेल, अल खराइज, जबाल थोलाइब एंड समाइस्मा रिसोर्ट एंड बीच प्रोजेक्ट विच हैपन्स टू बी अ न्यू एडिशन। बढ़िया है जी, तो अब जाइए अगर आपका दिल करे कि ऐसा कोई घर लेना है, बिल्कुल पैसे खर्च करिए एंड घर जो है लेकर आइए। आपके घर को अपना समझते हुए मिर्ची की पलटन जो है ना बिल्कुल कब्जा करने आएगी। दावत पे बुलाओगे तो एंजॉय करने आएगी। क्या कहती पब्लिक। स्टेडियम टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु, एंजॉय।

0: में शी स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक 19 साल की लड़की कोमा से जागी और उसको लगा वो 3 बच्चों की माँ है और वो उनको ढूंढने लगी।
3: भाई इंसान कोमा में जाने के बाद अपनी मेमोरीज लूज करता है, ये तो नई मेमोरीज बना के आ गई। और ऊपर से एक और चीज, इसको अडल्टहुड से पहले

0: देखो भाई, इसे कहते हैं भीषण गर्मी।
1: मिर्ची अंशु
0: हाय गर्मी, वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। वेल, आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाने एक बार फिर से आ चुकी हूँ। यार सच कहूँ, हम ना बेसिकली उस फेज में इस वक्त एंटर कर चुके हैं जिसे कहीं हम अपने देश में नौ तपा कहा करते थे, लेकिन ना वो नौ दिन नहीं, 13 दिन का सफर जो है हमारी जिंदगी में कंटिन्यूड है। यानी कि कतर के जो 13 सबसे गर्म दिन होने वाले ना इस साल के, उसे हम मिलकर इस वक्त जी रहे हैं। तभी तो शाम के समय भी जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो लगता है भाई नेचुरल वाली हवा से सिकाई जो है ना तुम्हारी हो ही गई। तो अब घर में अगर कोई लफड़ा हो तो तुम बाहर जाकर मुंह फुलाकर बैठ भी नहीं सकते, लगता नहीं भैया घर वालों को झेल ले वही बेटर है। देखें आज के मौसम का हाल क्या है।
2: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
3: वेदर अपडेट।
0: वेल, अगर आज के मैक्सिमम टेम्परेचर की मैं बात करूं, सो इट इज गोइंग टू बी अराउंड 47, मिनिमम इज गोइंग टू बी अराउंड 35। गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, फीलिंग जो है 50 से कम नहीं है। अरे उम्र की बात नहीं करी, टेम्परेचर बता रही हूँ। तुम्हारी उम्र हर किसी को ऐसे पब्लिकली थोड़ी ना बताती चलूंगी। अपना बहुत ख्याल रखें, कीप योरसेल्फ फुल्ली हाइड्रेटेड। एंटरटेनमेंट के तड़के के लिए, दिमाग इनकरेज की ठंडक के लिए सुनते रहे कतर का नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची। इट्स ऑल एंजॉय। पंडित का नाम अंशु।
3: वेदर चेक ब्रॉट टू यू बाय RSL ग्रुप ऑफ कंपनी। अब पाओ कतर में डिलीवरी राइडर्स और ड्राइवर की जॉब। फॉर ब्राइट फ्यूचर कॉल नाउ 3100813।

0: पावर्ड बाय iPay, बेस्ट रेट नो स्ट्रेस iPay वॉलेट का भरोसा डाउनलोड कीजिए आज ही iPay, द बेस्ट रेमिटेंस रेट इन कतर.
1: Let's do the iPay. 89.6
2: 89.6
3: मिर्ची.

0: या जो हर वक्त दिखे जरूरी नहीं वही सच हो।
1: मिर्ची अंशु
0: वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आर्यांशु विद यू। वेल, इतना कहना चाहूंगी कि अक्सर हम ना लोगों को देखकर काफी सारी धारणाएं मतलब बहुत सारी जजमेंट्स जो है ना करने लगते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर वक्त जो दिखता है सब कुछ बस वैसा ही हो। यार, हम सब ना अपनी अपनी जिंदगी कहानी कहीं ना कहीं जरूर लड़ रहे हैं। किसी को ऑफिस का टेंशन है, किसी को फैमिली का, किसी को हेल्थ का, तो किसी को फ्यूचर का। किसी की जिंदगी में क्या चल रहा है हम क्या ही समझ सकते हैं। तो अगर कोई इंसान किसी एक तरह से बिहेव करता है उसका मतलब ये नहीं कि इमिजिएटली आप जो है उसकी पर्सनालिटी को डिफाइन करने लग जाए। शायद इसे तो काइंडनेस कहते हैं, ह्यूमिलिटी कहते हैं, कि लोगों को जरा समझने की कोशिश करना, एम्पथी नामक चीज को अपनी जिंदगी में शामिल करना। यार, इतना ही कहना चाहूंगी, किसी को जज करने के बदले जब किसी से मिलो ना तो जरा एक मुस्कान देने की कोशिश करना। बिना मांगे ही क्यों ना एक पल के लिए वो मदद का हाथ बढ़ाने की कोशिश करना। हो सकता है कि कोई तुमसे नाराज हो, बिना दिल के भी कभी किसी को मनाने की ही कोशिश कर लेना, क्योंकि जो छोटी छोटी बातें हैं ना, क्या पता किसी की जिंदगी में बड़ा मैजिक क्रिएट कर ही जाए। क्या कहती पब्लिक, अगर बात अच्छी लगी फटाफट से एक थम्स अप भेजो 5000 1896। वी विल गेट कनेक्टेड देयर। इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची आंशु। अभी के लिए अलविदा, मुलाकात होगी कल सारी बातों के साथ, इंटरेस्टिंग खबरों के साथ। स्टेडियम टू मिर्ची, पंडी का नाम आंशु। एंजॉय।

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
2: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
3: एक बात बताइए, अगर कल सुबह बॉलीवुड उठकर अपनी याददाश्त खो दे तो उसे अपने बारे में सबसे पहले क्या याद आएगा? धुरंधर, ए.आर. रहमान, या फिर वो गाने जो सालों बाद भी बिना परमिशन के दिमाग में घुस जाते हैं? मुझे लगता है बॉलीवुड की सबसे बड़ी सुपर पावर कभी स्टार्स थे ही नहीं, इट वॉज ऑलवेज मेमोरी। और इस हफ्ते भी कहानी कुछ वैसी ही है। कुछ लोग पुरानी यादों को फिर से बेचने निकले हैं, कुछ लोग नई यादें बना रहे हैं, कुछ लोग नोस्टैल्जिया पे जी रहे हैं एंड कुछ लोग फ्यूचर लिख रहे हैं। और हम इन दोनों के बीच खड़े हैं, पास्ट और फ्यूचर के बीच, मेमोरी और मैडनेस के बीच। हाय, इट्स मी सुरेन एंड दिस इज इंडियाज मोस्ट डेफिनेटिव हिंदी म्यूजिक काउंटडाउन, द मिर्ची टॉप 20। एंड आज के एपिसोड की शुरुआत कर रहा हूं विद अ रहमान सॉन्ग फ्रॉम मैं वापस आऊंगा, विच इज अ डीसेंट साउंडट्रैक, लेकिन ये रॉकस्टार या हाईवे के लेवल की नहीं है। ये बात आई एम कंप्लीटली श्योर ऑफ। द सॉन्ग्स हैवन कनेक्टेड द सेम वे, बट हियर इज अ नाइस सॉन्ग मस्कारा, जिसे गाया है निलंजना घोष दास्तीदार ने, एंड इट इज ऑन नंबर 20।
2: नंबर 20।

कभी कभी मुझे लगता है कि दुनिया की हर बड़ी चीज थोड़ी सी दीवानगी के साथ ही शुरू होती है। एक ऐसा सपना जिसे देखने की हिम्मत सब में नहीं होती। पच्चीस साल पहले एक फिल्म आई थी, लेकिन मैं उसका नाम अभी नहीं लूंगा। पहले उसकी याद के बारे में बात करूंगा। मिट्टी उड़ रही थी, धूप सर पर थी, लोग पसीने में भीगे हुए थे और एक पूरा गांव अपनी सांसें रोक कर खड़ा था। यह सिर्फ क्रिकेट नहीं था, ये उम्मीद थी, ये जिद थी, ये वो एहसास था कि कभी कभी जिंदगी में एक ही मौका मिलता है और उसी एक मौके पर सब कुछ दांव पर लगाना पड़ता है। आज भी जब उस फिल्म के सीन्स हमें याद आते हैं तो स्कोर याद आता है, वो ढोल याद आता है, भुवन याद आता है, गौरी याद आती है और सबसे ज्यादा वो फीलिंग याद आती है कि हम किसी फिल्म को नहीं देख रहे थे, हम उस गांव के साथ जी रहे थे। और फिर सोचिए क्या आइडिया था, गांव के लोग, अंग्रेज, 3 घंटे से लंबी ये फिल्म और क्लाइमैक्स में एक क्रिकेट मैच। आज भी ये पिच सुनकर प्रोड्यूसर्स डर जाते हैं, लेकिन आमिर खान और आशुतोष गोवारिकर ने उस वक्त डर और कॉमन सेंस दोनों को साइड रख दिया और बना दी लगान। मुझे लगता है लगान की सबसे बड़ी जीत ऑस्कर नॉमिनेशन नहीं थी, उसकी सबसे बड़ी जीत थी कि उसने बॉलीवुड को बताया कि अगर कहानी में जान हो तो ऑडियंस किसी भी सफर पर आपके साथ चलने को तैयार हो जाती है। 25 साल बाद भी हम उस फिल्म को याद करते हैं, उसके डायलॉग्स के लिए नहीं, उसकी बॉक्स ऑफिस के लिए नहीं, बल्कि उस एहसास के लिए। और आज भी सवाल वही है, अगली लगान कौन बनाएगा? दिस एपिक फिल्म इज री रिलीजिंग, सो वॉच इट अगर आपको वक्त मिले। बिलाल मिर्ची .20 पर फहीम अब्दुल्ला की आवाज में वन ऑफ माई फेवरेट ट्रैक्स ऑन द शो, दिस इज चांद मेरा दिल ऑन नंबर 18।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इसका बना उसका बना सबका बना बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
2: हेलो
3: से बोल रहे
2: हैं? हाँ जी।
3: मुझे कुछ ऑर्डर करना था, आप लिख लेंगे प्लीज?
2: या
3: और रात के खाने के लिए लिख लीजिए प्लीज।
2: हाँ, बोलिए।
3: 2.5 किलो अरहर दाल, 3 किलो चना दाल, 3.5 किलो चना कबूली, 4 किलो चना डॉलर प्रीमियम, 1 बेसन। हाँ,
2: एक्चुअली में 2.5 किलो वगैरह हमारे यहाँ नहीं होता, 2-2 किलो में, 1-1 किलो में पैकिंग होती है, तो 2 केजी होती है।
3: अब आपको ये मैं क्या, वो 2.5 किलो ही खाते हैं, मैं क्या करूँ?
2: ओह माय गॉड,
3: मेरे हस्बैंड हैं डाइट उनकी, आपको क्या प्रॉब्लम है?
2: नहीं मैम प्रॉब्लम।
3: 4 किलो चना दाल, 4 किलो चना कबूली,
2: चना दाल, चना कबूली, एरोप्लेन भेज दूँ?
3: एरोप्लेन भेजिए, हमें जाना ना हनीमून पे।
2: सॉरी मैं ये बोल रहा हूँ 5 केजी एरोप्लेन राइट मैम, सॉरी।
3: एक सेकेंड, कभी फोन आ रहा है। स्वीट हार्ट आई लव यू, ऑर्डर दे रही हूँ। तुम आओ तो सही ना। No, I will be waiting for you, my sweetheart, my Janu.
2: Hello.
3: One second, मेरे हस्बैंड से बात चल रही है, one second. कब आओगे रात में? अच्छा सुनो, मेरे लिए रात में वो लेके आना ना, वही वही कुछ पूछे कुछ पूछे. Okay, sweetheart, bye. हाँ लिखिए, 3 प्लेट गोलगप्पे।
2: गोलगप्पे नहीं होते मैम
3: हमारे, चकोर दे दीजिए। गोलगप्पे नहीं है, चकोर वाले दे दीजिए।
2: है नहीं मैम हमारे यहाँ,
3: लंबे वाले
2: नहीं है वो।
3: अच्छा लास्ट फाइनली, मैं और मेरे हस्बैंड जो बहुत शौक से खाते हैं,
2: क्या खाते हैं
3: मैम? मुर्गा
2: मैम, वो भी नहीं है।
3: आपको ये नहीं मालूम दिल्ली में सबसे अच्छा मुर्गा कहाँ बनता है?
2: मैम ये हमें नहीं
3: पता। हमें मालूम है, मैं बताऊँ आपको?
2: हाँ जी मैम बताइए।
4: रेडियो मिर्ची, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं छोटा सा मजाक कर रहा था आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया भाई साहब हमने।
2: आपकी आवाज में काफी
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: वेलकम टू द जंगल, पूरी इंडस्ट्री दिख जाएगी भाई आपको इस फिल्म में। एंड टॉकिंग ऑफ दिस हिंदी फिल्म इंडस्ट्री एके बॉलीवुड, कभी कभी किसी एक फिल्म की कामयाबी पूरी इंडस्ट्री के लिए एक प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि वो ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस बदल देती है परमानेंटली। धुरंधर के बाद मुझे लगता है कि इंडियन स्पाई जॉनर उसी फेज में है। अब सिर्फ एक्सप्लोजन काफी नहीं है, अब सिर्फ स्लो मोशन वॉक्स काफी नहीं है, अब सिर्फ स्टाइलिश फ्रेम्स काफी नहीं है। ऑडियंस को खतरा महसूस होना चाहिए, वो दाव पेच महसूस होने चाहिए, और शायद इसलिए यशराज की फिल्म अल्फा का टीजर उतना इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाया जितनी उम्मीद की थी। इट्स गॉट आलिया भट्ट, इट्स गॉट बॉबी देओल, एंड इट इज गॉट शर्वरी। इट्स पार्ट ऑफ द YRFY यूनिवर्स। कागज पर तो सब कुछ सही लगता है, लेकिन टीजर देखने के बाद मुझे एक ही चीज महसूस हुई, सब कुछ बहुत कंट्रोल्ड है, बहुत पॉलिश्ड है, बहुत कैलकुलेटेड है, और स्पाई फिल्म्स कैलकुलेशन से नहीं केओस से याद रहती हैं। धुरंधर देखकर लगा था कि यार कुछ भी हो सकता है इस फिल्म में, अल्फा देखकर लगता है सब कुछ पहले से डिसाइड हो चुका है। और वैसे एक और सवाल है, फिल्म में शर्वरी भी है लेकिन टीजर देखकर तो ऐसा लगा जैसे उनका पासपोर्ट ही कहीं खो गया है। देखते हैं फिल्म क्या करती है, बिकॉज टीजर तो बस पहली झलक होती है। फिलहाल शर्वरी की जब बात चली ही है तो चलिए उनकी दूसरी फिल्म की तरफ। मैं वापस आऊंगा, AR रहमान जब नॉस्टैल्जिया को छू लेते हैं ना तो वो उसे म्यूजियम पीस नहीं बनाते, उसमें नई जान फूंक देते हैं। इश्क मस्ताना में 1940s के बिग बैंड जैज का रंग है, पंजाबी फोक की मिट्टी है, और मोहित चौहान की आवाज में वो खनक है जो सीधा हिट करती है। इट्स डेब्यूइंग ऑन नंबर 16, दिस इज इश्क मस्ताना by AR रहमान and Irshad Kamil.
1: Number 16.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना एक 19 साल की लड़की कोमा से जागी और उसको लगा वो 3 बच्चों की माँ है और वो उनको ढूंढने लगी।
4: भाई इंसान कोमा में जाने के बाद अपनी मेमोरीज लूज करता है, ये तो नई मेमोरीज बना के आ गई। और ऊपर से एक और चीज, इसको अडल्टहुड से पहले पेरेंटहुड का स्वाद मिल गया।
5: मिर्ची इट्स हॉट मिष्टी दोई, संगीत और मीठी बोली के शहर में अब खून की होली शुरू हो चुकी है।
6: यहाँ हर मुस्कुराहट के पीछे एक राज है और क्राइम का रंग अब ब्लैक हो चुका है। मैं आ रही हूँ इनके खेल खत्म करने।
5: संगीत की धुन अब चीखों में बदलेगी। Officer Brown is back to kill the devil. The dark side of Kolkata awaits. Brown, streaming from 12th June, only on Z5.
7: अर्ज किया है
8: इरशाद इरशाद।

0: आईपी पेमेंट्स का वाह तरीका. विद आईपी सेंड मनी स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट QAR 5 एंड यस विद द बेस्ट FX रेट्स. सिंपल, सीधा, नो टेंशन. चेक द आईपी ऐप टुडे फॉर आवर 5, 10, 15, 20 ऑफर वैलिड टिल जुलाई 31st. आईपी, स्मॉलर फीस, बिगर स्माइल्स. TNC अप्लाई.
1: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते. जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है.
2: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है.
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
3: 89.6 FM
4: मिर्ची 1.
5: Only on Mirchi. It's hot.
6: Number 15.

0: हमने वही दिल लगाया। और इस गाने की तरह बॉलीवुड में भी कुछ ट्रेंड्स ऐसे होते हैं जो अचानक वायरल नहीं होते, वो धीरे धीरे इंडस्ट्री का रूल बन जाते हैं। आज किसी भी बड़े हीरो को देख लीजिए, कॉकटेल में शाहिद कपूर है, जवानी तो इश्क होना है विद वरुण धवन, या फिर आने वाली कोई भी फिल्म, एक चीज ऑलमोस्ट नॉन नेगोशिएबल हो चुकी है, एब्स। कभी सिक्स पैक, कभी एट पैक, कभी ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो, तो कभी डाइट प्लान। आजकल रोल अनाउंस होने से पहले एब्स अनाउंस हो जाते हैं। और अगर पूछा जाए कि ये सब किसने शुरू किया था, तो जवाब बड़ा ही आसान है, ऑफ कोर्स मैन भाई, सलमान खान। लेकिन मुझे लगता है बॉलीवुड ने सलमान खान की लेगेसी का सिर्फ विजिबल हिस्सा अडॉप्ट किया, इनविजिबल हिस्सा तो छोड़ ही दिया। आज अहान पांडे को देखिए,
1: नंबर 40।

0: द टाइटल सॉन्ग ऑफ सैयारा विच इज अ नंबर 14 एंड सैयारा के लिए अहान म्यूजिशियन बने. अली अब्बास जफर की एक्शन फिल्म के लिए अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म किया, हार्ड वर्क किया और ये जरूरी भी है. लेकिन सलमान खान स्टार सिर्फ इसलिए नहीं बने क्योंकि वो शर्ट उतार सकते थे, वो स्टार बने थे क्योंकि स्क्रीन पर उनमें एक वॉर्म थी, एक चार्म था, एक इमोशनल ऑनेस्टी थी. बॉडी अटेंशन जरूर लाती थी लेकिन इमोशन रिपीट वैल्यू लाता है. शायद इसलिए सलमान के कुछ सबसे प्यारे परफॉर्मेंसेस वो हैं जहां लोगों ने उनके एब्स नहीं उनका दिल देखा, उनकी आंखें देखी. मेरा रीवाइंड ट्रैक ऑफ द वीक इज फ्रॉम हम दिल दे चुके सनम. दिस इज कविता कृष्णमूर्ति एंड कुमार सानू. दिस इज आंखों की गुस्ताखियां.
1: टॉप 20 रीवाइंड.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: विद्या बालन, आपने 40 से ज्यादा फिल्में कर ली, 2014 में पद्मश्री कमा लिया, इतने सारे इयर्स ऑफ अचीवमेंट के बाद डू यू रिमेम्बर द फर्स्ट सॉन्ग यू फिल्म्ड फॉर?
4: ऑफ कोर्स कस्तो मजा परिणीता से, और शिलीगुड़ी में शूट हुई थी इस गाने की और बहुत मजा आया था। इतने लोग थे और पीरियड फिल्म है, लोग स्कूटरों पे और मोटर बाइक्स पे गाड़ियों में आ रहे थे एंड वी कुडंट हैव दैट इन द शॉट। सो हम लोग ट्रेन पे थे और हम लोग ट्रेन एक तरफ लेके जाते, फिर पता चलता कि जब मॉनिटर देखते तो पता चलता कि ये गाड़ियाँ आ गई है, लोग आ गए हैं गाने में, तो फिर से हम लोग रिवर्स में आ जाते, फिर शूट होता। एंड इट्स माय फर्स्ट सॉन्ग, इट्स आल्सो माय फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम परिणीता।
3: ओह दैट्स अ टफ वन विद्या बालन, परिणीता का हर गाना इतना गोल्डन है, इट्स टफ टू चूज अ फेवरेट। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: हाय देयर व्हाट्स अप टेल मी।
1: सर कंप्यूटर में वायरस घुस गया है, क्या करूं?
2: ओ माय गॉड, आज ही डॉक्टर के पास लेके जा और वैक्सीन दिला।
3: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
2: Number 10.

जाइए सजना फ्रॉम धुरंधर बाय जैस्मिन सैंडलर्स। और जब भी मिर्ची टॉप 20 पर कोई नया गाना आता है, मेरा प्रोसेस बहुत सिंपल होता है। पहले ऑडियो, सिर्फ ऑडियो, आंखें बंद करके। अगर गाना वहां काम कर गया तो फिर वीडियो देखने का मन करता है, और यही मैंने किया विद अ सॉन्ग फ्रॉम वेलकम टू द जंगल जिसका नाम है ऊंचा लंबा कद फॉरएवर। और मुझे मानना पड़ेगा, विक्रम मॉन्ट्रोज ने इस रिक्रिएशन को एक इज्जत दी है। गाने में एनर्जी है, बीट एडिक्टिव है, और कम से कम ये अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वीडियो देखते ही एक और ख्याल आया यार, हम बॉलीवुड में अक्सर चेहरे याद रखते हैं लेकिन आवाजें भूल जाते हैं। और जो ओरिजिनल वाला ऊंचा लंबा कद है, उसकी बात जब होती है तो लोगों को कटरीना कैफ याद आती है, अक्षय कुमार याद आते हैं, लेकिन उस गाने के असली आर्किटेक्ट आनंद राज आनंद। और शुक्र है कि इस नए वर्जन में उनकी आवाज को रिटेन किया गया है, वही आनंद राज आनंद जिन्होंने हमें दिए कुछ आइकॉनिक गाने।

0: रोमांस भी, दर्द भी और डांस फ्लोर भी। कितने कंपोजर्स ये रेंज क्लेम कर सकते हैं? मोस्ट ऑफ देम वर चार्ट बस्टर्स। और हाँ, एक बात और है, दिशा पाटनी अपनी जगह एक स्टार है, लेकिन कुछ गाने सिर्फ गाने नहीं होते, वो किसी एक परफॉर्मर की याद के साथ परमानेंटली लॉक हो जाते हैं। और ऊंचा लंबा कद, वेल वो कटरीना कैफ के नाम पर रजिस्टर्ड है। नंबर 9 पर डेब्यू हो रहा है इस गाने का, ऊंचा लंबा कद, फॉर एवर फ्रॉम वेलकम टू द जंगल।
1: नंबर 9।

0: सुरेन के साथ only on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi.
2: हेलो
3: सुनील जी.
2: हाँ जी
3: सुनील जी, पेट्रोल पंप से बोल रहा हूँ. सर कंग्रेचुलेशन, आप लकी विनर हैं.
2: किस चीज के जी सर?
3: सर आपका 20 लीटर पेट्रोल निकला है बिल्कुल फ्री. मैं तो सोच रहा था बड़े खुश हो जाएंगे क्योंकि पेट्रोल के.
2: वेरी गुड यार.
3: तो सर ये आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको फिल कराना होगा, भरवाना होगा अपनी गाड़ी में.
2: ठीक है. अच्छा एक बात तो बताइए सर जी.
3: हाँ जी.
2: इसके क्या पैसे ऐसे देने पड़ेंगे कुछ?
3: नहीं सर, पैसे कोई नहीं, कोई पैसा नहीं.
2: कंडीशन वगैरह?
3: नहीं सर, कोई कंडीशन नहीं है. पुराने ग्राहक है आप, ऐसे कैसे कंडीशन रख लेंगे?
2: तो ठीक है, ग्राहक पुराने ग्राहक को आदमी थोड़ा अपना समझ के कहते हैं ना अपने को ज्यादा.
3: बस सर बिल्कुल फ्री है, पैसे आपको नहीं देने पड़ेंगे. एक छोटा सा काम करना पड़ेगा.
2: क्या?
3: पुराना लाइए नया ले जाइए.
2: क्या भैया पुराना क्या लाऊं भाई?
3: पुराना पेट्रोल लाओ नया ले जाओ सर, बस यही है. और वो भी आप ही का निकला.
2: क्या बात हुई, पुराना कहाँ से लाऊं?
3: सर पुराना जो आपने
2: पुराना हो तो जल के वो खत्म कर दिया हो
3: तो सर जो आपने पुराना यूज किया होगा वो तो लाना पड़ेगा ना आपको.
2: धुआं में कहाँ से इकट्ठा करूँ?
3: पहले तो आप बड़े दांत फाड़ रहे थे जब मैंने आपसे कहा 20 लीटर फ्री पेट्रोल है. वाह वाह जी वाह वाह, थैंक यू. अब मैं आपसे कह रहा हूँ
2: पेट्रोल मिल गया तो वो बड़ी अच्छी बात है.
3: अरे अरे तो ये क्या
2: पुराना कहाँ से लाऊं?
3: पुराना आपको लाना पड़ेगा. ये भी मैं पुराना भी वैसे हर वक्त रोते रहते हैं पेट्रोल के पैसे बढ़ गए बढ़ गए. हम फ्री दे रहे हैं तो ला के नहीं दे सकते पुराना. यार कमाल कर रहे हैं आप. सर जी मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. अगर आप पुराना ले भी आए तो भी आपको 20 लीटर पेट्रोल फ्री नहीं मिलेगा. हाँ मुर्गा खाने को जरूर मिल सकता. सर मजा आ गया आपसे बात करके. मतलब आपके गुस्से से डर गया मैं.
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ only on मिर्ची. It's hot.

यार कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ गाने नहीं गाती, वो हमारी जिंदगी के अलग अलग चैप्टर्स में साथ चलती रहती हैं। सुनिधि चौहान उनमें से एक है, अरिजीत सिंह भी उनमें से एक है। लेकिन कितनी इंटरेस्टिंग बात है, जब अरिजीत अपना पहला बॉलीवुड गाना गा रहा था तब तक सुनिधि एक पूरी जनरेशन का साउंड ट्रैक बन चुकी थी। मुझे आज भी मस्त का वो गाना याद है, वेयर आई हर्ड सुनिधि फॉर द फर्स्ट टाइम एंड माय माइंड वाज ब्लोन। रुकी रुकी थी जिंदगी, एक आवाज जो अलग थी, नई थी और बिल्कुल सुनिधि चौहान थी। फिर सालों बाद आए अरिजीत सिंह और धीरे धीरे वो आवाज बन गए, इसके बिना बॉलीवुड का रोमांस अधूरा लगने लगा। और जब ये दोनों एक ही गाने में मिलते हैं तो कुछ खास हो जाता है। और आज तुझको में आप उस जादू को महसूस कर रहे हैं, लेकिन मेरे लिए उनकी वोकल केमिस्ट्री का पीक आज भी ये गाना है।

0: सुनिए उस पल को। ना अरिजीत आगे निकलने की कोशिश करते हैं, ना सुनिधि, दोनों एक दूसरे को एलिवेट कर रहे हैं, और शायद इसी को म्यूजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। लेकिन अब मिर्ची टॉप 20 पर गाना नंबर 7, फिर वही आवाज, एक और एहसास। अरिजीत सिंह इज सोलो राइट नाउ, दिस इज गहरा हुआ फ्रॉम धुरंधर।
1: नंबर 7।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना एक 19 साल की लड़की कोमा से जागी और उसको लगा वो 3 बच्चों की माँ है और वो उनको ढूंढने लगी।
4: भाई इंसान कोमा में जाने के बाद अपनी मेमोरीज लूज करता है, ये तो नई मेमोरीज बना के आ गई। और ऊपर से एक और चीज, इसको अडल्टहुड से पहले पेरेंटहुड का स्वाद मिल गया।
5: मिर्ची इट्स हॉट।
6: जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
5: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
7: बार बार।
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
5: FM मिर्ची वन इट्स हॉट।
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: नंबर 5।

ये गाना खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होता, आप सोचते हो एक और बार सुनूंगा और फिर खुद को चौथी पांचवी बार प्ले करते हुए पकड़ लेते हो। और मुझे लगता है कि उसका एक बहुत बड़ा रीजन है इसका सिंगर राघव चैतन्य, क्योंकि कुछ सिंगर्स सुर में गाते हैं, कुछ सिंगर्स पर्सनालिटी में गाते हैं और राघव दूसरी कैटेगरी में आता है। सारी परतें हटा के सुनो, सिर्फ राघव की आवाज सुनो। पड़े अगर तेरे लिए

0: देखिए कैसे वॉइस को यूज कर रहा है ये लड़का, कभी ब्रीजी है, कभी फ्लर्टेशियस है, कभी ऑलमोस्ट कॉन्वर्सेशनल है, जैसे आपसे बात कर रहा हूं। गाना सिर्फ गा नहीं रहा, परफॉर्म कर रहा है, और शायद इसलिए प्रीतम दा बार बार उसकी तरफ लौट रहे हैं। इन एनिमल, इन मेट्रो, इन दिनों, इन कॉकटेल, इनफैक्ट राघव ने तो कई बार प्रीतम दा के गाने कवर भी किए अपने वीडियोस में।
1: इतनी

dude, it sounds so lovely. Pattern साफ नजर आ रहा है. मिर्ची डॉट 20 पर नंबर 3 पर है तू ही दिसदा फ्रॉम भूत बंगला, जो कोविड के बाद अक्षय कुमार की सबसे कामयाब फिल्म है. लेकिन हम राघव चैतन्य की इस ट्रेन से उतरने नहीं वाले, क्योंकि माशूका से पहले एक और गाना था जिसने सबको पूछने पर मजबूर कर दिया, यार ये सिंगर कौन है. माय पिक ऑफ द वीक इज फ्रॉम एक विलन रिटर्न्स. दिल इश्क तो है बट साथ में दर्द भी. पिक ऑफ द वीक.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: बादशाह आपने इतने गाने बनाए, इतने गाने कंपोज किए, सबसे पहला रैप आपने किस पे लिखा था?
4: जो मैथ्स के टीचर है उन पे रैप लिखा था। टीचर अच्छे नहीं थे क्योंकि एक जैसे टीचर होते हैं वैसे वो थे नहीं, तो मैंने उन पे रैप लिखा जो काफी मशहूर हो गया। दैट वाज माय फर्स्ट। दिक्कत तब हुई जब वो रैप उन्होंने ही पढ़ लिया, उसके बाद मेरा एजुकेशन पे से विश्वास ही उठ गया।
3: 2+2=4 बादशाह गिव अस मोर इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल
2: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood,

0: Hardy Sandhu and Kiran Bajwa have got a hit song to their credit. Wow! And अब जब है जवानी तो इश्क होना है थिएटर्स में एक हफ्ता बिता चुकी है तो मुझे लगता है कि फिल्म से ज्यादा इंटरेस्टिंग है इसका म्यूजिक क्योंकि उस एल्बम में दो गाने ऐसे हैं जो पहले से ही सुपर हिट्स बन चुके थे चुनरी चुनरी एंड देन इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग जो बीवी नंबर वन में था इश्क चांदी है इश्क सोना है सोना बाबा सोना सोना सोना वेल मुझे लगता है कि बॉलीवुड का म्यूजिक एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड से गुजर रहा है आज के कंपोजर्स को शायद लगता है कि लिसनर 3 सेकंड में शायद बोर हो जाएगा इसलिए हर दूसरे सेकंड कुछ ना कुछ हो रहा होता है गाने में नई बीट नया ड्रॉप नया इफेक्ट नई लेयर और फिर गाना खत्म होने के बाद आपको गाना याद ही नहीं रहता आप जरा ओरिजिनल वाला इश्क सोना है सुनिए
1: इश्क

0: यार क्या था इस गाने में? कुछ खास नहीं, और शायद वही इसकी खासियत है। मेलोडी को सांस लेने की जगह मिली, हुक को बैठने की जगह मिली। गाना आपका अटेंशन डिमांड नहीं कर रहा था, गाना आपको साथ ले जा रहा था। हर गाना लाउड होकर याद नहीं रहता, कुछ गाने चुप रहकर भी याद हो जाते हैं, लेकिन इस वक्त बॉलीवुड में एक गाना इतना लाउड है कि उसके सामने सब पीके पड़ रहे हैं। 17 हफ्ते एट द नंबर वन पोजीशन इज नो जोक एंड आई स्टिल फाइंड इट अनबिलीवेबल। और अब तो ओटीटी पर भी हुड़दंग मचा रखा है, मैडनेस नजर आ रही है। दिस इज शरारत बाय मधुवंती बागची, जैस्मिन सैंडलास फ्रॉम धुरंधर।
1: नंबर 1।

0: और बस इसी के साथ एक और एपिसोड, एक और काउंटडाउन और बॉलीवुड की एक और कहानी खत्म होती है। कुछ गाने इस हफ्ते चार्ट्स पर चढ़े, कुछ हिट कर गए और कुछ ने हमें याद दिलाया कि अच्छा म्यूजिक कभी पुराना नहीं होता। बट टिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, अपनी प्लेलिस्ट को जिंदा रखिएगा और अपनी यादों को भी। दिस इज सुरेन, ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन?
3: नहीं नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची

0: नारियों का जश्न था मिर्ची मोमी अवार्ड सीजन 5 के ऑडिशन राउंड में। मस्त मौला गौरव, आपको बता दें कि हमने मिर्ची मोमी अवार्ड सीजन 5 के लिए कल शुरुआत कर दी एंड कल ऑडिशन राउंड था जहां पर टॉप 15 लेडीज का नाम हम सबके पास आ चुका है। यस, प्रीति पुरोहित, दिव्या, नेहा, प्रियंका, प्रेमलता, जर्मीना, शालू, युक्ति, दीपा, उर्मिमाला, सरला, स्वाति, जेसी, शारुल एंड शिल्पा, ये वो नाम है जो अब टॉप 15 के हकदार बन चुके हैं। और मिर्ची मोमी अवार्ड्स की तैयारियों के लिए अब इनके पास अच्छा खासा समय है एंड आई एम वेरी श्योर जिस तरह का कल सेलिब्रेशन था वहां पर कंपटीशन था ही नहीं, हर लेडीज एक दूसरे को चीयर कर रही थी अबू सुद्रा मॉल में। एंड इतना ही कहूंगा, मिर्ची मोमी अवार्ड सीजन 5 इज फुल सेट नाउ टॉप 15 के साथ, अब हम फाइनल स्टेज की तरफ बढ़ेंगे। एंड ऐसे में मैं थैंक यू कहना चाहूंगा अपने उन सारे स्पॉन्सर्स को जो हमारे साथ जुड़े हैं। यस, आई पे जो कि मिर्ची मोमी अवार्ड्स के हमारे मेन स्पॉन्सर है, उसके अलावा हम रेस्टो पार्टनर चस्का को थैंक यू चाहते हैं, आईवेयर पार्टनर अल्फा हद ऑप्टिक्स एंड पिज्जा पार्टनर पापा जोन्स के अलावा हाइजीन पार्टनर हाइजीन इंटेलिजेंट प्रोडक्ट, इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे शुगर फ्री पार्टनर है ट्रॉपिकाना स्लिम, ज्वेलरी पार्टनर स्काई ज्वेलरी एंड वर्चुअल मीडिया पार्टनर रिहाब एंड इसके अलावा रिफ्रेशमेंट पार्टनर बलादना। हम सब साथ आए हैं वेन्यू पार्टनर अबू सुद्रा मॉल जहां पर यह ऑडिशन राउंड कंप्लीट हुआ एंड 15 लेडीज जो अब कॉम्पीट करेंगी मिर्ची मोमी अवार्ड सीजन 5 के उस क्राउन के लिए जिसका इंतजार वो पूरे पिछले एक सालों से करती आ रही है। सो ऑल दी बेस्ट टू टॉप 15 एंड द रिमेनिंग वंस, यार कोई बात नहीं, आप फिर भी हमारे ग्रैंड फिनाले का हिस्सा बनिएगा एज एन ऑडियंस। 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Murga, murga. Na virtua la murga.
1: Milci, murga. हेलो
2: हेलो नवनीत
1: yeah.
2: नवनीत मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ।
1: हाय नवेद,
2: क्या हाल चाल है?
1: बढ़िया है।
2: आपने मैसेज किया था अपने फादर का मुर्गा बनवाने के लिए।
1: हाँ हाँ हाँ, बन गया क्या?
2: यार तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुमने किस आदमी का नंबर दिया यार मुझे?
1: हाँ?
2: सोच समझ के नंबर देते हो नहीं देते हो? मैंने उनको फोन किया, वो मुझ पे भड़क रहे हैं यार शुरू में ही।
1: या मैंने तो अपने पापा का ही नंबर दिया।
2: पापा का नंबर, नाम क्या है यार पापा का?
1: मिस्टर दिलीप।
2: उनसे मेरी बात हुई है यार। मैंने माना, मजाक अपनी जगह है, मुर्गा बनाता हूँ, मैं भी हंसता हूँ, तुम्हें भी हंसाता हूँ, लेकिन यार ये थोड़ी उसका नाजायज फायदा उठा लो तुम।
1: मैं क्या कुछ गलत
2: बोल दिया यार? मैं मतलब यहाँ पे इसलिए आता हूँ कि मैं गालियाँ सुनूँ यार?
1: अब ऐसी बात क्या
2: ऐसी ऐसी बात क्या हो गई? अपने फादर से पूछो यार जाके। नहीं, अपने फादर से क्यों नहीं पूछते तुम जाके?
1: अब मैं क्या
2: पूछूं यार, तुम्हें पहले कहना चाहिए था मुझसे कि उन्हें गुस्सा आता है, वो ज्यादा भड़क जाते हैं यार।
1: अब गुस्सा तो सभी को आता है, ठीक से बात कर ले।
2: तुम मुझे बताओगे कि मैं कैसे बात कर लेता यार? नवनीत कमॉन यार, ऐसे नहीं होता है। मैंने माना कि चलो एक शो है, मुर्गा बनाते हैं उसमें, ये थोड़ी यार क्या तुम उठा के किसी का भी नंबर दे दो, किसी का भी मुर्गा बनवा लो।
1: अब कुछ यानी कुछ ज्यादा पापा ने बोल दिया तो
2: अरे तो
1: तरफ से मैं माफी मांग।
2: माफी मांगने से क्या होता है यार? ऐसी मैं माफिया मांग रहा था उनसे, मैंने माफी मांगी है 50, वो नहीं मान रहे। तुमने यार पता नहीं उठा के क्या समझ रखा है मुझे।
1: अब मैंने क्या, मैं आपने बोला कि मुर्गा बनाना, SMS कर दो, मैंने कर दिया।
2: तुम मुझे क्या पता था यार तुम अपने ऐसे फादर का नंबर दे दोगे यार?
1: ऐसे फादर क्या, मेरे तो एक ही फादर है, मैं ढूंढ के लाऊंगा।
2: अरे तो यार अब तुम उल्टे मुझसे बात कर रहे हो। एक तो पहले बाप की सुनिए, अब मैं बेटे की सुन लो। यार तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया क्या?
1: मेरा खराब नहीं हो गया, मुझे लग रहा है आप ही का थोड़ा हो गया।
2: इस वक्त तुम्हारा ही मुर्गा बन रहा है, मेरी तुम्हारी फादर से अभी तक बात भी नहीं। ऐसी अच्छे काम होते रहते हैं यहाँ पर। वैसे तुम्हारे फादर के वाकई में गुस्से वाले हैं।
1: नहीं, ऐसा तो नहीं है, कभी कभी तो गुस्सा कर ही देते।
2: चलो एक बार प्यार से मेरे साथ उनकी तरफ से बोल दो।
1: कुकड़ुकू
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: रबड़ी वाले अमृत से लेकर मैंगो शेक तक और कचरी से लेकर गुड़म्मा तक सब कुछ आ रहा है हमारे कदर में, क्योंकि लौट रहा है हमारे कतर का वो फेमस हम्बा एग्जीबिशन, ये जहां पर इंडियन मैंगो फेस्टिवल लग रहा है। यस, जून 18 से 10 दिनों तक ये मेला 27 जून तक लगा रहेगा, जहां पर इंडिया की जबरदस्त मैंगो वैरायटी आपको मिलेगी, चाहे वो दशहरी हो, लंगड़ा हो, अल्फोंसो हो, केसर, हापुस, नीलम, राजापुरी, मालगोवा, बादामी और इसके अलावा जितनी भी वैरायटी है सब एक छत के नीचे, यस, ईस्टर्न स्क्वायर ऑफ सुख वाकिफ में लगने जा रहा है हम्बा एग्जीबिशन। एंड इस बार ये और जबरदस्त होगा, क्योंकि शाम 4 बजे से देर रात 10 बजे तक यहां पर आपको मिलेंगे जूसेस, आइसक्रीम, स्वीट्स एंड बहुत सारी और ट्रेडिशनल डेलिकेसीज। लेकिन मैंगो से बना हर आइटम चखने के लिए हमें अपनी जबान को तैयार रखना है दोस्तों, तो इंडिया वाले आम को मिस ना करें आप इस गर्मी के सीजन, इसीलिए आ गया है हम्बा एग्जीबिशन। तैयार हो जाओ, जेब को भी बचा के रखो, क्योंकि जब वहां पहुंचोगे ना तो जवान जो है वो भाग भाग कर हर काउंटर पे जाएगी और आपको हर आम की डिश का चटकारा मारना ही पड़ेगा। बस मौला गौरव आपके साथ, मिर्ची साथ।
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक 19 साल की लड़की कोमा से जागी और उसको लगा वो 3 बच्चों की माँ है और वो उनको ढूंढने लगी।
3: भाई इंसान कोमा में जाने के बाद अपनी मेमोरीज लूज करता है, ये तो नई मेमोरीज बना के आ गई। और ऊपर से एक और चीज, इसको अडल्टहुड से पहले पेरेंटहुड का स्वाद मिल गया।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सब।

0: अनिरुद्ध रविचंद्र की आवाज में जिंदा बंदा आपके साथ नाम है लेकिन ये जिंदा बंदा सोचिए अगर कतर में एक प्रॉपर्टी ओन करे तो और कितने ज्यादा अरमान जिंदा हो जाएंगे हैं जी। वैसे हमारे और आपके लिए मौका आ गया है दोस्तों कि अब हम कतर में कुछ ऐसे एरियाज में प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं जो हमारे लिए बकायदा डेजिग्नेट किए गए हैं। यस, नॉन कतरीज को अब रियल स्टेट में ओन करने का मौका मिला है। आपको बता दें कैबिनेट रेजोल्यूशन नंबर 21 ऑफ 2026 जहां पर कुछ इलाकों में हमारे लिए बकायदा ओनरशिप का एक तरह से राइट्स तैयार किया गया है और ये ऑफिशियल गजट मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस द्वारा पारित भी हो गया है और आने वाले टाइम में हम और आप क्या पता कतर के कुछ इलाकों में अपने फ्लैट्स अपने घर अपने विला बना लें। यस, वेस्ट बे के लक्तफिया एरिया जोन 66 में पर्ल आइलैंड अलखो रिसोर्ट दाफना ओनाइजा लुसेल अलखरेज जबाल ट्वेलेब इसके अलावा सिमाइस्मा रिसोर्ट एंड बीच प्रोजेक्ट पर हम प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं और कतर में ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हमारे और आपके लिए भविष्य के कुछ अच्छे सिग्नल लेकर आई है। तो अगर आपकी आदत पड़ गई इतने सालों से कतर में काम करते थे अब आपको लगता है कि यहां अपनी एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए तो इन डेजिग्नेटेड एरियाज में नॉन कतरीज कैन एक्वायर देयर रियल स्टेट प्रॉपर्टीज एंड आने वाले टाइम में आप कतर के एक प्रॉपर्टी ओनर हो जाएंगे। तो सोचिए बल्ले बल्ले ऐसे ही हो जाएगी क्योंकि कतर इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड और ऐसे में मौका है हमारे पास पैसे बचा के एक प्रॉपर्टी फटाफट से खरीद लें। इस उम्मीद में कि आपका दिल बड़ा है आप मेरे साथ पार्टनरशिप में भी खरीद सकते हैं लेकिन मेरे पैसे आपको देने होंगे मैं समय के साथ लौटाऊंगा। 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: हवाओं का जोर और मौसम अभी भी गर्मी की ओर।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट
0: 89.6 बिरजीवन पर मैं हूँ आरजे मस्मोला गौरव, और जबरदस्त हवाओं के साथ आज दिन का मैक्सिमम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा, वहीं दिन का मिनिमम 31 डिग्री सेल्सियस के अराउंड रहेगा। बड़ी बात यह है कि इस दौरान हवाएं 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं, और अगर आपको थोड़ा भी एलर्जी है डस्ट से तो प्लीज बाहर निकलते टाइम मास्क जरूर लीजिए। एंड इन तेज हवाओं के बीच ये याद रखिए, पानी पीना कम नहीं करना है। यस, कीप ड्रिंकिंग वाटर, कीप हाइड्रेटिंग योर बॉडी एंड कीप लिसनिंग मिर्ची, क्योंकि एंटरटेनमेंट की हवाएं तो सिर्फ यहीं चल रही है। मिर्ची थॉट।
2: Weather check brought to you by RSL Group of Company. अब पाओ कतर में delivery riders और driver की job. For bright future call now 3100 0813.

0: हेल्पलाइन?
1: बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन का नंबर है।
0: मेरे बॉस की सारी गलती की ओनरशिप हर बार मुझे ही लेनी पड़ती है, क्या करूं?
1: अरे तो बॉस को बोल दो कि ये कंपनी भी उनकी एक गलती है।
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का हंस।

0: भाई और बहनों, आपके 5, 10, 50 के नोट आज से अरे नए मेकओवर के साथ आ रहे हैं। ये सब आपको बता दें, कतर सेंट्रल बैंक ने अनाउंस किए हैं 5th सीरीज ऑफ बैंक नोट में कुछ चेंजेस जो अब आपको नजर आएंगे।
1: #974 द मोस्ट ट्रेंडिंग लोकल न्यूज ऑफ द डे।
0: यस, इन नोटों को एक छोटा सा मेकओवर, नया लुक दिया गया है। इसमें अब आपको नया स्टेट एम्बलम दिखेगा, अरबिक न्यूमरल्स दिखने वाले हैं और न्यू इशू डेट जो है वो भी आपको बिल्कुल दिखाई देगी। लुक थोड़ा नया और स्टाइलिश हुआ है, इसलिए घबराइएगा मत कि अगर आपको कोई नया वाला नोट दे दे तो आप इस चक्कर में पड़ जाए, मां यार ये तो कतर की करेंसी नहीं, कुछ और दे रहा है, नकली नोट कौन दे रहा है। असल में ये न्यू लुक लॉन्च होने जा रहा है और अगर अब आपके कतर में आपके हाथ में नए नोट पाते हो ना तो बिल्कुल घबराना नहीं है, ये करेंसी बिल्कुल लीगल होगी। एंड 5, 10, 50 के ये 5th सीरीज के नए बैंक नोट अब जल्द ही मार्केट में आपके हाथों में आने वाले हैं, तैयारी कर लीजिए। एंड आने वाले टाइम में ये चेंजेस और भी अदर करेंसी डिनोमिनेशन पर लगेगी, यानी कि जो बड़े नोट्स हैं 200-500 के उस पर भी ये आने वाला है। तैयार रहिए, अब ये नए लुक वाले नए करारे नोट वैसे भी हमें अच्छी फीलिंग देंगे। काश जल्दी से ये बैंक नोट मिले और हम अपने दोस्तों में भौकाल बनाएं, मेरे पास सबसे पहले आ गया था, यही तो करते हैं बचपन से आज तक। 89.6 मिर्ची वाली थॉट।

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Yabana. Burka, burka. La virtual burka.
2: Mirchi, burka.
3: Hello.
4: Is that Sanjeev?
3: Yeah, I'm speaking.
4: Hi Sanjeev, I am Atul calling from...
3: Okay.
4: संजीव आपने 3 राउंड्स क्लियर कर लिए हैं कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के लिए. ये आपका फाइनल राउंड है जिसमें हम कैंडिडेट के पेशेंस चेक करते हैं, उसमें कितने पेशेंस है, कितना इत्मीनान है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि इस तरह की जॉब है. तो आपको लगता है कि आप में पेशेंस हैं सारे?
3: पेशेंस तो है, मैंने जो अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया हुआ उसमें भी मेंशन है ये चीज.
4: ओके.
3: कई तरह के कस्टमर्स होते हैं, उनको सेटिस्फाइड करने हमारा काम है.
4: कितने साल जॉब करी है आपने इससे पहले?
3: मैंने 2 साल काम किया एज अ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव.
5: चुप कर. 2 साल काम किया एज अ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव.
3: सॉरी सर.
4: कैरी ऑन रखिए, आप बताइए मुझे अपने बारे में. ये मैं आपके पेशेंस चेक कर रहा हूँ. हाँ बताइए. भड़कता हुआ कस्टमर आता है, कॉल करता है, तो उसको किस तरह हैंडल करते थे?
3: कस्टमर्स हैं, जब मैंने आपको बताया ना, मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है. इस टाइप के कई कस्टमर्स आते थे जिनको हम बहुत ही कूलली, बहुत पेशेंट के साथ उनको सेटिस्फाइड.
5: बकवास बनकर कूलली तू करता था, कूलली दांत अंदर कर.
3: हम करते थे सेटिस्फाइड कर.
5: बकवास बनकर
3: जैसे आप बोल रहे हो ना, ऐसी ज्यादा गुस्सा दिखाते हैं वो लोग.
4: अच्छा, इससे ज्यादा दिखाते. अच्छा मुझे ये बताइए कि मान लीजिए कोई कस्टमर ऐसा है जो कि मान ही नहीं रहा आपकी बात और वो डांटे जा रहा है, तो आप क्या करेंगे उसके लिए?
3: सर, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पहले हमारी बात सुने.
5: शराब
3: बोलते हैं
5: शराब. अब टेस्ट तुम्हारा खत्म हो चुका, कोई पेशेंस चेक नहीं कर रहा. अब ये असलियत कह रहा हूँ, तुम्हें बोलने की तमीज है नहीं यार.
3: अभी तक
5: पेशेंस चेक कर रहे, लेकिन वाकई में तुझे तमीज ही नहीं है. मोबाइल के कस्टमर केयर में जॉब करने के लिए कह रहा है करूंगा. मोबाइल पकड़ा कभी हाथ में?
3: बोल के
5: जॉब करूंगा, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बनूंगा. कस्टमर इंसान तो बन जा पहले यार, इंसान बना नहीं है.
3: खुद को देखा आपने कभी?
4: संजीव कोई इंटरव्यू की कॉल नहीं है, मुझे पता चला तुमने 3 राउंड दे चुके हो. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा मुर्गा बना रहा था. लेकिन तुम पूरी तरह क्वालिफाई कर गए हो ये राउंड. तुम्हें जॉब मैं दूंगा. okay. तुम मेरे शो में आके बैठो, मुझ पे भी कभी कभी डांट पड़ती है.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची.

0: पा मुलायजा होशियार, लंगड़ा तोता परी हाफूस रत्नागिरी सारे आम कतर में पधार रहे हैं। अरे बात करें हम सूख वाकिफ में लगने वाले तीसरे हम्बा फेस्टिवल की। यस, द थर्ड एडिशन ऑफ इंडियन मैंगो फेस्टिवल इज ऑल सेट और ये ईस्टर्न स्क्वायर ऑफ सूख वाकिफ में 18 जून से लग जाएगा और 10 दिनों तक रोज शाम 4 से 10 हम दुनिया भर की वैरायटी खरीदते रहेंगे और इंडिया वाले मैंगो का स्वाद यहाँ कतर में लेते रहेंगे। तो भाई जेब में पैसे बचा लो क्योंकि ये फलों का आम है जो राजा, समझे? इसके लिए थोड़ा सा पैसा लगता है ज्यादा, पर एक बार इसका स्वाद आपके मुंह के अंदर गया तो विश्वास कीजिए प्राइसलेस टेस्ट है ये। मतलब दुनिया में आप किसी भी फल से वो सुख नहीं पाते जो आम से पाते हैं। अब चाहे अमरस बना के पीजिए, मैंगो शेक बना के पीजिए या फिर इसके अलावा आप आम की कोई भी डिश बना लीजिए, आपको मजा ही आने वाला है। इस उम्मीद में कि हम और आप मुलाकात करेंगे, कहीं तो कहीं टकराएंगे और इस हम्बा फेस्टिवल का हिस्सा बनेंगे जो कि इंडियन एम्बेसी लेकर आ रही है। मस्मोलो गौरव आपके साथ 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर। जब

0: में शी स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक 19 साल की लड़की कोमा से जागी और उसको लगा वो 3 बच्चों की माँ है और वो उनको ढूंढने लगी।
3: भाई इंसान कोमा में जाने के बाद अपनी मेमोरीज लूज करता है, ये तो नई मेमोरीज बना के आ गई। और ऊपर से एक और चीज, इसको अडल्टहुड से पहले पेरेंटहुड का स्वाद मिल गया।
4: मिर्ची इट्स हॉट, मिष्टी दोई, संगीत और मीठी बोली के शहर में अब खून की होली शुरू हो चुकी है।
5: यहाँ हर मुस्कुराहट के पीछे एक राज है और क्राइम का रंग अब ब्लैक हो चुका है। मैं आ रही हूँ इनके खेल खत्म करने।
4: संगीत की धुन अब चीखों में बदलेगी। Officer Brown is back to kill the devil. The dark side of Kolkata awaits. Brown, streaming from 12th June, only on Z5.
6: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
7: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
8: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी।
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: कतर वर्ल्ड कप का वो मैस्कॉट लाइव याद है ना? अरे भूल भी कैसे सकते हैं उस खूबसूरत लाइव को जो गत रहेगा में गजब लगता था। फिलहाल अब लाइव को मिलेंगे और नए साथी, क्योंकि 2026 वर्ल्ड कप के जो फीफा वर्ल्ड कप मैस्कॉट है उनके बारे में मैं आपको बता दूं, मेपल द मूज, जायू द जगुआर एंड क्लच द बॉल ईगल। वेल, तीनों ही देशों ने अपने अलग अलग एक तरह से ये मैस्कॉट बनाए हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं होस्ट कंट्री कनाडा, मैक्सिको एंड यूएसए को। वेल, इतना ही कहना चाहता हूं कि हमें जहां सिर्फ एक लाइव मिला था, इस बार तीन होस्ट के चलते तीन नए मैस्कॉट जुड़ गए। वेल, लाइव से पहले ये नाम था जाबी वाका का, उसके पहले जब ब्राजील में वर्ल्ड कप हुआ था तो था फुलसो, एंड उसके पहले जाकुमी 2010 में साउथ अफ्रीका में जब वर्ल्ड कप हुआ। कुल मिलाकर इतना ही कहना चाहता हूं कि वर्ल्ड कप में हर बार एक मैस्कॉट होता है, लेकिन इस बार पहली बार तीन तीन मैस्कॉट मिले हैं, इसलिए लाइव के बाद से साथियों का सिलसिला बढ़ गया है और अब लाइव के तीन नए दोस्त भी हो जाएंगे। वेल, लाइव जो हमें वेलकम करता था और मैच के पहले एक रूम के अंदर जाकर हम सब बैठकर लाइव के बहुत सारे जबरदस्त एक्शन सीन्स देखते थे। कुल मिलाकर इतना ही कहना चाहता हूं, समय बीत जाता है लेकिन यादें हमेशा रह जाती, और लाइव वर्ल्ड कप 2022 की एक ऐसी खूबसूरत याद है जो खतर ने हमें दी और जिंदगी भर याद रहेगी। 89.6 मिर्ची वन पर मस्मोला गौरव आपके साथ मिर्ची थॉट।
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: जब भी ताल फिल्म देखती हूँ ऐश्वर्या राय बच्चन के पीछे एक क्यूट लड़का दिखता है और वो कौन है? शाहिद कपूर। बट शाहिद, इफ आई हैड टू आस्क यू अबाउट योर फिल्म जर्नी एंड योर फर्स्ट सॉन्ग, कौन सा था वो?
3: मेरा पहला गाना था, इट वॉज इन इश्क विश्क ऑब्वियसली। द फर्स्ट सॉन्ग वॉज दिस सॉन्ग वी डिड इन अ कैंटीन कॉल्ड लव लव लव करो, वेयर ऑल द गाइज आर ट्राइंग टू इम्प्रेस द वुमेन।
2: शाहिद, व्हाट अ लवली डाइव इन नॉस्टैल्जिया। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा
1: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: गुलाबो जरा एसी चला दो,
1: मस्त मौला गौरव।
0: इस मौसम में बिना एसी के बड़ा ही मुश्किल है जीवन, और यहाँ पर तो अब हमारा बिना एसी के लगता नहीं मन। ऐसे में देवी और सज्जन, आप अपनी गाड़ी का ध्यान जरूर दें, क्योंकि गाड़ी का एसी सबसे इम्पोर्टेंट है। आज हम इस दुख भरी कहानी से ही सुबह सुबह ऑफिस आए, हमारी गाड़ी का एसी अचानक से धोखा दे गया। हम घर से लौटे, हमने सोचा गाड़ी फर्स्ट क्लास चलेगी, लेकिन एसी का कंप्रेसर धोखा दे के हमारे अंदर का बढ़ा दिया ब्लड प्रेशर। लेकिन आप अपनी गाड़ी का जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि ऐसे मौसम में अगर गाड़ी ने आपका साथ छोड़ा ना, तो जितना दर्द एक्स ने दिया उससे ज्यादा आपकी गाड़ी 10 मिनट में दे जाएगी। फिलहाल इसी उम्मीद के साथ कि गाड़ी के साथ साथ आप अपनी बॉडी का बहुत ध्यान देंगे और जमकर पानी पिएंगे और जितना हो सके खुले में कम घूमेंगे, एंड काम पड़ने पर ही दोपहर में धूप में कहीं बाहर निकलेंगे। मस्त मौला गौरव लेगा अलविदा, लौटेगा कल शाम एक बार फिर से शाम शानदार की शानदार महफिल में आपके लिए ढेर सारी बातें लेकर। तब तक ले हबीबी, मस्त सलामा मिर्ची, इट्स हॉट हरारा कती।
2: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 5। सुनते रहिए 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।
2: गाना इंडी टॉप 10
3: कनिका के साथ On Mirchi.
4: Okay then, Mirchi sun rahe hain aap. Bandi ka naam hai RJ Kanaka and it's time for the hottest pop songs of the week. Hello and welcome. This is the Gaana Indie Top 10, only show on Mirchi jahan hafte ke top 10 hottest pop gaano ka countdown hum aapke liye lekar aate hain. Hafte ke top 10 hottest pop gaano mein ek nayi entry hai, ek re-entry hai. Hamara 90s 2000s ka indie pop classic hai. Some special Gaana spotlights, all this and more. To seedha shuruaat karte hain hafte ke countdown ki with Gaana number 10. Gaane ka naam hai Udi Udi by Anish Sarkar. Shruday, it's a nayi naveli entry. Udi Udi ne debut kiya hai on Gaana number 10. उसके बाद मिट्टर और स्वरा वर्मा की आवाज, मिट्टर और की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स, गाने का नाम है शीशा। 11 हफ्तों से ये गाना इस काउंटडाउन पर बरकरार है। पिछले हफ्ते से एक्चुअली 3 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके शीशा इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। ये दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।
2: नंबर 10।

0: स्वरा वर्मा मिट्टर और की आवाज, मिट्टर और की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स, गाने का नाम है शीशा, दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है, इट्स अ कोक स्टूडियो सॉन्ग, दैट मींस फ्यूजन एंड कोलैबोरेशन।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मुझे फॉलो करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika। अभी करो फॉलो, करना बिल्कुल फ्री है। कोई गाना सजेस्ट करना हो, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। अक्सर जब हम कोक स्टूडियो के बारे में बात करते हैं तो उसके ओवरऑल म्यूजिक इम्पैक्ट के बारे में बात करते हैं। हर किसी का अपना फेवरेट कोक स्टूडियो गाना है। कोई मदारी बोलेगा,
2: मदारी मदारी मदारी मदारी मेरा तू, मैं जम्मूरा रे जम्मूरा।
0: तो किसी के लिए वो होगा चौधरी,
3: मर बड़े मजाकी दो कणी ए चंदा मैं थारी चांदनी मन दामन में पा ही खुशी रे जुम जुम जुम।
0: या फिर द गुजराती एंथम खलासी,
4: ए वो हारे से खलासी मने कई दो
0: ट्रूली थिंक दैट कोक स्टूडियो का इम्पैक्ट किसी एक गाने तक लिमिटेड नहीं है। दिस इज वन प्लेटफॉर्म जो हमें याद दिलाता है दैट इंडिया का म्यूजिक सीन कितना बड़ा है। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ 100 किलोमीटर के बाद लैंग्वेज बदल जाती है, फोक ट्रेडिशन बदल जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स बदल जाते हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम म्यूजिक में हमेशा सबकी जगह नहीं बनी, और वो कोक स्टूडियो ने किया। उसने फोक आर्टिस्ट को सिर्फ फीचर नहीं किया, उनको सेंटर स्टेज दिया है। चौधरी में राजस्थान की मिट्टी है, मदारी में फोक और रॉक एक साथ है। That's what we call the perfect fusion. But ये perfect fusion जो है सिर्फ sounds and genres तक limited नहीं है, right? यहाँ पे generations मिल रही हैं, music के different regions मिलते हैं, independent artists और folk musicians एक साथ मिलते हैं, जो गाने वो produce करते हैं उसमें traditional roots होते हैं। दूसरी तरफ contemporary production, uber cool beats कि ऐसा लगता है ये गाना कहीं सुना भी है और नया भी है। And countdown का जो अगले वाला गाना है वो exactly ऐसी ही collaboration है। एक तरफ आदित्य रिखारी जैसे pop star, दूसरी तरफ कुटले खान जैसे contemporary राजस्थानी आर्टिस्ट, रैविटोर का म्यूजिक, ऊबर कूल प्रोडक्शन, गाने का नाम है ए अजनबी। अपने रेडियो सेट्स के वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। 8 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग ए अजनबी इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 8। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।
1: नंबर 8।

0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सका बना मुर्गा मुर्गा नफीस वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: से बोल रहे हैं?
3: हाँ जी।
4: मुझे कुछ ऑर्डर करना था, आप लिख लेंगे प्लीज?
3: या
4: और रात के खाने के लिए लिख लीजिए प्लीज। ढाई किलो अरहर दाल, 3 किलो चना दाल, 3.5 किलो चना कबूली, 4 किलो चना डॉलर प्रीमियम, 1 बेसन। हाँ,
3: एक्चुअली में 2.5 किलो वगैरह हमारे यहाँ नहीं होता, 2-2 किलो में, 1-1 किलो में पैकिंग होती है, तो 2 केजी होती है।
4: अब आपको ये मैं क्या, वो 2.5 किलो ही खाते हैं, मैं क्या करूँ?
3: ओह माय गॉड,
4: मेरे हस्बैंड हैं डाइट उनकी, आपको क्या प्रॉब्लम है?
3: नहीं मैम प्रॉब्लम।
4: 4 किलो चना दाल, 4 किलो चना कबूली,
3: चना दाल, चना कबूली, एरोप्लेन भेजूं?
4: एरोप्लेन भेजिए, हमें जाना ना हनीमून पे।
3: सॉरी मैम, मैं ये बोल रहा हूँ 5 केजी एरोप्लेन राइट मैम, सॉरी।
4: एक सेकेंड, कभी फोन आ रहा है। स्वीट हार्ट आई लव यू, ऑर्डर दे रही हूँ। तुम आओ तो सही ना। No, I will be waiting for you, my sweetheart, my Janu.
3: Hello.
4: One second, मेरे हस्बैंड से बात चल रही है, one second. कब आओगे रात में? अच्छा सुनो, मेरे लिए रात में वो लेके आना ना, वही वही कुछ पूछे. ओके स्वीटहार्ट बाय। हाँ लिखिए, 3 प्लेट गोलगप्पे।
3: गोलगप्पे नहीं होते हमारे,
4: चकोर दे दीजिए। गोलगप्पे नहीं है, चकोर वाले दे दीजिए।
3: है नहीं मैम हमारे यहाँ,
4: लंबे वाले
3: नहीं है वो।
4: अच्छा लास्ट फाइनली, मैं और मेरे हस्बैंड जो बहुत शौक से खाते हैं,
3: क्या खाते हैं
4: मैम? मुर्गा
3: मैम, वो भी नहीं है।
4: आपको ये नहीं मालूम दिल्ली में सबसे अच्छा मुर्गा कहाँ बनता है?
3: मैम ये हमें नहीं
4: पता। हमें मालूम है, मैं बताऊँ आपको?
3: हाँ जी मैम बताइए।
5: रेडियो मिर्ची पर, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं छोटा सा मजाक कर रहा था आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया भाई साहब हमने।
3: आपकी आवाज में काफी
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
7: एकदम सही सुना तुमने, किम्स हेल्थ पर मिल रहा है फ्री डेंटल कंसल्टेशन, कोई पेमेंट नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं, बस पहले अपने डेंटल इश्यूज पहचानो, ट्रीटमेंट डिसाइड बाद में करो।
8: लिमिटेड ऑफर वैलिड फॉर जनरल एंड स्पेशलाइज्ड बोथ, बुक करो अपना फ्री डेंटल चेकअप सिर्फ किम्स हेल्थ पर।

0: हिमेश रेशमिया की आवाज, उन्हीं की कंपोजिशन, रजत नागपाल, राणा सोतल का गाना, गाने का नाम है शराब। पिछले हफ्ते से दो पोजीशन नीचे ड्रॉप हुआ है, तीन हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। शराब वॉज दिस वीक ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello, hello, स्वागत है आपका। This is the Gaana Indie Top 10। बंदी का नाम है RJ Kanika। Connect with me Instagram पर जाओ, मेरा handle is @RJKanika। कोई गाना शेयर करना हो, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। We were talking about Coke Studio भारत। कैसे? Coke Studio एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो contemporary production, folk artist, traditional roots को एक fusion की तरह प्रेजेंट करता है। हर किसी का अपना फेवरेट Coke Studio गाना है, but today we want to give spotlight to पहली बार ये गाना सुन के एकदम पावरफुल फ्यूजन ट्रैक लगता है, राइट? विशाल ददलानी की रॉ एनर्जी, सोनू कक्कड़ के बहुत इंप्रेसिव वोकल्स हैं इस गाने में, क्लिंटन सेरेयो की अरेंजमेंट, फोक रॉक सूफी इन्फ्लुएंसेस हैं, विच इज ऑल ग्रेट, राइट? बट इस गाने की जो असली ब्यूटी है, जो असली पावर है, उस गाने के मीनिंग में है। जो मेन लाइन है इस गाने की, इट सेज मदारी मेरा तू मैं जमूरा तेरा। मदारी मतलब वो स्ट्रीट परफॉर्मर जो खेल दिखाता है, जमूरा उसका साथी जो उसके इशारों पर चलता है, और ये जिंदगी एक सर्कस ही तो है जहां हम बस नाच रहे हैं। ये लिरिक्स मनोज यादव ने लिखे हैं, इट्स अ स्पिरिचुअल मेटाफर। इंसान जमूरा है और जिंदगी इश्क या शायद ऊपर वाला मदारी। हमको लगता है कि हम कंट्रोल में है, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब किसी ना किसी इनविजिबल फोर्स के साथ डांस कर रहे होते हैं, ऐसा मनोज यादव कह रहे हैं इस गाने के थ्रू। विद द कॉम्बिनेशन, द पावर, द एनर्जी, द वोकल्स, इट्स टॉप नॉच, 10/10 एक्सपीरियंस। इस गाने को आप सिर्फ सुनते नहीं है, पता नहीं, मेरे को लगता है ये गाना ऐसे लंग्स में उतर जाता है, बिकॉज इतनी एनर्जी दे जाता है। अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। इतने सालों बाद भी अगर आप म्यूजिक लवर से उनका फेवरेट कोक स्टूडियो इंडिया ट्रैक पूछते हो, मदारी का नाम ऑलमोस्ट हर कोई बोलता है। विशाल ददलानी, सोनू कक्कड़ की आवाज, क्लिंटन सेरेयो की कॉम्पोजिशन, मनोज यादव के लिरिक्स, दिस इज मदारी, अ कोक स्टूडियो थ्रोबैक, प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

0: Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। तूने सुना एक 19 साल की लड़की कोमा से जागी और उसको लगा वो 3 बच्चों की माँ है और वो उनको ढूंढने लगी।
4: भाई इंसान कोमा में जाने के बाद अपनी मेमोरीज लूज करता है, ये तो नई मेमोरीज बना के आ गई। और ऊपर से एक और चीज, इसको अडल्टहुड से पहले पेरेंटहुड का स्वाद मिल गया।
0: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: अर्ज किया है
6: इरशाद, इरशाद

0: आईपी पेमेंट्स का वाह तरीका. विद आईपी सेंड मनी स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट QAR 5 एंड यस विद द बेस्ट FX रेट्स. सिंपल, सीधा, नो टेंशन. चेक द आईपी ऐप टुडे फॉर आवर 5, 10, 15, 20 ऑफर वैलिड टिल July 31st. आईपी, स्मॉलर फीस, बिगर स्माइल्स. TNC अप्लाई. मिष्टी दोई, संगीत और मीठी बोली के शहर में अब खून की होली शुरू हो चुकी है.
1: यहाँ हर मुस्कुराहट के पीछे एक राज है और क्राइम का रंग अब ब्लैक हो चुका है. मैं आ रही हूँ इनके खेल खत्म करने.
0: संगीत की धुन अब चीखों में बदलेगी. Officer Brown is back to kill the devil. The dark side of Kolkata awaits. Brown, streaming from 12th June, only on Z5.
2: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा, जा.
3: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल,
4: क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने.
3: हिट गाने.
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन.
5: 89.6 FM, मिर्ची वन. It's hot.
6: इंडी टॉप 10
7: कनिका के साथ ऑन मिर्ची
8: नंबर 4.

0: अनूप जैन की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, इट्स अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग, गाने का नाम है अर्ज किया है। 20 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से 2 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके अर्ज किया है इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 4। आई नो दैट हम सबके कंफर्ट सॉन्ग होते हैं, पर हर वो गाना जो हमें अच्छा लगा हमने कभी ना कभी तो पहली बार सुना था ना। इट्स टाइम टू पुट स्पॉटलाइट ऑन अ सॉन्ग लाइक दैट।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello and welcome. This is the Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. This show is all about the hottest pop music of the week. Instagram par jao, mere saath connect karo. Mera handle is @RJKanika. Koi gaana suggest karna ho, koi artist recommend karna ho, bindaas aake hit me up. Har artist, har insaan, main, aap, kisi na kisi dream ko chase kar rahe hain. और हम उसकी जर्नी में हैं अभी। एंड ऑफन जब हम इस रास्ते पर चल रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि ना तो हम वापस जा सकते हैं, ना अभी तक वहां तक पहुंचे हैं जहां जाना था। एक तरह से हम सब एक वर्क इन प्रोग्रेस हैं। आज का गाना स्पॉटलाइट एक ऐसा गाना है जो इसी फीलिंग को हाईलाइट करता है। गाने का नाम है लॉन्ग वे फ्रॉम होम।

0: गाने में तीन आर्टिस्ट हैं, एमसी स्क्वायर, राधिका भिंडे एंड विकेट सनी। एमसी स्क्वायर की जर्नी खुद इस गाने की थीम से कनेक्ट करती है। हरियाणा के पलवल से बिलोंग करते हैं वो, उन्होंने हरियाणवी हिप हॉप को नेशनल कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बना दिया। कहानी वो बता रहे हैं लेकिन लग रहा है हमारे बारे में। यू नो वो फीलिंग जब आपका सपना भी पूरा नहीं हुआ है, वो फीलिंग जब आप इतना आगे आ चुके हो कि वापस जाना ऑप्शन नहीं लगता, लेकिन इतना आगे भी नहीं आए हो कि अभी सेलिब्रेट कर सको। कोई अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर में सक्सेस ढूंढ रहा है, कोई अपने शहर में ही बेटर लाइफ ढूंढ रहा है। ऑल ऑफ अस आर चेजिंग दैट ड्रीम एंड सम ऑफ अस आर लॉन्ग वे फ्रॉम होम एंड दिस सॉन्ग एग्जैक्टली टॉक्स अबाउट दैट। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, बी ओपन टू इट, लिरिक्स को ध्यान से सुनना। एमसी स्क्वायर, राधिका भिडे, विकेट सनी का गाना दिस इज लॉन्ग वे फ्रॉम होम ऑन आवर गाना स्पॉटलाइट ऑफ द वीक। बंदी का नाम है आरजे कनिका, एंजॉय।
1: किसी के पीछे नहीं चलना था तो अपने ही रास्ते बना लिए, सस्ती ये दुनिया में आंखों ने ख्वाब मेरी थोड़े महंगे सजा लिए, आंखों पे चश्मे चढ़ा लिए कि सबको दिखे ये चेहरा हंसता हुआ, रुकी नहीं सांसें तो चल पड़ा फिर और कंधों पे बस्ते उठा लिए। दुनिया घुमा रही है मैं भी कमाल हूँ, देखो ना घूमते जा रहा हूँ कि टूटे ना हिम्मत, इसलिए तस्वीर को माँ की मैं चूमते जा रहा हूँ। मिली ना मंजिल तो चल पड़ा मंदिर को, सोचा भगवान मिलेंगे जो पहले से अंदर है मुझ में बसा हुआ, मैं उसको ही ढूंढते जा रहा हूँ। है घर का वो छोटा जो कंधों पे जिम्मेदारी बड़ी लेके चला है, जब बैठा वो छाँव में उतारे जूते तब जाना वो कितना चला है। वो तो बस जानता ये कि करो भला तो बस होता भला, इतिहास गवाह है जो बांट के खाता उसे ऊपर वाले से कम ही मिला है। घर वाले याद भी आते हैं, घर लौटो ये बाप नहीं चाहते हैं, जब पेट हो भूखा तो बिस्तर पे नींद तो आती पर ख्वाब नहीं आते हैं। चेहरे पे धूल लगी जिनके आईने घर के वो साफ दिखाते हैं, पेट वो भरते हैं भूख से ज्यादा जो अक्सर ही मांग के खाते हैं। टूटा है दिल, टूटा हूँ मैं, पर फिर भी सब रोज संभाला है, कुछ ना कुछ कम ही पड़ा है जब से जिंदगी में होश संभाला है। लिखी है ऊपर वाले ने जिंदगी है या मौत की सजा, मौत ही होगी शायद क्योंकि कलम को अपनी वो तोड़ने वाला है।

हार्ड हिटिंग लिरिक्स. गाने का नाम है लॉन्ग वे फ्रॉम होम बाय एमसी स्क्वायर, राधिका बिडे, विकेट सनी. आई लव दिस अबाउट इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट एंड उनके म्यूजिक का सीन, दैट वो ना इन बिटवीन वाली फीलिंग्स को भी हाईलाइट करते हैं. हमेशा अपने गानों में कोई आंसर देने की कोशिश नहीं करते, कभी कभी क्वेश्चन को चेस कर रहे होते हैं एंड हम सब उस फीलिंग में अटके होते हैं. गाने का नाम था लॉन्ग वे फ्रॉम होम, याद कर लीजिए, अपने गाना ऐप पे एड कर लीजिए. नाउ बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की बारी. इट्स अ री एंट्री. संजू राठौर, द मैन यू आर, द लेजेंड, उनका एमसी स्क्वायर, राधिका बिडे, विकेट सनी. आई लव दिस अबाउट इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट एंड उनके म्यूजिक का सीन, दैट वो ना इन बिटवीन वाली फीलिंग्स को भी हाईलाइट करते हैं. हमेशा अपने गानों में कोई आंसर देने की कोशिश नहीं करते, कभी कभी क्वेश्चन को चेस कर रहे होते हैं एंड हम सब उस फीलिंग में अटके होते हैं. गाने का नाम था लॉन्ग वे फ्रॉम होम, याद कर लीजिए, अपने गाना ऐप पे एड कर लीजिए. नाउ बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की बारी.

0: a little loving good. Let me take a heart in another world. Give it to me now, give it to me now. Let me dig, let me dig that body.
1: I swear ये गाना सुन के स्कूल की छुट्टियां याद आती हैं. वो टाइम याद आ जाता है जब हम गाने सुनते भी थे, देखते भी थे एंड कॉपी भी करते थे. गणेश हेगड़े की आवाज में दैट वॉज मैं दीवाना ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक. एट आरजे कनेक ऑन इंस्टाग्राम पर आओ. 90s एंड 2000s का वो आइकॉनिक इंडी पॉप सॉन्ग दैट यू स्टिल थिंक इज फैबुलस हमसे आके शेयर करो. अशकाय और मैं आपके रिकमेंडेशन को बहुत सीरियसली लेते हैं. वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक. नाउ बैक टू द काउंटडाउन. इट्स टाइम फॉर द टॉप टू सॉन्ग्स ऑफ द वीक. There's been slight movement. पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके बंजारे का गाना बैरन 11 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. बैरन इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 2. उसके बाद करण औजला 21 वंस अगेन 2 पोजीशन ऊपर जंप करके दे हैव सिक्योर्ड द टॉप स्पॉट. 28 हफ्तों से ये गाना इस काउंटडाउन पर बरकरार है. बॉयफ्रेंड इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 1. दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10 बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
2: Number 2.

0: Indie Top 10
1: Kanika ke saath on Mirchi.
0: It's hot.
2: Hello, Mirchi helpline.
3: Hi there. What's up? Tell me.
2: Sir, computer mein virus ghus gaya hai. Kya karu?
3: Oh my God. Aaj hi doctor ke paas leke ja aur vaccine dila.
4: उठा ले रे देवा, उठा ले रे पापा।
5: मिर्ची फ्रेश माल।
6: हाई वोल्टेज बीट्स और अनस्टॉपेबल ग्रूव के साथ सुनो माशुका।

0: इस गाने को गाया है महमूद, अमिताभ भट्टाचार्य, राघव चैतन्य और रुआ के ने। म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म कॉकटेल 2 से सुनते रहिए माशुका, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ। 89.6, 89.6,
1: it's hot.

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
2: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
3: एक बात बताइए, अगर कल सुबह बॉलीवुड उठकर अपनी याददाश्त खो दे तो उसे अपने बारे में सबसे पहले क्या याद आएगा? धुरंधर, एआर रहमान, या फिर वो गाने जो सालों बाद भी बिना परमिशन के दिमाग में घुस जाते हैं? मुझे लगता है बॉलीवुड की सबसे बड़ी सुपर पावर कभी स्टार्स थे ही नहीं, इट वॉज ऑलवेज मेमोरी। और इस हफ्ते भी कहानी कुछ वैसी ही है। कुछ लोग पुरानी यादों को फिर से बेचने निकले हैं, कुछ लोग नई यादें बना रहे हैं, कुछ लोग नॉस्टैल्जिया पे जी रहे हैं एंड कुछ लोग फ्यूचर लिख रहे हैं। और हम इन दोनों के बीच खड़े हैं, पास्ट और फ्यूचर के बीच, मेमोरी और मैडनेस के बीच। हाय, इट्स मी सुरेन एंड दिस इज इंडियाज मोस्ट डेफिनेटिव हिंदी म्यूजिक काउंटडाउन द मिर्ची टॉप 20। एंड आज के एपिसोड की शुरुआत कर रहा हूं विद अ रहमान सॉन्ग फ्रॉम मैं वापस आऊंगा, विच इज अ डीसेंट साउंडट्रैक, लेकिन ये रॉकस्टार या हाईवे के लेवल की नहीं है। ये बात आई एम कंप्लीटली श्योर ऑफ। द सॉन्ग्स हैवंट कनेक्टेड द सेम वे, बट हियर इज अ नाइस सॉन्ग मस्कारा, जिसे गाया है निलंजना घोष दास्तीदार ने, एंड इट इज ऑन नंबर 20।
2: नंबर 20।

0: कभी कभी मुझे लगता है कि दुनिया की हर बड़ी चीज थोड़ी सी दीवानगी के साथ ही शुरू होती है। एक ऐसा सपना जिसे देखने की हिम्मत सब में नहीं होती। पच्चीस साल पहले एक फिल्म आई थी, लेकिन मैं उसका नाम अभी नहीं लूंगा। पहले उसकी याद के बारे में बात करूंगा। मिट्टी उड़ रही थी, धूप सर पर थी, लोग पसीने में भीगे हुए थे और एक पूरा गांव अपनी सांसें रोक कर खड़ा था। ये सिर्फ क्रिकेट नहीं था, ये उम्मीद थी, ये जिद थी, ये वो एहसास था कि कभी कभी जिंदगी में एक ही मौका मिलता है और उसी एक मौके पर सब कुछ दांव पर लगाना पड़ता है। आज भी जब उस फिल्म के सीन्स हमें याद आते हैं तो स्कोर याद आता है, वो ढोल याद आता है, भुवन याद आता है, गौरी याद आती है और सबसे ज्यादा वो फीलिंग याद आती है कि हम किसी फिल्म को नहीं देख रहे थे, हम उस गांव के साथ जी रहे थे। और फिर सोचिए क्या आइडिया था, गांव के लोग, अंग्रेज, 3 घंटे से लंबी ये फिल्म और क्लाइमैक्स में एक क्रिकेट मैच। आज भी ये पिच सुनकर प्रोड्यूसर्स डर जाते हैं, लेकिन आमिर खान और आशुतोष गोवारिकर ने उस वक्त डर और कॉमन सेंस दोनों को साइड रख दिया और बना दी लगान। मुझे लगता है लगान की सबसे बड़ी जीत ऑस्कर नॉमिनेशन नहीं थी, उसकी सबसे बड़ी जीत थी कि उसने बॉलीवुड को बताया कि अगर कहानी में जान हो तो ऑडियंस किसी भी सफर पर आपके साथ चलने को तैयार हो जाती है। 25 साल बाद भी हम उस फिल्म को याद करते हैं, उसकी डायलॉग्स के लिए नहीं, उसकी बॉक्स ऑफिस के लिए नहीं, बल्कि उस एहसास के लिए। और आज भी सवाल वही है, अगली लगान कौन बनाएगा? दिस एपिक फिल्म इज री रिलीजिंग, सो वॉच इट अगर आपको वक्त मिले। बिलाल मिर्ची .20 पर फहीम अब्दुल्ला की आवाज में वन ऑफ माई फेवरेट ट्रैक्स ऑन द शो, दिस इज चांद मेरा दिल ऑन नंबर 18।
1: नंबर 18।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सका बना मुर्गा मुर्गा नबीद वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो सुनील जी।
3: हाँ जी
4: सुनील जी, पेट्रोल पंप से बोल रहा हूँ सर। कंग्रेचुलेशन, आप लकी विनर हैं।
3: किस चीज के जी सर?
4: सर आपका 20 लीटर पेट्रोल निकला है बिल्कुल फ्री। मैं तो सोच रहा था बड़े खुश हो जाएंगे क्योंकि पेट्रोल के
3: वेरी गुड यार।
4: तो सर ये आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको फिल कराना होगा, भरवाना होगा अपनी गाड़ी में।
3: ठीक है। अच्छा एक बात तो बताइए सर जी।
4: हाँ जी।
3: इसके क्या पैसे ऐसे देने पड़ेंगे कुछ?
4: नहीं सर, पैसे कोई नहीं, कोई पैसा नहीं।
3: कंडीशन वगैरह?
4: नहीं सर, कोई कंडीशन नहीं है। पुराने ग्राहक है आप, ऐसे कैसे कंडीशन रख लेंगे?
3: तो ठीक है, ग्राहक पुराने ग्राहक को आदमी थोड़ा अपना समझ के कहते हैं ना अपने को ज्यादा।
4: बस सर बिल्कुल फ्री है, पैसे आपको नहीं देने पड़ेंगे। एक छोटा सा काम करना पड़ेगा।
3: क्या?
4: पुराना लाइए नया ले जाइए।
3: क्या भैया पुराना क्या लाऊं भाई?
4: पुराना पेट्रोल लाओ नया ले जाओ सर, बस यही है। और वो भी आप ही का निकला है।
3: क्या बात हुई, पुराना कहाँ से लाऊं?
4: सर पुराना जो आपने
3: पुराना हो तो जल के वो खत्म कर दिया हो तो
4: सर जो आपने पुराना यूज किया होगा वो तो लाना पड़ेगा ना आपको।
3: धुआं में कहाँ से इकट्ठा करूँ?
4: पहले तो आप बड़े दांत फाड़ रहे थे जब मैंने आपसे कहा 20 लीटर फ्री पेट्रोल है। वाह वाह जी वाह वाह, थैंक यू। अब मैं आपसे कह रहा हूँ
3: पेट्रोल मिल गया तो मुझे बड़ी अच्छी बात है।
4: अरे अरे तो ये क्या
3: पुराना कहाँ से लाऊं?
4: पुराना आपको लाना पड़ेगा, ये भी मैं पुराना भी वैसे हर वक्त रोते रहते हैं पेट्रोल के पैसे बढ़ गए। हम फ्री दे रहे हैं तो ला के नहीं दे सकते पुराना? यार कमाल कर रहे हैं आप।
3: पेट्रोल फालतू का। अच्छा। पुराना लाओ नया ले जाओ, ये ले जाओ।
5: अरे मेरी बात सर जी, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। अगर आप पुराना ले भी आए तो भी आपको 20 लीटर पेट्रोल फ्री नहीं मिलेगा। हाँ मुर्गा खाने को जरूर मिल सकता है। सर मजा आ गया आपसे बात करके, मतलब आपके गुस्से से डर गया मैं।
1: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: वेलकम टू द जंगल, पूरी इंडस्ट्री दिख जाएगी भाई आपको इस फिल्म में। एंड टॉकिंग ऑफ दिस हिंदी फिल्म इंडस्ट्री एके बॉलीवुड, कभी कभी किसी एक फिल्म की कामयाबी पूरी इंडस्ट्री के लिए एक प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि वो ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस बदल देती है परमानेंटली। धुरंधर के बाद मुझे लगता है कि इंडियन स्पाई जॉनर उसी फेज में है। अब सिर्फ एक्सप्लोजन्स काफी नहीं है, अब सिर्फ स्लो मोशन वॉक्स काफी नहीं है, अब सिर्फ स्टाइलिश फ्रेम्स काफी नहीं है। ऑडियंस को खतरा महसूस होना चाहिए, वो दाव पेच महसूस होने चाहिए, और शायद इसलिए यशराज की फिल्म अल्फा का टीजर उतना इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर पाया जितनी उम्मीद की थी। इट्स गॉट आलिया भट्ट, इट्स गॉट बॉबी देओल, एंड इट इज गॉट शर्वरी। इट्स पार्ट ऑफ द YRFY यूनिवर्स। कागज पर तो सब कुछ सही लगता है, लेकिन टीजर देखने के बाद मुझे एक ही चीज महसूस हुई, सब कुछ बहुत कंट्रोल्ड है, बहुत पॉलिश्ड है, बहुत कैलकुलेटेड है, और स्पाई फिल्म्स कैलकुलेशन से नहीं केओस से याद रहती हैं। धुरंधर देखकर लगा था कि यार कुछ भी हो सकता है इस फिल्म में, अल्फा देखकर लगता है सब कुछ पहले से डिसाइड हो चुका है। और वैसे एक और सवाल है, फिल्म में शर्वरी भी है लेकिन टीजर देखकर तो ऐसा लगा जैसे उनका पासपोर्ट ही कहीं खो गया है। देखते हैं फिल्म क्या करती है, बिकॉज टीजर तो बस पहली झलक होती है। फिलहाल शर्वरी की जब बात चली ही है तो चलिए उनकी दूसरी फिल्म की तरफ। मैं वापस आऊंगा, AR रहमान जब नॉस्टैल्जिया को छू लेते हैं ना तो वो से म्यूजियम पीस नहीं बनाते, उसमें नई जान फूंक देते हैं। इश्क मस्ताना में 1940s के बिग बैंड जैज का रंग है, पंजाबी फोक की मिट्टी है, और मोहित चौहान की आवाज में वो खनक है जो सीधा हिट करती है। इट्स डेब्यूइंग ऑन नंबर 16, दिस इज इश्क मस्ताना by AR Rahman and Irshad Kamil.
1: Number 16.

0: सुरेन के साथ only on मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना, एक 19 साल की लड़की कोमा से जागी और उसको लगा वो 3 बच्चों की माँ है और वो उनको ढूंढने लगी।
4: भाई इंसान कोमा में जाने के बाद अपनी मेमोरीज लूज करता है, ये तो नई मेमोरीज बना के आ गई। और ऊपर से एक और चीज, इसको अडल्टहुड से पहले पेरेंटहुड का स्वाद मिल गया।
5: मिर्ची इट्स हॉट, मिष्टी दोई, संगीत और मीठी बोली के शहर में अब खून की होली शुरू हो चुकी है।
6: यहाँ हर मुस्कुराहट के पीछे एक राज है और क्राइम का रंग अब ब्लैक हो चुका है। मैं आ रही हूँ इनके खेल खत्म करने।
5: संगीत की धुन अब चीखों में बदलेगी। Officer Brown is back to kill the devil. The dark side of Kolkata awaits. Brown, streaming from 12th June, only on Z5.
7: अर्ज किया है
8: इरशाद, इरशाद

0: आईपी पेमेंट्स का वाह तरीका. विद आईपी सेंड मनी स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट QAR 5 एंड यस विद द बेस्ट एफएक्स रेट्स. सिंपल सीधा नो टेंशन. चेक द आईपी ऐप टुडे फॉर आवर 5 10 15 20 ऑफर वैलिड टिल जुलाई 31st. आईपी स्मॉलर फीस बिगर स्माइल्स. टीएनसी अप्लाई.
1: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे.
2: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
3: बहुत कुछ होगा.
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: हमने वहीं दिल लगाया। और इस गाने की तरह बॉलीवुड में भी कुछ ट्रेंड्स ऐसे होते हैं जो अचानक वायरल नहीं होते, वो धीरे धीरे इंडस्ट्री का रूल बन जाते हैं। आज किसी भी बड़े हीरो को देख लीजिए, कॉकटेल में शाहिद कपूर है, जवानी तो इश्क होना है विद वरुण धवन, या फिर आने वाली कोई भी फिल्म, एक चीज ऑलमोस्ट नॉन नेगोशिएबल हो चुकी है, एब्स। कभी सिक्स पैक, कभी एट पैक, कभी ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो, तो कभी डाइट प्लान। आजकल रोल अनाउंस होने से पहले एब्स अनाउंस हो जाते हैं। और अगर पूछा जाए कि ये सब किसने शुरू किया था, तो जवाब बड़ा ही आसान है, ऑफ कोर्स मैन भाई, सलमान खान। लेकिन मुझे लगता है बॉलीवुड ने सलमान खान की लेगेसी का सिर्फ विजिबल हिस्सा अडॉप्ट किया, इनविजिबल हिस्सा तो छोड़ ही दिया। आज अहान पांडे को देखिए,
1: नंबर 40।

The title song of Sayyara, which is on number 14, and Sayyara ke liye Ahaan musician bane. Ali Abbas Zafar ki action film ke liye apni body ko transform kiya, hard work kiya, aur ye zaruri bhi hai. Lekin Salman Khan star sirf isliye nahi bane, kyunki wo shirt utar sakte the. Wo star bane the kyunki screen par unme ek warmth thi, ek charm tha, ek emotional honesty thi. बॉडी अटेंशन जरूर लाती थी लेकिन इमोशन रिपीट वैल्यू लाता है और शायद इसलिए सलमान के कुछ सबसे प्यारे परफॉर्मेंसेस वो हैं जहां लोगों ने उनके एब्स नहीं उनका दिल देखा उनकी आंखें देखी. मेरा रीवाइंड ट्रैक ऑफ द वीक इज फ्रॉम हम दिल दे चुके सनम. दिस इज कविता कृष्णमूर्ति एंड कुमार सानू. दिस इज आंखों की गुस्ताखियां. टॉप 20.

0: वो नहीं, और इम्तियाज अली की फिल्मों की एक बात मुझे हमेशा पसंद आई है, उनके कैरेक्टर्स अक्सर किसी चीज का इंतजार कर रहे होते हैं, प्यार का, खुद को ढूंढने का, या फिर एक मौके का। और शायद इसलिए मुझे एक और फिल्म उतनी ही एक्साइटिंग लग रही है, एक ऐसी फिल्म जो अभी रिलीज भी नहीं हुई है लेकिन जिसके आसपास एक अजीब सा बिलीफ बिल्ड हो रहा है। बंटवारा, जिसे हम पहले लाहौर 1947 के नाम से जानते थे। सोचिए, लाल सिंह चड्ढा के बाद आमिर खान ने एक्टिंग से ब्रेक लेने का फैसला कर लिया था, लेकिन जिस स्क्रिप्ट ने उन्हें वापस खींच लिया वो ये वाली थी। राजकुमार संतोषी, सनी दियोल, प्रीति जिंटा, शबाना आजमी, ए आर रहमान, और फिर कुछ महीने पहले जावेद अख्तर साहब ने एक प्रिडिक्शन कर दी। सिर्फ प्रिडिक्शन नहीं, अपनी रेप्यूटेशन दांव पर लगा दी।
1: एक प्रिडिक्शन में करना चाहता हूं, आई नो आई एम पुटिंग माय नेक आउट ऑन द ब्लॉक, मगर मैं इस हिस्से में थोड़ा सा वेन हूं।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
1: अरे यार, मैं तो आज मेरा आईडी कार्ड ही भूल गया हूँ, कॉलेज में कैसे जाऊँ?
2: अरे गोचू, आईडी कार्ड ही भूला है ना, अंदर जाने का रास्ता तो पता ही होगा ना, तो चला जाना।
3: खोपड़ी तोड़ साले का।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: Sureen ke saath, only on Mirchi. It's hot.
2: Number 10.

जाइए सजना फ्रॉम धुरंधर बाय जैस्मिन सैंडलर्स। और जब भी मिर्ची टॉप 20 पर कोई नया गाना आता है, मेरा प्रोसेस बहुत सिंपल होता है। पहले ऑडियो, सिर्फ ऑडियो, आंखें बंद करके। अगर गाना वहां काम कर गया तो फिर वीडियो देखने का मन करता है, और यही मैंने किया विद अ सॉन्ग फ्रॉम वेलकम टू द जंगल जिसका नाम है ऊंचा लंबा कद फॉरएवर। और मुझे मानना पड़ेगा, विक्रम मॉन्ट्रोज ने इस रिक्रिएशन को एक इज्जत दी है। गाने में एनर्जी है, बीट एडिक्टिव है, और कम से कम ये अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वीडियो देखते ही एक और ख्याल आया यार, हम बॉलीवुड में अक्सर चेहरे याद रखते हैं लेकिन आवाजें भूल जाते हैं। और जो ओरिजिनल वाला ऊंचा लंबा कद है, उसकी बात जब होती है तो लोगों को कटरीना कैफ याद आती है, अक्षय कुमार याद आते हैं, लेकिन उस गाने के असली आर्किटेक्ट आनंद राज आनंद। और शुक्र है कि इस नए वर्जन में उनकी आवाज को रिटेन किया गया है, वही आनंद राज आनंद जिन्होंने हमें दिए कुछ आइकॉनिक गाने।

0: रोमांस भी, दर्द भी और डांस फ्लोर भी। कितने कंपोजर्स ये रेंज क्लेम कर सकते हैं? मोस्ट ऑफ देम वर चार्ट बस्टर्स। और हाँ, एक बात और है, दिशा पाटनी अपनी जगह एक स्टार है, लेकिन कुछ गाने सिर्फ गाने नहीं होते, वो किसी एक परफॉर्मर की याद के साथ परमानेंटली लॉक हो जाते हैं। और ऊंचा लंबा कद, वेल, वो कटरीना कैफ के नाम पर रजिस्टर्ड है। नंबर 9 पर डेब्यू हो रहा है इस गाने का, ऊंचा लंबा कद, फॉर एवर फ्रॉम वेलकम टू द जंगल।
1: नंबर 9।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची इसका बाना उसका बाना सबका बाना बाना मुर्गा मुर्गा नफीस वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा। हेलो
1: हेलो नवनीत
0: yeah.
1: नवनीत मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ।
0: हाय नवेद,
1: क्या हाल चाल है?
0: बढ़िया है।
1: आपने मैसेज किया था अपने फादर का मुर्गा बनवाने के लिए।
0: हाँ हाँ हाँ, बन गया क्या?
1: यार तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुमने किस आदमी का नंबर दिया यार मुझे?
0: हाँ?
1: सोच समझ के नंबर देते हो नहीं देते हो? मैंने उनको फोन किया, वो मुझ पे भड़क रहे हैं यार शुरू में ही।
0: या, मैं तो अपने पापा का ही नंबर दिया।
1: पापा का नंबर, नाम क्या है यार पापा का?
0: मिस्टर दिलीप कुमार।
1: उनसे ही मेरी बात हुई है यार। मैंने माना, मजाक अपनी जगह है, मुर्गा बनाता हूँ, मैं भी हंसता हूँ, तुम्हें भी हंसाता हूँ, लेकिन यार ये थोड़ी उसका नाजायज फायदा उठा लो तुम।
0: मैं क्या कुछ गलत
1: बोल दिया यार? मैं मतलब यहाँ पे इसलिए आता हूँ कि मैं गालियाँ सुनूं यार?
0: अब ऐसी बात क्या
1: ऐसी हो गई? ऐसी बात क्या हो गई? अपने फादर से पूछो यार जाके। नहीं, अपने फादर से क्यों नहीं पूछते तुम जाके?
0: अब मैं क्या
1: पूछूं यार? तुम्हें पहले कहना चाहिए था मुझसे कि उन्हें गुस्सा आता है, वो ज्यादा भड़क जाते हैं यार।
0: अब गुस्सा तो सभी को आता है, ठीक से बात कर ले।
1: तुम मुझे बताओगे कि मैं कैसे बात कर लेता यार? नवनीत कमॉन यार, ऐसे नहीं होता है। मैंने माना कि चलो एक शो है, मुर्गा बनाते हैं उसमें, ये थोड़ी यार क्या तुम उठा के किसी का भी नंबर दे दो, किसी का भी मुर्गा बनवा लो।
0: अब कुछ यानी कुछ ज्यादा पापा ने बोल दिया तो तरफ से मैं माफी
1: मांगने से क्या होता है यार? ऐसी मैं माफिया मांग रहा था उनसे, मैंने माफी मांगी है 50, वो नहीं मान रहे। तुमने यार पता नहीं उठा के क्या समझ रखा है मुझे।
0: अब मैंने क्या, आपने बोला कि मुर्गा बनाना है, SMS कर दो, मैंने कर दिया।
1: तुम मुझे क्या पता था यार तुम अपने ऐसे फादर का नंबर दे दोगे यार?
0: ऐसे फादर क्या, मेरे तो एक ही फादर है, मैं ढूंढ के लाऊंगा।
1: अरे तो यार अब तुम उल्टे मुझसे बात कर रहे हो। एक तो पहले बाप की सुनिए, अब मैं बेटे की सुन लो। यार तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया क्या?
0: मेरा खराब नहीं हो गया, मुझे लग रहा है आप ही का थोड़ा हो गया।
1: इस वक्त तुम्हारा ही मुर्गा बन रहा है, मेरी तुम्हारी फादर से अभी तक बात भी नहीं। ऐसे अच्छे काम होते रहते हैं यहाँ पर। वैसे तुम्हारे फादर के वाकई में गुस्से वाले हैं?
0: नहीं, ऐसा तो नहीं है, कभी कभी तो गुस्सा कर ही देते हैं।
1: चलो एक बार प्यार से मेरे साथ उनकी तरफ से बोल दो।
0: कुकड़ुकू
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do that.

यार कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ गाने नहीं गाती, वो हमारी जिंदगी के अलग अलग चैप्टर्स में साथ चलती रहती हैं। सुनिधि चौहान उनमें से एक है, अरिजीत सिंह भी उनमें से एक है। लेकिन कितनी इंटरेस्टिंग बात है, जब अरिजीत अपना पहला बॉलीवुड गाना गा रहा था तब तक सुनिधि एक पूरी जनरेशन का साउंडट्रैक बन चुकी थी। मुझे आज भी मस्त का वो गाना याद है, वे आई हर्ड सुनिधि फॉर द फर्स्ट टाइम एंड माय माइंड वाज ब्लोन। रुकी रुकी थी जिंदगी, एक आवाज जो अलग थी, नई थी और बिल्कुल सुनिधि चौहान थी। फिर सालों बाद आए अरिजीत सिंह और धीरे धीरे वो आवाज बन गए, इसके बिना बॉलीवुड का रोमांस अधूरा लगने लगा। और जब ये दोनों एक ही गाने में मिलते हैं तो कुछ खास हो जाता है। और आज तुझको में आप उस जादू को महसूस कर रहे हैं, लेकिन मेरे लिए उनकी वोकल केमिस्ट्री का पीक आज भी ये गाना है।

0: सुनिए उस पल को। ना अरिजीत आगे निकलने की कोशिश करते हैं, ना सुनिधि। दोनों एक दूसरे को एलिवेट कर रहे हैं और शायद इसी को म्यूजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। लेकिन अब मिर्ची टॉप 20 पर गाना नंबर 7, फिर वही आवाज, एक और एहसास। अरिजीत सिंह इज सोलो राइट नाउ, दिस इज गहरा हुआ फ्रॉम धुरंधर।
1: नंबर 7।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना, एक 19 साल की लड़की कोमा से जागी और उसको लगा वो 3 बच्चों की माँ है और वो उनको ढूंढने लगी।
4: भाई इंसान कोमा में जाने के बाद अपनी मेमोरीज लूज करता है, ये तो नई मेमोरीज बना के आ गई। और ऊपर से एक और चीज, इसको अडल्टहुड से पहले पेरेंटहुड का स्वाद मिल गया।
5: मिर्ची इट्स हॉट पिज्जा पार्टनर पापा जॉन्स स्पेशल ऑफर, बाय वन लार्ज पिज्जा एंड गेट वन स्मॉल पिज्जा फ्री एक्सक्लूसिवली ऑन द पापा जॉन्स ऐप एंड वेबसाइट। ऑर्डर अर्न एंड रिपीट विद पापा रिवॉर्ड्स। डाउनलोड द पापा जॉन्स ऐप टुडे एंड एंजॉय मोर रिवॉर्ड्स।
6: Eyewear partner Alfahad Optics. Clear vision, stylish fashion, all at perfect price. Free eye checkup at any branch. Direct partner with Al Goot Insurance. Visit Alfahad Optics all over Qatar. Call 555-6189.
7: रेस्टोरेंट पार्टनर चस्का रेस्टोरेंट। चाइनीज, मुंबई हो या नॉर्थ इंडियन का क्रेज, बजट में चाहिए टेस्टी डीज तो चलिए चस्का रेस्टोरेंट जो है एस दानो एसिस में। स्वाद भी जबरदस्त और प्राइस भी मस्त।
6: मॉल पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, शॉपिंग, डाइनिंग एंड एवरीथिंग इन बिटवीन। अबू सिद्रा मॉल हैज इट ऑल। अबू सिद्रा मॉल फॉर एवरी डे एंड एवरी ओकेजन।
7: हाइजीन पार्टनर हाइजीन, फ्रॉम क्लीन स्किन टू हेल्दी लाइफ। एक्सपीरियंस टोटल प्रोटेक्शन विद हाइजीन सैनिटाइजर, वेट वाइप्स एंड बॉडी वॉश। हाइजीन प्योर प्रोटेक्शन।
8: Sugar free partner Tropicana Slim. Looking for a sweeter life without the sugar? Tropicana Slim is your perfect partner. Enjoy the same great taste with zero sugar. Tropicana Slim.
9: Jewelry partner Sky Jewelry. हर पल को बनाए खास स्काई ज्वेलरी के साथ एलिगेंट डिजाइंस, डैजलिंग कलेक्शंस और हर बजट के लिए परफेक्ट ज्वेलरी। शॉप नाउ एंड एंटर द मेगा ड्रॉ ऑन जून 23rd फॉर अ चांस टू विन अ ब्रांड न्यू लेक्सस कार। स्काई ज्वेलरी, डिजाइन फॉर जनरेशंस।
10: रिफ्रेशमेंट पार्टनर बलाना मिल्क लबान योगर्ट। एक्सपीरियंस द फ्रेश क्रीमी टेस्ट दैट कतार लव्स, रिफ्रेशिंग एवरी मोमेंट विद एवरी सिप एंड स्पून।
11: Fragrance partner Faridi Perfumes Gallery. Make every moment unforgettable with premium Arabic and French fragrances crafted for every style. Visit our Al Sadd branch, Faridi Perfumes Gallery. Luxury you can wear. Visual media partner Rehab Media.
12: Dosti kai kuch sule madam? No sorry, no thank you.
13: Bhai saab, sorry and thank you. हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
3: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
14: खूब मिलेगा, मिलेगा।
15: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
16: 89.6
17: FM, मिर्ची वन। इट्स हॉट।
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: नंबर 5।

ये गाना खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होता। आप सोचते हो एक और बार सुनूंगा और फिर खुद को चौथी पांचवी बार प्ले करते हुए पकड़ लेते हो। और मुझे लगता है कि उसका एक बहुत बड़ा रीजन है इसका सिंगर राघव चैतन्य, क्योंकि कुछ सिंगर्स सुर में गाते हैं, कुछ सिंगर्स पर्सनालिटी में गाते हैं और राघव दूसरी कैटेगरी में आता है। सारी परतें हटा के सुनो, सिर्फ राघव की आवाज सुनो।

0: देखिए कैसे वॉइस को यूज कर रहा है ये लड़का। कभी ब्रीजी है, कभी फ्लर्टेशियस है, कभी ऑलमोस्ट कॉन्वर्सेशनल है, जैसे आपसे बात कर रहा हूं। गाना सिर्फ गा नहीं रहा, परफॉर्म कर रहा है। और शायद इसलिए प्रीतम दा बार बार उसकी तरफ लौट रहे हैं। इन एनिमल, इन मेट्रो, इन दिनों, इन कॉकटेल। इनफैक्ट राघव ने तो कई बार प्रीतम दा के गाने कवर भी किए अपने वीडियोस में।
1: इतनी

0: dude, it sounds so lovely. Pattern साफ नजर आ रहा है. Mirchi.20 पर नंबर 3 पर है तू ही दिसदा फ्रॉम भूत बंगला, जो कोविड के बाद अक्षय कुमार की सबसे कामयाब फिल्म है. लेकिन हम राघव चैतन्य की इस ट्रेन से उतरने नहीं वाले, क्योंकि माशूका से पहले एक और गाना था जिसने सबको पूछने पर मजबूर कर दिया, यार ये सिंगर कौन है. माय पिक ऑफ द वीक इज फ्रॉम एक विलन रिटर्न्स. दिल इश्क तो है बट साथ में दर्द भी.
1: पिक ऑफ द वीक.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: बादशाह, आपने इतने गाने बनाए, इतने गाने कंपोज किए, सबसे पहला रैप आपने किस पे लिखा था?
4: जो मैथ्स के टीचर है उन पे रैप लिखा था। टीचर अच्छे नहीं थे क्योंकि एक जैसे टीचर होते हैं वैसे वो थे नहीं, तो मैंने उन पे रैप लिखा जो काफी मशहूर हो गया। दैट वाज माय फर्स्ट। दिक्कत तब हुई जब वो रैप उन्होंने ही पढ़ लिया, उसके बाद मेरा एजुकेशन पे से विश्वास ही उठ गया।
3: 2+2=4, बादशाह गिव अस मोर, इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
2: Only on Mirchi, it's hot. Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do this.

0: Hardy Sandhu and Kiran Bajwa have got a hit song to their credit. Wow! And अब जब है जवानी तो इश्क होना है थिएटर्स में एक हफ्ता बिता चुकी है तो मुझे लगता है कि फिल्म से ज्यादा इंटरेस्टिंग है इसका म्यूजिक, क्योंकि उस एल्बम में दो गाने ऐसे हैं जो पहले से ही सुपर हिट्स बन चुके थे, चुनरी चुनरी एंड देन इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग जो बीवी नंबर वन में था, इश्क चांदी है इश्क सोना है सोना बाबा सोना सोना सोना। वेल, मुझे लगता है कि बॉलीवुड का म्यूजिक एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड से गुजर रहा है। आज के कंपोजर्स को शायद लगता है कि लिसनर 3 सेकंड में शायद बोर हो जाएगा, इसलिए हर दूसरे सेकंड कुछ ना कुछ हो रहा होता है गाने में, नई बीट, नया ड्रॉप, नया इफेक्ट, नई लेयर, और फिर गाना खत्म होने के बाद आपको गाना याद ही नहीं रहता। आप जरा ओरिजिनल वाला इश्क सोना है सुनिए।
1: इश्क

यार क्या था इस गाने में? कुछ खास नहीं, और शायद वही इसकी खासियत है। मेलोडी को सांस लेने की जगह मिली, हुक को बैठने की जगह मिली। गाना आपका अटेंशन डिमांड नहीं कर रहा था, गाना आपको साथ ले जा रहा था। हर गाना लाउड होकर याद नहीं रहता, कुछ गाने चुप रहकर भी याद हो जाते हैं, लेकिन इस वक्त बॉलीवुड में एक गाना इतना लाउड है कि उसके सामने सब पीके पड़ रहे हैं। 17 हफ्ते एट द नंबर वन पोजीशन इज नो जोक एंड आई स्टिल फाइंड इट अनबिलीवेबल। और अब तो ओटीटी पर भी हुड़दंग मचा रखा है, मैडनेस नजर आ रही है। दिस इज शरारत बाय मधुवंती बागची, जैस्मिन सैंडलास फ्रॉम धुरंधर, नंबर वन।

0: और बस इसी के साथ एक और एपिसोड, एक और काउंटडाउन और बॉलीवुड की एक और कहानी खत्म होती है। कुछ गाने इस हफ्ते चार्ट्स पर चढ़े, कुछ हिट कर गए और कुछ ने हमें याद दिलाया कि अच्छा म्यूजिक कभी पुराना नहीं होता। बट टिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, अपनी प्लेलिस्ट को जिंदा रखिएगा और अपनी यादों को भी। दिस इज सुरेन, ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन?
3: नहीं नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है?
2: सर वो क्या है ना, अगले हफ्ते मेरी शादी होने वाली है, तो मुझे आप बताओ ना कि वो सुहागरात में कौन।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन?
3: नहीं नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है?
2: सर वो क्या है ना, अगले हफ्ते मेरी शादी होने वाली है, तो मुझे आप बताओ ना कि वो सुहागरात में।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी करता है आपका इस्तकबाल। और दोस्त, एक उम्र के बाद ना आपके साथ कोई गलत भी करके चला जाता है तो वियर्डली आपको ये समझ में आ रहा होता है कि उसका पर्सपेक्टिव क्या है। और ये जहां एक तरफ आपके सेल्फ की एक बहुत बड़ी ग्रोथ है, वहीं एक तरफ कभी ना कभी थोड़ा सा इरिटेटिंग भी हो जाता है। जैसे आप जैब गौरी साहब का शेर देखें, कानपुर से हुए जैब गौरी साहब, उनका बड़ा सटीक शेर लगा मुझे। कहते हैं कि जख्म लगाकर उसका भी कुछ हाथ खुला, जख्म लगाकर उसका भी कुछ हाथ खुला, मैं भी धोखा खाकर कुछ चालाक हुआ। अब यही बात है, देखिए किस तरीके से जैब साहब ने एक बुरे इंसिडेंट के बाद भी ही टुक अ लर्निंग आउट ऑफ इट एंड ही सेज कि जख्म लगाकर उसका भी कुछ हाथ खुला, मैं भी धोखा खाकर कुछ चालाक हुआ। अब वही है यार, हर कोई अपने नजरिए से सही है और किसी के नजरिए से गलत। बहरहाल स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, स्वागत है आपका। यू नो व्हाट आई से, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: हाँ जी, और मिर्ची महफिल में अब वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे रूबरू।
1: कि आप कताशी, आपको रूबरू कराए हमारे आज के शायर आनंद नारायण मुल्ला साहब से। बिल्कुल जी, 1901 से 1997 तक इनका जीवन काल रहा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे, लोकसभा के सदस्य भी रहे। एंड आनंद नारायण मुल्ला साहब का एक बड़ा ही मेरा पसंदीदा शेर है, कहते हैं कि जब दिल में जरा भी आस ना हो, इजहारे तमन्ना कौन करे। जब दिल में जरा भी आस ना हो, इजहारे तमन्ना कौन करे। अरमान किए दिल ही में फना, अरमान को रुसवा कौन करे। अब वो अरमान बताने से क्या फायदा जो मर गए, है ना। वो और बेइज्जती होगी उन अरमानों की कि अरे अच्छा ये भी सोचते थे क्या तुम, ओहो कभी सोचते थे कि रोल्स रॉयस खरीदोगे। अरे समझ गया यार, कभी रोल्स रॉयस नहीं खरीद पाऊंगा, मैंने वो अरमान मार दिया है। जब दिल में जरा भी आस ना हो, इजहार तमन्ना कौन करे। अरमान किए दिल ही में फना, अरमान को रुसवा कौन करे। ये थे आनंद नारायण मुल्ला साहब। और समझ रहे हैं एक समय की जो गंगा जमनी तहजीब थी, क्या नाम भी है इनका, आनंद नारायण मुल्ला। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, आपका दाशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना, एक 19 साल की लड़की कोमा से जागी और उसको लगा वो 3 बच्चों की माँ है और वो उनको ढूंढने लगी।
4: भाई इंसान कोमा में जाने के बाद अपनी मेमोरीज लूज करता है, ये तो नई मेमोरीज बना के आ गई। और ऊपर से एक और चीज, इसको अडल्टहुड से पहले पेरेंटहुड का स्वाद मिल गया।
0: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
6: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है।
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ और मेरे एक बड़े ही अजीज शायर हैं, लखनऊ से हैं, मैं जानता भी हूँ, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, कमर अब्बास कमर उनका नाम है। और उनका एक शेर है जो मेरे जहन में इतने वक्त से अटका हुआ है कि मैंने बोला आज आपको सुनाना तो बनता ही है ना। रात के बारे में शेर है, रात ही हो रही है तो नजर है आपके। कहते हैं कि हमारी रात का एक वक्त तय है जिसमें हमारी रात का एक वक्त तय है जिसमें हम तमाम बिछड़े हुओं को बुलाने लगते हैं। आय हाय हाय हाय हाय। हमारी रात का एक वक्त तय है जिसमें हम तमाम बिछड़े हुओं को बुलाने लगते हैं। इससे तो मुझे वो शेर याद आता है यार कि कर रहा था गमे जहां का हिसाब, आज तुम याद बेहिसाब आए, आए कुछ अब्र कुछ शराब आए, उसके बाद आए जो अजाब आए। आए हाय। बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। मिर्ची महफिल बरकरार है, कारवां स्टे ट्यून्ड। मिर्ची ताशी है आपके साथ, इट्स हॉट।

0: संग मिर्ची इट्स हॉट बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: श्रेयस तलपड़े आपकी सबसे पहली हिंदी फिल्म इकबाल थी, लेकिन क्या आपको याद है सबसे पहला गाना आपने कौन सा शूट किया था?
2: एक्चुअली टेलीविजन सीरियल का हमने एक टाइटल सॉन्ग शूट किया था, तो आई थिंक दैट प्रोबब्ली वाज द वन व्हिच वाज माय फर्स्ट सॉन्ग एज सच। मराठी गाना था वो, टाइटल था सीरियल का बेधुंद मना ची लहरी। इट वाज लाइक बेधुंद मना ची लहर लहरी चा होती लाटा लाटा होता कहर किनारा शोधती हजार वाटा।
1: श्रेयस यू आर नॉट ओनली अ गुड एक्टर, यू आर अ फाइन सिंगर। मुझे लगता है आपको ये वाला ऑप्शन अब एक्सप्लोर करना शुरू कर लेना चाहिए। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट
0: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: और मिर्ची महफिल में अब वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे ताशी अनप्लग्ड
1: कि आपका ताशी नजर करे आज का ताशी अनप्लग्ड आपको और ये जो गजल है भाई साहब ये हरिहरन साहब की गाई हुई है और मेरे जहन पे इस तरीके से ये चिन्हित हो गई है, अंकित हो गई है, जज्ब हो चुकी है मेरे दिल में ये गजल इस तरीके से, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे गजल। बेसिकली जैज का इस्तेमाल गजल के साथ किया गया है एंड इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स कि दो जॉनराज को किस तरीके से साथ में मिलाया जा सकता है। This is called ये आईने से।

बने रहें अपने ताशी के साथ सिर्फ मिर्ची महफिल पर। और आपको अगर और गजलें सुननी हो और नगमे सुनने हो तो आप आ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे भी मिर्ची ताशी MIRCHITASHI पर। मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप। इट्स हॉट।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: यस ऑफ कोर्स, मिर्ची हेल्पलाइन, बताइए।
0: सर, आई डोंट नो व्हाट टू डू आफ्टर कॉलेज, आप बताओ ना मुझे क्या करना चाहिए।
1: अरे तो सिंपल है ना, फटाफट कर जा, मम्मी इंतजार कर रही होगी।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ। और कभी कभी ये लगने लग जाता है इश्क के मामलों में कि यार सब कुछ किस्मत के ऊपर लिखा हुआ है, क्योंकि आप किसी को प्यार बहुत करते हैं लेकिन वो भी नहीं टिकता। किसी को आप अगली बार सोचते हैं कि उतना प्यार तो नहीं करूंगा, लेकिन जिसके साथ ये सोचते हैं उसके साथ कई बार जिंदगी बिता लेते हैं। अंजुम रहबर साहिबा का शेर है, कहती हैं कि मिलना था इत्तेफाक, बिछड़ना नसीब था। मिलना था इत्तेफाक, बिछड़ना नसीब था, वो उतनी दूर हो गया जितना करीब था। आए हाय हाय हाय। और हम सब की जिंदगी में कुछ ऐसे शख्स बिल्कुल रहे होंगे जिनसे मिलना था इत्तेफाक, बिछड़ना नसीब था, वो उतनी दूर हो गया जितना करीब था। तभी माँ कहती थी ना, ज्यादा मत हंस, अभी रोएगा। कुछ वैसा ही सा सबक दे रहा है ये शेर भी। बहरहाल, स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, बने रहे अपने ताशी के साथ। इट्स हॉट।

0: on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi.
2: Iska bana, uska bana, saka bana.
3: Bana.
2: Murga, murga. Nabiyat wala murga.
3: Mirchi, murga.
4: Hello.
5: से बोल रहे हैं?
4: हाँ जी।
5: मुझे कुछ ऑर्डर करना था, आप लिख लेंगे प्लीज?
4: या?
5: और रात के खाने के लिए लिख लीजिए प्लीज। ढाई किलो अरहर दाल, 3 किलो चना दाल, 3.5 किलो चना कबूली, 4 किलो चना डॉलर प्रीमियम, 1 बेसन। हाँ,
4: एक्चुअली में 2.5 किलो वगैरह हमारे यहाँ नहीं होता, 2-2 किलो में, 1-1 किलो में पैकिंग होती है, तो 2 kg।
5: अब आपको ये मैं क्या, वो 2.5 किलो ही खाते हैं, मैं क्या करूँ?
4: Oh my God.
5: मेरे हस्बैंड हैं, डाइट उनकी है, आपको क्या प्रॉब्लम है?
4: नहीं मैम प्रॉब्लम।
5: 4 किलो चना दाल, 4 किलो चना कबूली,
4: चना दाल, चना कबूली, एरोप्लेन भेजू?
5: एरोप्लेन भेजिए, हमें जाना ना हनीमून पे।
4: सॉरी मैं ये बोल रहा हूँ, 5 kg एरोप्लेन राइट मैम, सॉरी।
5: एक सेकेंड, कभी फोन आ रहा है। स्वीट हार्ट आई लव यू, ऑर्डर दे रही हूँ। तुम आओ तो सही ना। No, I will be waiting for you, my sweetheart, my Janu.
4: Hello.
5: One second, मेरे हस्बैंड से बात चल रही है, one second. कब आओगे रात में? अच्छा सुनो, मेरे लिए रात में वो लेके आना ना, वही वही कुची पुची कुची पुची. ओके स्वीटहार्ट बाय। हाँ लिखिए, 3 प्लेट गोलगप्पे।
4: गोलगप्पे नहीं होते हमारे यहाँ।
5: चकोर दे दीजिए, गोलगप्पे नहीं है, चकोर वाले दे दीजिए।
4: है नहीं मैम हमारे यहाँ,
5: लंबे वाले
4: नहीं है वो।
5: अच्छा लास्ट फाइनली, मैं और मेरे हस्बैंड जो बहुत शौक से खाते हैं।
4: क्या खाते हैं
5: मैम? मुर्गा
4: मैम, वो भी नहीं है।
5: आपको ये नहीं मालूम दिल्ली में सबसे अच्छा मुर्गा कहाँ बनता है?
4: मैम ये हमें नहीं पता।
5: हमें मालूम है, मैं बताऊँ आपको?
4: हाँ जी मैम बताइए।
6: रेडियो मिर्ची। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं छोटा सा मजाक कर रहा था आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया भाई साहब हमने।
4: आपकी आवाज में काफी
7: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: और मिर्ची महफिल में अब वक्त है
2: कविता कॉर्नर
1: कि आपका ताशी आज के कविता कॉर्नर में सुनाए आपको लीलाधर जगूड़ी साहब की एक बड़ी सुंदर कविता। तो ये जो सोशल मीडिया है ना, इंस्टाग्राम हो गया जो, इसमें लोग अपना अच्छा वक्त डालते हैं, अपना अच्छा टाइम डालते हैं, खुद के साथ जो अच्छा होता है केवल वही दिखाते हैं, बुरा नहीं दिखाते। लेकिन कई बार जो दूसरा इंसान होता है वो जब इससे स्क्रॉल कर रहा होता है, उसको लगता है यार सबके जीवन में तो इतना मज़ा हो रहा है, मेरे ही जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, है ना। तो उसी के ऊपर काइंड ऑफ ये कविता है। द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है, वैसे ही लीलाधर जगूड़ी साहब ने लिखा कि जब घाटी से देखा सुंदर दिखता था शिखर, जब घाटी से देखा तो सुंदर दिखता था शिखर, अब शिखर पर हूं तो ज्यादा सुंदर दिखती है घाटी। अपने से बाहर जहां से भी देखो मेरे ही जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, है ना। तो उसी के ऊपर काइंड ऑफ ये कविता है। द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है, वैसे ही लीलाधर जगूड़ी साहब ने लिखा कि जब घाटी से देखा सुंदर दिखता था शिखर, जब घाटी से देखा तो सुंदर दिखता था शिखर, अब शिखर पर हूं तो ज्यादा सुंदर दिखती है घाटी। अपने से बाहर जहां से भी देखो, जब घाटी से देखा तो सुंदर दिखता था शिखर, अब शिखर पर हूं तो ज्यादा सुंदर दिखती है घाटी। अपने से बाहर जहां से भी देखो।

0: on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi stories. Stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना, एक 19 साल की लड़की कोमा से जागी और उसको लगा वो 3 बच्चों की माँ है और वो उनको ढूंढने लगी।
4: भाई इंसान कोमा में जाने के बाद अपनी मेमोरीज लूज करता है, ये तो नई मेमोरीज बना के आ गई। और ऊपर से एक और चीज, इसको अडल्टहुड से पहले पेरेंटहुड का स्वाद मिल गया।
0: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
0: और एड ब्रेक भी। मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
6: बार बार।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6
0: FM, Mirchi 1. It's hot.

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ, और कई सारे मेरे दोस्त ऐसे हुए, मेल एंड फीमेल बोथ, जो जब वो बहुत वक्त तक सिंगल रह गए ना, उसके बाद उन्हें डर लगने लगा एक रिलेशनशिप में आने से, क्योंकि उन्हें हमेशा ये लगने लगा कि यार ये इंसान पता नहीं जिसके साथ अब मैं जुड़ा हूं, ये मुझे वो तवज्जो दे पाएगा कि नहीं, इसमें भी कहीं वही पुरानी वाली बात ना हो जाए। और रिलेशनशिप में ना रहने से ना एक बड़ा सन्नाटा हो जाता है जिंदगी में, जिस सन्नाटे को फिर तोड़ने पर डर लगता है। जैसे नुमान शौक साहब का आप एक शेर देखें, कहते हैं कि कुछ न था मेरे पास खोने को, कुछ न था मेरे पास खोने को, तुम मिले हो तो डर गया हूं मैं। आए हाय, कितनी मतलब ह्यूमन साइकोलॉजी वाली बात है यार ये, कि जब किसी ऐसे इंसान के पास जिसके पास कुछ ना हो, उसको फिर कुछ जब मिल जाता है ना, तो उसके डर बदल जाते हैं। उसको डर ये लगने लग जाता है कि यार अब ये जो मिल गया है ये कहीं चला ना जाए। कुछ ना था मेरे पास खोने को, तुम मिले हो तो डर गया हूं मैं। आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है क्या? अगर हाँ तो क्या, लिख भेजे मुझे मेरे इंस्टाग्राम मिर्ची ताशी MIRCHITASHI पर। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: Bollywood Bordal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Bordal.
2: Only on Mirchi, it's hot.
3: जब भी ताल फिल्म देखती हूँ, ऐश्वर्या राय बच्चन के पीछे एक क्यूट लड़का दिखता है, और वो कौन है? शाहिद कपूर. बट शाहिद, इफ आई हैड टू आस्क यू अबाउट योर फिल्म जर्नी एंड योर फर्स्ट सॉन्ग, कौन सा था वो?
4: मेरा पहला गाना था, इट वॉज इन इश्क विश्क ऑब्वियसली. द फर्स्ट सॉन्ग वॉज दिस सॉन्ग वी डिड इन अ कैंटीन कॉल्ड लव लव लव करो, वेयर ऑल द गाइज आर ट्राइंग टू इम्प्रेस द वुमेन.
3: शाहिद, व्हाट अ लवली डाइव इन नॉस्टैल्जिया. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
1: बॉलीवुड बोल्डाल.
2: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi, it's hot.

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: और मिर्ची महफिल में अब वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे डायरी से
1: कि आप कताशी पलटे अपनी डायरी के सफे और कर दे आपके नजर। और आज मैं आपको बताऊं बेसिकली हुआ क्या, इंस्टाग्राम पे मैंने कोई स्टोरी लगाई है ना, और किसी शख्स का मेरे वो स्टोरी लगाने के 5-10 मिनट बाद किसी शख्स का एकदम कॉल बज गया मेरे फोन पे, है ना। मैंने फोन उठाया, मैंने बोला हेलो, तो वो शख्स कह रहा है कि अरे यार तुमने अपने स्टोरी पे मुझे ऐसा ऐसा कहा, इतना ही, अब से मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगी, ये वो दुनिया जान, है ना। मतलब मैंने ना वो अपने ख्याल को व्यक्त कर रहा था बस मैं उस स्टोरी के थ्रू, है ना, और वो कोई रील थी। 9-10 मिनट बाद किसी शख्स का एकदम कॉल बज गया मेरे फोन पे, है ना। मैंने फोन उठाया, मैंने बोला हेलो, तो वो शख्स कह रहा है कि अरे यार तुमने अपने स्टोरी पे मुझे ऐसा ऐसा कहा, इतना ही, अब से मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगी, ये वो दुनिया जान, है ना। मतलब मैंने ना वो अपने ख्याल को व्यक्त कर रहा था बस मैं उस स्टोरी के थ्रू, है ना, और वो कोई रील थी नॉर्मल सी, लेकिन कई

न्याय जुल्म है ना। जफा के जिक्र पे तुम क्यों संभल के बैठ गए, तुम्हारी बात नहीं बात है जमाने की। लिटरली यही कह रहे हैं वो कि भाई साहब मैं तो ऐसी बात कर रहा था, तुम क्यों इतना इफेक्ट कर रहे हो, लग रहा है कि जूता फिट हो रहा है तुम्हारे पैर में। अगर फिट हो रहा है जूता तो पहन लो और अपने आप को बेहतर बनाओ। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, आपका ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

89.6. It's hot.

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ, और कुछ लोग होते हैं जिनकी परछाई आप अपने जीवन से नहीं निकाल पाते, चाहे जितना आप चाह लें, चाहे जितना आप कोशिश कर लें, लेकिन वो शख्स जो आपके साथ जुड़ा था एक वक्त पे, जमाना उसकी परछाई आपके ऊपर से नहीं जाने देता। शारिक कैफी साहब मेरे बड़े पसंदीदा शायर हैं और उन्हीं का एक शेर है, कहते हैं कि फासला रख के भी क्या हासिल हुआ, फासला रख के भी क्या हासिल हुआ, आज भी उसका ही कहलाता हूं मैं। वाह जी वाह। अब यही तो बात है कि आप तो दूरी बना लें, लेकिन अगर बातें जो बाहर चल रही हैं उसमें आपको उन्हीं का कहा जा रहा है तो उसका कोई तोड़ नहीं हो सकता, है ना। फासला रख के भी क्या हासिल हुआ, आज भी उसका ही कहलाता हूं मैं। बहरहाल मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप, आपका ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi.
2: हेलो
3: हेलो सुनील जी.
2: हाँ जी
3: सुनील जी, पेट्रोल पंप से बोल रहा हूँ. सर कंग्रेचुलेशन, आप लकी विनर हैं.
2: किस चीज के जी सर?
3: सर आपका 20 लीटर पेट्रोल निकला है बिल्कुल फ्री. मैं तो सोच रहा था बड़े खुश हो जाएंगे क्योंकि पेट्रोल के.
2: वेरी गुड यार, ये तो बहुत बढ़िया.
3: तो सर ये आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको फिल कराना होगा, भरवाना होगा अपनी गाड़ी में.
2: ठीक है. अच्छा एक बात तो बताइए सर जी.
3: हाँ जी.
2: इसके क्या पैसे ऐसे देने पड़ेंगे कुछ?
3: नहीं सर, पैसे कोई नहीं, कोई पैसा नहीं.
2: कंडीशन वगैरह?
3: नहीं सर, कोई कंडीशन नहीं है. पुराने ग्राहक है आप, ऐसे कैसे कंडीशन रख लेंगे?
2: तो ठीक है, पुराने ग्राहक को आदमी थोड़ा अपना समझ के कहते हैं ना, अपने कोई ज्यादा.
3: बस सर बिल्कुल फ्री है, पैसे आपको नहीं देने पड़ेंगे. एक छोटा सा काम करना पड़ेगा.
2: क्या?
3: पुराना लाइए, नया ले जाइए.
2: क्या भैया, पुराना क्या लाऊं भाई?
3: पुराना पेट्रोल लाओ, नया ले जाओ सर, बस यही है. और वो भी आप ही का निकला है.
2: क्या बात हुई, पुराना कहाँ से लाऊं?
3: सर पुराना जो आपने
2: पुराना हो तो जल के वो खत्म कर दिया हो तो
3: सर जो आपने पुराना यूज किया होगा वो तो लाना पड़ेगा ना आपको.
2: धुआं में कहाँ से इकट्ठा करूँ?
3: पहले तो आप बड़े दांत फाड़ रहे थे जब मैंने आपसे कहा 20 लीटर फ्री पेट्रोल है. वाह वाह जी वाह वाह, थैंक यू. अब मैं आपसे कह रहा हूँ
2: पेट्रोल मिल गया तो मुझे बड़ी अच्छी बात है.
3: अरे अरे तो ये क्या
2: पुराना कहाँ से लाऊं?
3: पुराना आपको लाना पड़ेगा. ये भी मैं पुराना भी वैसे हर वक्त रोते रहते हैं पेट्रोल के पैसे बढ़ गए. हम फ्री दे रहे हैं तो ला के नहीं दे सकते पुराना. यार कमाल कर रहे हैं आप.
2: पेट्रोल फालतू का. अच्छा.
3: पुराना
2: लाओ, नया ले जाओ, ये ले
3: जाओ. अरे मेरी बात सर जी, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ. अगर आप पुराना ले भी आए तो भी आपको 20 लीटर पेट्रोल फ्री नहीं मिलेगा. हाँ मुर्गा खाने को जरूर मिल सकता है. सर मजा आ गया आपसे बात करके. मतलब आपके गुस्से से डर गया मैं.
1: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची.

बात कहने का सलीका चाहिए। और कितनी सच्ची बात है यार दोस्त की, इट डजंट मैटर कि आप क्या बोल रहे हैं, आप उसे कैसे बोल रहे हैं विल डिफाइन कि सामने वाला आपकी बात को कितना तवज्जो देता है। तो आपको अब एक नया लफ्ज पता है विच इज सलीका। सलीका का इस्तेमाल करिए ना एक सेंटेंस में, या फिर अपना पसंदीदा शेर सुना दे कोई जिसमें सलीका आता हो। मेरे इंस्टाग्राम मिर्ची ताशी MIRCHITASHI पर स्टेडियम टू मिर्ची महफिल। इट्स हॉट।

0: यार तूने सुना एक 19 साल की लड़की कोमा से जागी और उसको लगा वो 3 बच्चों की माँ है और वो उनको ढूंढने लगी।
1: भाई इंसान कोमा में जाने के बाद अपनी मेमोरीज लूज करता है, ये तो नई मेमोरीज बना के आ गई। और ऊपर से एक और चीज, इसको अडल्टहुड से पहले पेरेंटहुड का स्वाद मिल गया।
2: मिर्ची, इट्स हॉट।
3: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
4: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
5: आएंगे दीदी। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ। और अगर एक शेर है जो मेरी पर्सनालिटी को परफेक्टली डिस्क्राइब कर सकता है

0: on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi Mehfil में आपका ताशी है आपके साथ, और अगर एक शेर है जो मेरी पर्सनालिटी को परफेक्टली डिस्क्राइब कर सकती,
0: इट्स हॉट
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ, और अगर एक शेर है जो मेरी पर्सनालिटी को परफेक्टली डिस्क्राइब कर सकता है ना, और दिल प्यार का पैमाना होता है ना, तभी सर अगर सर है तो नेजों से शिकायत कैसी, दिल अगर दिल है तो दरिया से बड़ा है ना, और दिल प्यार का पैमाना होता है ना, तभी सर अगर सर है तो नेजों से शिकायत कैसी।

0: माने ना मेरा दिल दीवाना है.
1: Only imagine the kind of romantic you are. आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट.
2: Bollywood बोल डाल. Bollywood Bollywood Bollywood बोल डाल.
3: Only on मिर्ची इट्स हॉट.

0: ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हाँ जी, एंड जस्ट लाइक दैट वक्त हो चला है मेरे जाने का।
2: मिर्ची महफिल पे ताशी अनप्लग्ड।
1: मिर्ची महफिल पर आपके ताशी था आपके साथ, वक्त हो चला है मेरे जाने का, इट्स टाइम फॉर मी टू गो। लेकिन ऑफ कोर्स बिना ताशी अनप्लग्ड दिए आपको कैसे जा सकता हूँ मैं। तो आज की जो गजल है, हरिहरन साहब की गजल है, गजल का नाम है ये आईने से, और जैज को किस तरीके से जब गजल के साथ मिलाया जाए तो क्या क्रिएट होगा, इसका बड़ा ही उम्दा बड़ा ही प्यारा एग्जाम्पल है ये गजल। नजर है सिर्फ आपके लिए ये आईने से।

One of Hariharan Saab's finest creations, I must say. अगर ऐसी गजलें सुनना आपको पसंद हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हैं, मिर्ची ताशी, MIRCHITASHI के नाम से आपको मिल जाऊंगा. वहां भी मैं गजलें गा के डालता ही रहता हूँ. स्टे ट्यून टू मिर्ची. मिर्ची महफिल का सफर इस बार का यहीं तक था. अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी. यू नो व्हाट आई से, इट्स हॉट.

जो मेरे पल पल में शामिल है।

मैंने ये न जाना कभी, ऐसा न था हाल मेरा पहले, हाल ये मेरा हुआ है अभी। वो ख्वाब है या हकीकत है,

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot. Mirchi. Fresh Maal.
1: High voltage beats और unstoppable groove के साथ सुनो माशुका.

0: इस गाने को गाया है महमूद, अमिताभ भट्टाचार्य, राघव चैतन्य और रुआ के ने। म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म कॉकटेल 2 से सुनते रहिए माशुका, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ। 89.6, 89.6,
1: it's hot.

0: ऐ मेरी हमरक्स मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश न होती तो भी ना आती।

गाने को गाया है शान, प्रिया पाटीदार और विक्रम मोंट्रोज ने। म्यूजिक दिया है विक्रम मोंट्रोज और साजिद वाजिद ने, और लिरिक्स लिखे हैं मेघा बाली और शब्बीर अहमद ने। वेलकम टू द जंगल मूवी से सुनिए वेलकम टू द जंगल टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी।